करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
2: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: मैं आचार्य पार्थ कुमार व्यास मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से आज मैं श्रावण मास में भगवान शिव और नवग्रह के पूजा का महत्व मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। नवग्रह और श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का महत्व अपरंपार कहा गया है। हिंदू धर्म में नवग्रह में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु मनुष्य के जीवन पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव को नवग्रह के भी अधिपति और कल्याणकारी देव माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी शांत करते हैं और जीवन में सुख शांति तथा संतुलन आता है। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप तथा शिव स्तोत्रों का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। श्रद्धा से की गई शिव आराधना से मन की शुद्धि होती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य ग्रहों के संबंधित कठिनाइयां हो तो श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना, महामृत्युंजय जप और शिवलिंग पर गंगा जल आदि जल का अभिषेक, बिल्व पत्र अर्पण करना, दूध और काला तिल से अभिषेक करना, ये सब भगवान शिव जी की आराधना करना, ऐसा विश्वास है कि इस ग्रह जनिक कष्टों में से राहत और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव सभी देवताओं में अत्यंत करुणामय हैं और भोलेनाथ कहलाते हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस श्रावण मास में शिव आराधना को केवल ग्रहों की शांति का ही नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति, सकारात्मक जीवन, स्वास्थ्य, सुख और मोक्ष की दिशा में भी महत्वपूर्ण साधन माना गया है। और भगवान शिव की आराधना करने में हम हमारे घर से भी जल लेकर शिवालय में शिवलिंग के ऊपर अर्पण करके कोई भी शिव स्तोत्र का या तो महामृत्युंजय मंत्र का या तो पुराणोक्त मंत्रों का हम मंत्र से भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करें तभी हमारा ग्रह दोष निवारण होता है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। कामो हि नरकायेन तस्मान् क्रोधे अभिजायते क्रोधा भवति सम्मोहः मोयास्तं भ्रशन्ति तप। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तप विनष्ट हो जाता है। कुसंगा बहवो लोके स्त्री संगम त्रव्यादि उदात्मनाम लभे धनम श्रीमंगा मोचयेत लोह दारुणमस्य पश्ये दृढ़ाम बुद्धि सोपी मुंचयेत स्वस्तम दीपाशम शंभु मुंचते न कदाचन वंदते विषया स्वस्वास्थ्यमालब्ध निकारिणः विषया क्रांतम मनस स्वते मोक्षमोपि दुर्लभ सुभेक्षते स्वेच्छा प्रज्ञोतम विद्ये विदिराक्षतमञ्जतः विषद्विद्यायानां नहो विषयो हितम् जनो विषय विन्याम साकहम् वार्ताम् पतिते क्षणम् विषय प्राहुचाराय सीतालिप्त द्रवणीरणि। संसार में बहुत से कुसंग है, परंतु उनमें स्त्री संग सबसे बढ़कर है, क्योंकि मनुष्य सभी प्रकार के संबंधों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, किंतु स्त्री संग से उसका छुटकारा नहीं होता। लोहे तथा लकड़ी के पाशों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष उसके छुटकारा पा सकता है, किंतु स्त्री आदि के पास में बंधन हुआ कभी मुक्त नहीं होता है स्त्री संगत से। महाबंधनकारी विषय निरक्तन बड़े रहते हैं। विषयों से आक्रांत मन वाले वाले स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ है। यदि बुद्धिमान पुरुष सुख प्राप्त करना चाहे तो विषयों को भली भांति छोड़ दें। जिन विषयों से प्राणी मारा जाता है वे विषय विष के समान कहे गए हैं। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

रसानां छन्दसामपि मङ्गलानांश्च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिनो याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज वेडनेसडे 5 अगस्त श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से

मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। शिव सती चरित्र जो बालकांड में इसका वर्णन हुआ है, इसका हम पाठ कर रहे हैं। चलिए, कल जहाँ से विराम लिया था हम लोग वहीं से आगे बढ़े और आज हम लोग बालकांड दोहा संख्या 51, दोहा नंबर 51 से आगे बढ़ते हैं।

देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे?

फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जद

0: संशय असन धीय रही उरकाओ। यद्यपि भवानी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, परंतु अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले कि हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। चलिए आज इसको यही विराम दें, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मंत्र।
2: ओम कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजि विशेच्छतम् समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।
1: प्रिय श्रोताओं, इस वेद मंत्र के अंदर हमको क्या शिक्षा दी है? हमें परमात्मा ने दो पंख दिए, जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं ना, एक ज्ञान का और दूसरा कर्म का। इन दोनों के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। परमात्मा ने वेदों के अंदर ज्ञान दिया, कर्म कैसे करने हैं ये शिक्षा भी हमें दी है। यहाँ पर कहा गया है इस मंत्र में, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, अर्थात इस संसार में ऐ मनुष्य, अच्छे कर्मों को करता हुआ, वैदिक कर्मों को करता हुआ जीने की इच्छा कर। जीजी विषित माने जीने की इच्छा करनी चाहिए। हम केवल इच्छा मात्र कर सकते हैं, कितना जीना है, कैसा जीना है, ये सब भगवान के ऊपर हम छोड़ सकते हैं। लेकिन हमें जीवन में जीने की इच्छा करनी चाहिए। कितने वर्षों तक? तो वेद में बताया है शतम समाह, 100 वर्षों तक। अर्थात वेद में अन्यत्र भी ये प्रार्थना की गई है, जीवेम शरद शतम, शृणुयाम शरद शतम, प्रब्रवाम शरद शतम, अदीनास्याम शरद शतम। अर्थात 100 वर्षों तक देखें, सुने, जीवन में अधीन बन करके रहें, भूयश्च शरद शतात, और हमारी दिनचर्या अच्छी हो, खान पान अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो, तो परमात्मा कहते हैं 100 वर्षों से भी ऊपर जियो, जीने की इच्छा करो, लेकिन कर्म करते हुए। कर्म कैसे करने हैं? वेदोक्त कर्म करने हैं, धार्मिक कर्म करने हैं, अच्छा सोचना है सबके लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता के अंदर,
2: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि।
1: अर्थात भगवान कहते हैं कि अच्छे कर्मों को करते हुए, और ये न सोचें कि फल कम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही, इसलिए कर्म के ऊपर फोकस होना चाहिए। अच्छे वेदोक्त हों, धर्म के अनुकूल हों, इस प्रकार से जो कर्मों को अपने जीवन में करता रहता है तो वो संसार में आगे बढ़ता है। एवं त्वयि न अन्यथा इत अस्ति, अर्थात इससे भिन्न तो और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं है। जीवन को जीने के लिए हर पशु पक्षी, सारा संसार देख रहे हो आप, गतिमान है। बिना गति के, बिना कर्म के दुनिया में कोई भी नहीं रह सकता। तो कहते हैं ना भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये कर्म हमको करने ही है, यज्ञ करना है। यज्ञ का मतलब है अच्छे कार्य, दान भी देना है। तप का मतलब है अच्छे कर्मों को करने में जो भी कठिनाई हो उसको सहन करने का नाम तप है। तो कृष्ण कहते हैं गीता के इस श्लोक में, यज्ञों दानम तपश्चैव, ये हमारे जीवन के अंदर पवित्रता भरने वाला है। तो ऐसा करते हुए हमें ये मंत्र शिक्षा देता है। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शम।

गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास और श्रावण मास के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम वेद संदेश के श्रवण करने वाले आप समस्त श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते। आइए सुनते हैं वेद मंत्र पाठ अर्थ सहित। ओम यत सूर्य उदीत्यस्तम् यत्र च गच्छति तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठम् तदुनातीति किंचन। जिस परमात्मा ने सृष्टि समय से सूर्य आदि उत्पन्न होते हैं, प्रलय काल में वे सब जिसमें लय हो जाते हैं, उस महान की उपासना सब लोग करें। ओ

वदन्ति आदित्यमेवते परिवदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं त्रिवृतं च हंसम्। जो परमात्मा तीनों काल तीनों लोक में वर्तमान और सत्य जानी है, उसको विवेकी जन वेद विहित कर्म उपासना और ज्ञान से प्राप्त होकर मुक्ति सुख भोगते हैं। ओम सहस्राण्यम वियता वस्य पक्षौ हरिर्हंस्य पतत स्वर्गम सदीवां सर्वानुरसुपदद्य संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा। जैसे परमेश्वर अंतर्यामी रूप से अनंत कार्य कारण रूप जगत की निरंतर सुधि रखता है, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का विचार करता हुआ कामों में सदा सावधान रहें। ओम सत्येनोर्ध्वस्तपति ब्रह्मणार्वां विपश्यति प्राणेन तिर्यं प्राणति यस्मिन् ज्येष्ठमधिश्रितम्। जो मनुष्य अपने में परमात्मा को देखता है, वह सत्य व्रत धारण करके ज्ञान द्वारा आत्मबल प्राप्त करके उपकारी होकर जीवन सफल करता है।

0: निर्मथ्यति वसु सविद्वां ज्येष्ठं मन्येत सविद्याद् ब्राह्मणं महत। जैसे लकड़ियों को रगड़कर आग निकालते हैं, वैसे ही विद्वान कार्य कारण की सूक्ष्मता को समझकर परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
1: कर पावन वेद प्रकाश दूर करता रहता अंधियारा, यह श्रावणी पर्व हमारा।
2: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: जो अपनी आत्मा का हनन करता है, अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देता है, अपने धर्म का तिरस्कार करता हुआ अपराध व पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, वह मरकर असूर्या नाम वाले लोक में बार बार जन्म लेता है, जहाँ न सूर्य का प्रकाश होता है और न ही ज्ञान व विद्या का प्रकाश। आत्मा के हनन करने वाले लोग घनघोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और दुखरूपी बंधन को प्राप्त होते हैं। आत्महत्यारे को सद्गति की प्राप्ति नहीं होती, वे अंधकारमय लोक में भटकते हुए अपने पाप कर्म का फल भोगते हैं।
1: ओम सरस्वती देवयन्तु हवन्ते सरस्वती मध्वरेतायमाने सरस्वती सुकृतो अह्वयन्त सरस्वती दाशुषे वार्यं दात्।
0: स्त्री पुरुष विद्या की उपासना करके ही विदुषी और विद्वान बनते हैं। उस विद्या के द्वारा वे अनेक साधन और योजनाओं की रचना करते हैं। उन्हीं विशेष साधनों द्वारा विद्या का विस्तार होता है। विद्या से ही सबकी उन्नति होती है। हम विद्या द्वारा पुरुषार्थी बने, लगन और परिश्रम से विद्या अर्जित कर सबके सुख के लिए परोपकारी बने। विद्या से सुख साधन की प्राप्ति होती है। विद्या देवों को बुलाकर उन्हें शरण देती है।
1: ओम मिमी श्लोकम आस्य पर्जन्य इव तत्तरः गाय गायत्रम उक्तयम्।
0: हे विद्वान मनुष्यो, अपने मुख में स्वाध्याय द्वारा सुमधुर वाणी का निर्माण कीजिए। अपने मुख से वेद की शिक्षा से युक्त वाणी का प्रयोग कीजिए। उस वाणी को पर्जन्य इव, जैसे मेघ वृष्टि करता है, जैसे बादल सबके कल्याण के लिए जल बनकर बरसता है, वैसे ही विद्वानों को चाहिए कि वे गायत्री आदि वेद मंत्रों को उपदेश के माध्यम से फैलावें। वेद में पाए जाने वाले ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुँचावें। वेद वाणी के स्वाध्याय से जो ज्ञान आपको प्राप्त हो, आप उसे ऐसे फैलाएं जैसे बादल वर्षा फैलाता है।

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
1: My, this is Radio Voices.
2: 您好
3: ，Assalamualaikum。
4: बुधवार 5 अगस्त घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 6:00 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से। गीता जी आपको नमस्कार।
5: नमस्कार पूनम, सभी को हमारा नमस्कार। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी, ये संदेश प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कल शाम दिया। वे ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट में मॉरिशस की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था पर चिंता जताई गई है। सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजटीय सहायता ऋण का अनुरोध किया है। 23 बिलियन रुपए से ज़्यादा का ऋण दो चरणों में मिलेगा। कल दोपहर बाद लाप्रेरी में एक हाइड्रोप्लेन हादसे में 25 साल के पोलैंड के एक पर्यटक की मौत हो गई। वहीं बुभासे के रहने वाले पायलट को पुलिस के पहुंचने से पहले ही हाइड्रोप्लेन का संचालन करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने बचा लिया। गंभीर रूप से घायल पायलट को इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उसके कंधे और रीढ़ की हड्डी

0: में कई फ्रैक्चर हुए हैं। कोरल ब्लीचिंग के बीच मॉरिशस के अध्ययन से नई उम्मीद जागी है। कोरल रीफ्स के पुनर्स्थापन से 70% से ज्यादा जीवित रहने की दर दर्ज की गई है। समुद्री तट, मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए कोरल रीफ्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विदेश में ईरान समझौते की उम्मीद से तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड 3 हफ्तों के निचले स्तर पर आ गया है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। मस्करेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवाएं चल रही हैं और पूर्व से आने वाली अस्थिरता से जुड़े बादलों का असर आज दिन से मौसम पर पड़ने लगेगा। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे और दोपहर बाद को भी पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। देर रात को बादल घिराएंगे। पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 16 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज सुबह 6:37 पर और शाम 5:53 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की मुख्य खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
3: बुधवार 5 अगस्त सवेरे के 6:04 रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। सुप्रभात। भोर की बेला इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। नया दिन निकल चुका है। नए दिन के साथ इस नए दिन की ढेर सारी मंगल कामनाएं आप सभी को। जी हाँ, नया दिन अपने आप में नए जीवन के समान होता है और इस नए दिन को देखने का, जीने का अवसर हमें मिला है तो इसके लिए ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आज के इस भोर की बेला कार्यक्रम का आरंभ हम करते हैं। आपको बता दें कुछ क्षणों में हम बढ़ने वाले हैं कार्यक्रम सनातन धारा की ओर और फिर लगभग 6:20 पर श्रवण मास के उपलक्ष्य में, श्रवण मास के उपलक्ष्य में हम सुन पाएंगे विशेष कार्यक्रम आर्य सभा मॉरिशस की प्रस्तुति में और 6:30 समय होगा पूरा समाचार का। तो आइए आज की इस भोर की बेला को हम आरंभ करते हैं सनातन धारा इस कार्यक्रम से, जिसे हम सुनेंगे सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी। तो आइए उनको सुनते हैं।
4: आइए सुनिए श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।
5: निगम काल पतरो गालिताम फलाम, निगम काल पतरो गालिताम फलाम, सुख मुखाद अमृता दवसान्युताम, सुख

मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, पीवत भागवतम रसमालयम। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सूरज सुपाल मिश्र का

अभिवादन। आज का विषय श्रावण महिमा, श्रावण मास। और श्रावण महिमा में आप सब लोग श्रावण मास में क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जो है एक महीना पूजन करने से, शिव पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो अगर शास्त्रोक्त रूप में देखा जाए तो हम सब लोगों को अभी श्रावण महीना में शिव जी का महत्व बहुत होता है, क्योंकि भगवान विष्णु शयन में चले गए। आषाढ़ मास की एकादशी के बाद भगवान विष्णु चतुर्थ मास, और चतुर्थ मास में ये श्रावण महीना सबसे उत्तम महीना माना जाता है, क्योंकि सारा भार भगवान शिव जी के ऊपर होता है। सृष्टि का संचालन करना, सब कुछ लेकर के चलना, ये भगवान शिव जी के हाथों में रह जाते हैं, क्योंकि चतुर्थ मास में भगवान विष्णु शयन करने के लिए जाते हैं। तो श्रावण महिमा में कौन कौन से व्रत आ जाता है, विशेष करके श्रावण मास श्रवणम, संस्कृत में श्रवण करने का मतलब होता है ध्यान से सुनना। सुनने का मतलब ना, श्रवण संस्कृत में कहता है लिसनिंग विज अटेंशन। जब कहा जाता है कि लिसनिंग विज अटेंशन, तो श्रवण कहा जाता है। सुनना, सुन करके भूल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम भागवत बांचते हैं, पुराणों का वर्णन करते हैं, तो वहां पर सुनने का महत्व नहीं बताया जाता है, वहां पर कहा जाता है श्रवण करना, भागवत श्रवण करना, यज्ञ करना, वेद मंत्र को श्रवण करने का महत्व बहुत सुंदर से बताया। और ये श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास बना है, श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास बनने का महत्व होता है। यज्ञ का मास बताया गया, यज्ञोपवीत का मास बताया गया, अध्ययन का मास बताया गया, तप करने का मास बताया गया, यज्ञ करने का मास बताया, वेद पढ़ने का मास भी यही है। श्रावण महीने में ही हम सब लोग वेद पाठन करते हैं, इसलिए इस महीने में तो यह भी कहा जाता है कि हर सोमवार को आप सब लोग अपने मंदिर में अभिषेक करते हैं, सोमवार को हम सब लोग अभिषेक करते हैं, और इसमें मंगल गौरी का पूजन भी बताया जाता है। मंगल गौरी का पूजन मंगलवार के दिन हर सुहागन गौरी माँ का पूजन कर सकती हैं, सोमवार को दिन शिव अभिषेक, मंगलवार के दिन सुहागनों का पूजन किया जाता है, और बुधवार के दिन जितने लोगों को लग्न नहीं होता, विवाह का लग्न नहीं होता, जितने लड़कियां या जितने लड़के लोग जिसका विवाह योग नहीं चलता, अगर बुधवार के दिन वो शिव जी का, माँ गौरी का, अशोका सुंदरी का पूजन करेंगे तो विवाह लग्न लगता है, इसलिए बुधवार को बताया गया। जितने लोग पढ़ने में वो उत्तम नहीं रहते और उसे ज्ञान की प्राप्ति, उसे बृहस्पतिवार को कहा जाता है कि श्रावण महीने के जो बृहस्पति है, गुरुवार है, उस दिन अगर अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, तो विद्या लभते विद्याम, विद्या की प्राप्ति, उत्तम रूप से हर परीक्षा में सफल होना, ये भी कहा जाता है। और इस प्रकार से शुक्रवार को तो कहा गया जितने परिवारों में, जितने घरों में बहुत से स्त्रियां विधवा, एक कुल होता है कि जहां पर पुरुष लोग ज़्यादातर, उन लोगों का आयु कम होती है, तो शुक्रवार के दिन वो जो विधवा लोग हैं, अगर वो पूजन करेंगे, वो परिवार पूजन करेगा, तो उसके घर में विधवा जो कि पुरुष जन है, उनके आयु का वृद्धि होगा। और शनिवार को ये भी बताया जाता है कि अगर बार बार आप बीमार हो रहे हैं, बार बार आप एक्सीडेंट कर रहे हैं, किसी प्रकार के ग्रह का प्रभाव है, तो आप लोगों को शनिवार के दिन अगर शिव जी का पूजन हो, हनुमान जी का पूजन हो, पीपल का पूजन हो, ग्रह का पूजन हो, तो ये श्रावण मास सबसे उत्तम मास कहा जाता है। रविवार के दिन बताया जाता है जितने लोग व्यापार करते हैं, और जब व्यापार करते हैं तो धन का आगमन नहीं होता, जितने भी धन आता है और चले जाते हैं, अगर शुक्रवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक मिठाई लग करके, और उस दिन आप अगर बेल पत्र के

पेड़ के नीचे एक घी का दिया, अपने मंदिर के चौकट पर एक घी का दिया अभिषेक करने के बाद वहाँ पर घी का दिया जलाते हैं। और उस दिन अगर आप 7 बेलपत्र लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वहाँ पर आपके घर में धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह श्रावण महीने में 2-3 पर्व बहुत सुंदर से बताया जाता है। एक तो हम सब लोग जिसे मानते हैं, जिसे मंगलिक मानते हैं, जिस दोष मानते हैं, नाग दोष, पितृ दोष, ये नाग पंचमी आ जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में सब प्रकार के दोष का निवारण का दिन होता है, जहाँ पर हम सब लोग नाग देवताओं पर पूजन करते हैं। इसको विस्तार रूप से अगले कार्यक्रम में मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से नाग दोष, किस रूप से, किस प्रकार से पूजन करने से सब प्रकार के दोष का निवारण हो जाता है। और यही श्रावण मास के अंतिम तिथि पूर्णिमा तिथि में हम सब लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षा सूत्र का पर्व होता है, सब प्रकार के रक्षा करने का, यज्ञ करने का पर्व होता है। इसलिए श्रावण महिमा जो है वो भगवान शिव जी को अर्पण है। एक मास तक बहुत से लोग एक मास तक अन्न ग्रहण नहीं करते, व्रत रखते हैं, व्रत धारण करते हैं। और जब व्रत धारण करते हैं तो चावल, अन्न मतलब चावल, चावल ग्रहण नहीं करते, एक मास चावल ग्रहण नहीं करते। और जितने लोग एक मास चावल ग्रहण नहीं कर सकते तो जितने जो जो दिन जिस विषय पर आप पूजन कर रहे हैं, जिस कारण के वास्ते आप पूजन कर रहे हैं, उस कारण के वास्ते उस दिन अगर आप चावल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान का व्रत रख करके पूजन करेंगे तो अति उत्तम फल प्राप्त होता है। अगर एक महीने तक आप सब लोग अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब तक वो चावल नहीं खाएंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो उसका मन तृप्ति नहीं होता, तो ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, 30 दिन नहीं कर सकते तो कम से कम जो सोमवार का दिन होता है, वो सोमवार के दिन आप उस दिन चावल ग्रहण नहीं करें, अन्न ग्रहण नहीं करें, व्रत धारण करें। और व्रती को अपने रूप से पूजन करने का महत्व बहुत सुंदर होता है। आजकल कली काल में है और सब प्रकार के कष्ट परिवार से ही होता है। अपने घर में तनाव, अपने घर में अनेक प्रकार का दुख होता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह होता है कि जब आप मंदिर जाएंगे, जब आप शिव जी का पूजन करने के लिए जाएंगे, तो अपने घर से जल लेकर के अवश्य जाएं। अपने घर से जल लेकर के भगवान शिव पर अर्पण करना बहुत ज़रूरी है। और शिव पर अर्पण करेंगे तो मनोकामना फल प्राप्त होगा, आपके घर में शांति, खुशी, धन, लक्ष्मी, वैभव की प्राप्ति होगी। हमेशा पहला लोटा जल जो होता है वो घर का जल लेकर के अर्पण करें। दूसरा लोटा का जल जो होता है वो रोग के निवारण करने के लिए लोटे के जल में गंगा जल मिला लें। गंगा जल मिलाने के बाद हो सके तो इक्तर मतलब कि अंतर उसमें डाल करके रोग निवारण करने के लिए वो जल भगवान शिव जी पर अर्पण करते हुए वो पंचाक्षर श्लोक ओम नमः शिवाय बोलें। अगर आप ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते हैं तो मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। त्रयम्बकम् यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनात् मृत्योमुक्षी यमामृतात्। ये शब्द का उच्चारण करने के बाद उस जल को लेकर के आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, आपके घर में कल्याण होगा। जिसके घर में धन धान्य की वृद्धि नहीं है तो एक लोटे के जल में एक बेलपत्र डाल करके, 2 चावल डाल करके, 1 बेलपत्र डाल करके आप भगवान शिव जी का पंचाक्षर श्लोक बोल करके अगर शिवलिंग पर आप अर्पण करते हैं तो आपके घर में धन धान्य समृद्धि
प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अनेक महत्वपूर्ण रूप से अगर अभिषेक करते

0: रखते हैं। तो अभिषेक में अनेक पदार्थ से हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो अनेक प्रकार का अर्थात अनेक लगभग अंत रूप में अनेक प्रकार के रूप। अगर आप सब लोग दूध दही मद घी नहीं डाल सकते तो पंचामृत बना लो, पंचामृत लेकर के भगवान को अर्पण करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आचार्य सुपाल मिश्रा जी ने। आचार्य जी को हम धन्यवाद देते हैं। अभी के लिए सवेरे के 6:17 हो रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। सी बी फ्लैट सनासी यहाँ पर और यहाँ के आसपास के गलियों में रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। ऑफ सैयद हुसैन पायुट फिनिक्स और आसपास के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 5 अगस्त को सुबह के 8:30 से सपहर के 4:00 के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक विज्ञप्ति सीबी की ओर से।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: श्रोता, इसी के साथ सवेरे के 6:20 हो रहे हैं और अब आइए समय हुआ है श्रवण मास के उपलक्ष में इस विशेष कार्यक्रम का। श्रवण मास के उपलक्ष में इस विशेष कार्यक्रम को हम सुनेंगे आर्य सभा मॉरिशस की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी पंडिता चमन, तो आइए उनको सुनते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। तो आइए श्रवण मास के उपलक्ष में बढ़ते हैं इस विशेष कार्यक्रम की ओर रेडियो मॉरिशस पर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

यानी वेद स्वाध्याय का पर्व है। वेद मास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आर्य सभा की ओर से एक संदेश जो अथर्ववेद से लिया गया है। ओम आयुषायुष्कृतां जीवायुष्मान् जीवमामृता प्राणेनात्मन्वतां जीवमामृत्योरुदगावसम् ओम शं। श्रोतागण, मंत्र अथर्ववेद के 19वें कांड 27वें सूक्त का 8वां मंत्र है। इस मंत्र का ऋषि भृगवंगिरा है, देवता त्रिविध हैं और छंद अनुष्टुप है। आइए मंत्र के भावार्थ को देखते हैं। आयु कृताम आयुषा जीव, जीवन देने वालों के जीवन के साथ तू जीवित रह। आयुष्मान जीवमा मृथा, उत्तम जीवन वाला होकर तू जीवित रह, तू मरे नहीं। आत्मन्वताम प्राणेन जीव मृत्यो वसम, आत्मा वालों के जीवन सामर्थ्य से तू जीवित रह, मृत्यु के वश में मा उत अगाह मत जा। श्रोतागण, इस मंत्र द्वारा हमें बताया गया है कि मानव जीवन कर्म योनि और भोग योनि दोनों हैं। कुछ हमारे कर्म का भोग शेष था, उन्हें भोगने के लिए तथा ज्ञानपूर्वक ऐसे नवीन कर्म करने के लिए जो दुखों से मुक्ति दिला दें, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह मानव शरीर मिला है। संसार में सफलतापूर्वक जीने के लिए बहुत बड़ी तैयारी व योग्यता की आवश्यकता है, जो वेद माता हमें सिखाती हैं, अपनी चारों स्तनों का अमृत पान कराती हैं। हमें सफल मनुष्य बनने के लिए चारों स्तन इस प्रकार हैं: ऋग्वेद ज्ञानकांड, यजुर्वेद कर्मकांड, सामवेद उपासना कांड और अथर्ववेद विज्ञान कांड। अथर्ववेद का यह मंत्र कह रहा है आयुष्कृताम आयुषा जीव, जीवितों की तरह जी। आयुष्मान जीवमामृथा, हे जीवन से परिपूर्ण प्राणी तू मरे नहीं। यहाँ स्पष्ट है कि यथा तथा समय यापन जीवन नहीं अपितु मृत्यु है। उद्देश्यहीन मनुष्य मृतक के समान है जो केवल दूसरे पर निर्भर रहता उदर पूर्ति के लिए। जीना जीवन में कोई अनुशासन नहीं, ऐसे लोगों के लिए नीतिकार ने इस भाव को इन शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया है। काको अपि जीवति चिराय बलिन च भुक्ते, अर्थात कौवा भी देर तक जीवित रह जाता है और खाता पीता रहता है, ऐसा जीना कोई जीना नहीं। आयुष्मान जीवमा मृथा, हे चिरंजीव जीव तू मरे नहीं। और मा मृत्योरुदगावसम, तू मृत्यु के चंगुल में मत फांस, तू उत्तम जीवन जीने वालों के साथ जीता रह। निश्चय ही यह जीवन और मृत्यु किसी शरीर के साथ जीव के मिलने व बिछुड़ने की कहानी नहीं है। जो इस संसार में आया है वह मरेगा अवश्य। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्ममितस्य च, गीता का कथन है। किंतु किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अपने आप को समर्पित करके अपने प्राणों तक को होम देते हैं, वे शरीर त्याग कर भी अमर हो जाते हैं। संसार के इतिहास में लाखों और हजारों वर्षों के पश्चात भी जिनके नाम और कर्मों से लोग प्रेरणा लेते हैं, निसंदेह उनके भौतिक शरीर का ही विनाश हुआ है। उनका यश शरीर अजर और अमर है, इसी का नाम जीवन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, योगेश्वर श्री कृष्ण जी, जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने हमें वेद ज्ञान दिया, ये लोग अपने कर्म से अमर हो गए। मानव शरीर हमें उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राप्त हुआ है। पुरुषार्थ करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। श्रोतागण, हल का फाल

कितना ही अच्छा क्यों न हो, लोहार की दुकान में पड़ा पड़ा या किसान के घर में पड़ा पड़ा वह भोजन की उत्पत्ति नहीं कर सकता। भोजन का साधन तो वह तभी बन सकेगा जब उससे भूमि जोती या बोई जाएगी। इसी प्रकार रास्ता चलने से कटता है, कोई बैठा बैठा मार्ग काटने के उपाय किए बिना मार्ग को समाप्त नहीं कर सकता। मार्ग को समाप्त करने के लिए तो चलना ही होगा, परिश्रम करना ही होगा। वेद माता हमें आदेश दे रही हैं कि हे मनुष्यों, तुम निरुत्साह मत बनो। मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए कल्याणी वेदवाणी का उपदेश कर दिया है। उठो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। श्रोतागण, हम प्रतिदिन स्वाध्याय करें, वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ करें, इस पवित्र अवसर से लाभ उठाकर घर घर यज्ञ करें, ऋषियों के ऋण से उऋण होने की कोशिश करें, यज्ञ के द्वारा पर्यावरण की शुद्धि करें। यज्ञ में प्रज्वलित होने वाली अग्नि भी हमें अनेक प्रकार से प्रेरणा देती है। अग्नि में मुख्य रूप से तीन गुण हैं, प्रकाश, ताप और गति। प्रकाश यानि यज्ञाग्नि हमें संकेत करती है भौतिक पदार्थ के साथ साथ अपने अंतःकरण एवं अपने कर्मों से भी प्रकाशित हो जाओ। सत्य, दया, प्रेम, संयम, त्याग, तप, सेवा, ज्ञान, विज्ञान से अपने अंतःकरण के साथ साथ आत्मा को भी प्रकाशित करो। तप, यज्ञाग्नि हमें प्रेरित करती है कि तपो, जलाओ किसको? राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, स्वार्थ, मोह इत्यादि। गति, यज्ञाग्नि हमारे में भावना भरती है कि रुको नहीं, चलते रहो, बढ़ते रहो, बाधाएं आएगी, कष्ट आएंगे, असफलता भी मिलेगी, फिर भी हताश निराश न होना। नई उत्साह, नई प्रेरणा, नई संकल्प लेकर उठो, बढ़ो, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो चलते रहो। यही संदेश लेकर श्रावणी पर्व आई है। सभी को श्रावणी पर्व की शुभकामनाएं। आइए पुनः इस वेद मंत्र को सुनते हैं। ओम आयुष आयुष्कृताम जीवायुष्मा जीवमामृथा प्राणेनात्मन्वताम जीवमामृत्योरुदगावसम। ओम शांति शांति शांति।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: सभी को हमारा नमस्कार। सुबह के ठीक 6:30 हैं। पेश है आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी, ये संदेश प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कल शाम दिया। विग्रांड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट में मॉरिशस की सार्वजनिक अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई गई है। सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजटीय सहायता ऋण का अनुरोध किया।

0: किया है। 23 बिलियन रुपए से अधिक का ऋण दो चरणों में मिलेगा। विदेश में ईरान समझौते की उम्मीद से तेल की कीमतों में गिरावट, ब्रेंट क्रूड 3 हफ्तों के निचले स्तर पर आया। और अब पेश है समाचार विस्तार से। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी, ये संदेश प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कल शाम दिया। वे ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मॉरिशस में भाषाओं के संरक्षण में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार कठिन फैसले ले रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी मॉरिशस वासियों की भागीदारी और सहयोग के बिना ये लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं होगा। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: Botswana dépasse nous et le pays en Europe dépasse nous là. Parce que pendant 10 ans, nous nous réglons, pas aucun avantage. C'est à cause de ça qui nous a fait effort, qu'on comprend l'extrêmement important qui nous sensibilise la population. En général, qui est notre problème dans le pays et qui nous a mis la tête ensemble pour résoudre le problème. Je profite de l'occasion là pour dire aux autres qui nous peut faire face à la difficulté. Pendant 10 ans, qu'on est qui nous fait dans ce pays-là. Parfois, la mobilité, je dis à tout le monde, pose-moi une question. Qui fait mon faire pour moi, après tant qui, mon gagne 60 euros, mon bien intéressé, bien populaire, là. Bien faire qu'il soit bien qu'il pays. Bien redresser ça, l'économie, là. Sinon, c'est tout pour sombrer. Et sa solidarité, ben, moi aussi, a montré là, bien important. Il y a une décision difficile. Pour le moment, il n'est pas pour éternel, ça. Mais si et si nous prenons une décision qui bien faire, pays, là, pour redresser.
0: अफ्रीकी विकास बैंक की कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 जो 28 जुलाई को प्रकाशित हुई, मॉरिशस की सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जून की शुरुआत में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 23 बिलियन मॉरिशियन रुपए से ज़्यादा की बजट सपोर्ट की मांग की है। ये वित्तीय सहायता 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दो किश्तों में जारी की जाएगी, जो वित्तीय वर्ष 2026-2027 और 2027-2028 के दौरान प्रदान की जाएगी। शैली नियबन की रिपोर्ट पर पेश है अशिटारो का विवरण।
2: ये मांग ऐसे समय में सामने आई है जब सार्वजनिक वित्त पर दबाव बना हुआ है। अफ्रीकी विकास बैंक के अनुसार 2024-2025 में मॉरिशस का सकल सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 88.6% तक पहुंच गया, जबकि एक साल पहले ये 83.4% था। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कर आय के बावजूद बजट घाटा जीडीपी के 8.5% से बढ़कर 9.3% हो गया है। अफ्रीकी विकास बैंक ने इस गिरावट के लिए सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर बढ़े हुए खर्च के साथ साथ अनुमान से कम कर राजस्व को जिम्मेदार ठहराया है। खासकर वाहनों पर लगाए जाने वाले टैक्स में सुधार के बाद अपेक्षित आय हासिल नहीं हो सकी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अब मॉरिशस के लिए संप्रभु वित्तीय दबाव यानी सॉवरेन स्ट्रेस के जोखिम को उच्च मानता है। इसी बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग BA3 पर नकारात्मक दृष्टिकोण बरकरार रखा है। ये रेटिंग निवेश योग्य श्रेणी से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। ये दोनों संकेत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की उन चिंताओं को दर्शाते हैं जो मॉरिशस की सार्वजनिक वित्त की स्थिति को लेकर हैं। रिपोर्ट में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये भी सामने आया है कि 30 जून 2024 तक सरकार ने स्थानीय ऋणदाताओं को 7.9 बिलियन मॉरिशियन रुपए और विदेशी ऋणदाताओं को 682.8 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय गारंटी दी थी। सरकार का घोषित लक्ष्य अब जून 2029 तक सार्वजनिक ऋण को जीडीपी के 80% से नीचे लाना है। इसके लिए विकास को समर्थन देने वाली राजकोषीय मजबूती यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन की रणनीति अपनाने की योजना है।

0: कल दोपहर बाद लाफरी में एक हाइड्रोप्लेन हादसे में 25 साल के पोलैंड के एक पर्यटक की मौत हो गई। वहीं बोबासे के रहने वाले पायलट को पुलिस के पहुंचने से पहले ही हाइड्रोप्लेन का संचालन करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने बचा लिया। गंभीर रूप से घायल पायलट को इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उसके कंधे और रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर हुए हैं। बजट 2025-2026 में घोषित VAT के पंजीकरण की सीमा को 6 मिलियन रुपए से घटाकर 3 मिलियन रुपए किए जाने के बाद मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने 655 मिलियन रुपए की आय एकत्र की है। ये आंकड़े पहली अक्टूबर 2025 से 29 जुलाई 2026 की अवधि को दर्शाते हैं। ये जानकारी प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने राष्ट्रसभा में PMQT के दौरान दी। वे लेबर पार्टी के सांसद रविराज बिचुक के प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इस अवधि में 8,764 नई कंपनियों ने VAT के लिए पंजीकरण कराया, जबकि सिर्फ 84 कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया। सरकार के अनुसार इस कदम का उद्देश्य व्यापारिक संस्थानों के बीच ज्यादा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों को औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग रेफरी और पूर्व सरकारी कर्मचारी स्टीव गायतों इस बेस्त को 21 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उनके सहयोगी एंटनी स्टीव साम को भी 21 साल की सजा दी गई है। दोनों को मडागास्कर से लाई गई लकड़ी की मूर्तियों में छिपाकर 2 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन की तस्करी का दोषी पाया गया। ये फैसला 4 अगस्त को असाइजेस अदालत द्वारा सुनाया गया। लुविना सूफी अस्टा रखू।
1: मामला मई 2017 का है। आत्सू को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर कस्टम के सहयोग से मेहोर स्थित मॉरिशस कंटेनर टर्मिनल में तमाता मडागास्कर से पहुंचे एक कंटेनर की तलाशी ली गई थी। पुलिस ने लकड़ी की कई मूर्तियों के अंदर छिपाकर रखी गई 2 किलो और 19 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। बरामद नशीले पदार्थ की कीमत 30 बिलियन से अधिक मॉरिशन रुपए आंकी गई थी। दोनों आरोपियों ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया था। अदालत के अनुसार स्टीव गायतों इस बेस्टर ने मडागास्कर से पार्सल भेजने के लिए जिगॉन नाम का झूठा नाम इस्तेमाल किया था। कंटेनर में सामान लोड करने से जुड़ी औपचारिकताओं में भी उसकी भूमिका थी। उसका बचपन का दोस्त और व्यापारी एंथोनी स्टीव साम शिपमेंट की प्रक्रियाओं से परिचित था। अदालत का मानना है कि उसने मडागास्कर के इंटरमीडिएरी को कथित रिगाओ की विश्वसनीयता के बारे में भरोसा दिलाया, जिससे बिना पहले जांच के पार्सल भेजने में मदद मिली। न्यायाधीश लक्ष्मी प्रसाद ओजैब ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों आरोपियों की भूमिकाएं अलग अलग थीं, लेकिन एक दूसरे की पूरक थीं और ये पूरी कार्रवाई सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई थी।
0: सांसद वेरोनिक ले गोविंद को इस बुधवार एंटी ड्रग एंड स्मगलिंग यूनिट आत्सू के सामने पेश होना है। ये कार्रवाई रेनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलोग्राम गांजा की कथित तस्करी की जांच के सिलसिले में की जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा कल संसद में दी गई जानकारी के अनुसार वेरोनिक ले गोविंद 2 अगस्त को अपनी इच्छा से आत्सू पहुंची थी। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें इस बुधवार को अपने वकील के साथ दोबारा उपस्थित होने के लिए कहा। इस मामले में उनके पति गुलशन गोविंद और रविंद्र त्रिमाजी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सांसद वेरोनिक ले गोविंद के SUV वाहन को भी पुलिस ने जब्त करके उसकी जांच की। जांच के दौरान उसमें गांजा का एक बीज और गांजे के कुछ निशान मिलने की बात कही गई है। पुलिस जांच के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन भी दंपत्ति की संपत्तियों की जांच कर रही है। और विदेश खबरों में तेल की कीमतों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई और ये पिछले 3 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इसकी वजह ये रही कि अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि ईरान के साथ एक समझौता हो सकता है, जिससे रणनीतिक महत्व वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जल मार्ग को फिर से जहाजरानी के लिए खोला जा सकेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री और वित्त मंत्री ने कहा है कि बातचीत में अच्छी प्रगति

प्रगति हुई है और अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो इस सप्ताह से ही तेल की खेपों की आवाजाही दोबारा शुरू हो सकती है। यूरोपीय संघ ने क्रेटा में प्रवासी संकट से निपटने के लिए स्पेन की तेज कार्रवाई की सराहना की है। मंगलवार को यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों की बैठक के बाद स्पेन के गृह मंत्री ने बताया कि 30 और 31 जुलाई के बीच लगभग 72,000 प्रवासी उत्तरी अफ्रीका स्थित स्पेन के क्षेत्र क्रेटा में प्रवेश कर गए थे। उन्होंने कहा कि इनमें से लगभग 70,000 लोगों को बाद में मोरक्को वापस भेज दिया गया। सीमा के स्पेन वाले हिस्से में कम से कम 75 लोगों की मौत हुई है, जबकि मोरक्को में 11 लोगों की मौत की खबर है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। मस्करेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवाएं चल रही हैं। पूर्व की ओर से आने वाली अस्थिरता से जुड़े बादलों का असर आज दिन से मौसम पर पड़ने लगेगा। आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी, खासकर पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। देर रात को पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होने लगेगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 16 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सुबह 6:37 पर सूरज निकला है और शाम 5:53 पर सूरज ढल जाएगा।

0: बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी, ये संदेश प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कल शाम दिया विग्रान रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट में मॉरिशस की सार्वजनिक अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई गई है। सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजटीय सहायता ऋण का अनुरोध किया है। 23 बिलियन रुपए से ज्यादा का ऋण दो चरणों में मिलेगा। और विदेश में ईरान समझौते की उम्मीद से तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड 3 हफ्तों के निचले स्तर पर आया है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजन का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
0: डॉक्टर के जानकी रोड लिस्पेरांस पीतो में 79 साल के 79 ईयर ओल्ड के श्री विष्णुदेव रामकरण, जो कॉमिक साडा से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह बाद के 3 बजे उनकी पत्नी प्रेमपति रामकरण के घर डॉक्टर के जानकी रोड लिस्पेरांस पीतो से उठाकर पीतो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे 8:30 PM। आलेजाक स्ट्रीट नुवेल फ्रांस में 64 साल की 64 ईयर ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मीन किडू, पैदाइश नाम गमंडी, और जो मैडम राविन से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पति रविन किडू के घर आलेजाक स्ट्रीट नुवेल फ्रांस से उठाकर नुवेल फ्रांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे 8:02 PM। डॉक्टर मनीलाल रोड मोसलमान सेंट आंद्रे में 77 साल के 77 ईयर ओल्ड के श्री यसदेव बरोसी, जो बीजेई से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे

के घर डॉक्टर मनीलाल रोड मुसलमान सैंत औंधे से उठाकर मुसलमान सैंत औंधे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट नून। सुल्फेरिनो नंबर 3 वाकवा में 71 साल की 71 ईयर ओल्ड की श्रीमती उर्मिला एतवा पैदाश नाम दुडम और जो माला से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके घर सुल्फेरिनो नंबर 3 वाकवा से उठाकर सुल्फेरिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। नंबर 47 कनाल बैटिस्ट सेंट क्वा में 77 साल के 77 ईयर ओल्ड के श्री सत्यदेव भैरू जो देव से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर नंबर 47 कनाल बैटिस्ट सेंट क्वा से उठाकर सिपाही भूले वाले देवप्रत्र की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट नून। रेलवे रोड लेस्पेरेंस त्रिबुशे में 36 साल की 36 ईयर ओल्ड की श्रीमती प्रतिमा रामखेलावन पैदाश नाम राजकुमार और जो प्रीति से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:00 बजे उनकी माँ वनिता गोकुल के घर रेलवे रोड लेस्पेरेंस त्रिबुशे से उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। पिचपाके रोड मोताई ब्लांश में 70 साल के 70 ईयर ओल्ड के श्री दयानंद कातुना जो अनिल से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:00 बजे उनके बेटे अशिव कातुना के घर पिचपाके रोड मोताई ब्लांश से उठाकर मोताई ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रुई मोरिस मेबर्ग में 58 साल के 58 ईयर ओल्ड के श्री देवेन पायन जो जेसन से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:00 बजे उनकी पत्नी गंद्रावती पायन के घर रुई मोरिस मेबर्ग से उठाकर टोंबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: 71वें श्रवानी उपकर्मा महोत्सव के समदर्थ में पॉम्पलमुस आर्य जिला परिषद आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में ब्रामदत्त नंदलाल भवन महारिषि में दयानंद स्क्वायर खियोले में बुधवार 5 अगस्त से रविवार 9 अगस्त तक 5 दिवसीय यजुर्वेदिया और वृष्टि यज का आयोजन कर रहा है। ग्रांड बे सीनियर सिटीजन द्वारा बुधवार के 5 अगस्त को श्रावण मास के समदर्थ में ग्रांड बे के सोशल वेलफेयर सेंटर में दिन के 12:30 बजे से 2:30 बजे तक एक यज्ञ का आयोजन कर रहा है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स
1: न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने गए हमारे एथलीट, खिलाड़ी और दिल्ली

डेलीगेशन के बाकी लोग कल वापस आए। एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया और खबर है कि आज गोल्ड मेडल जीतने वाला 28 साल बाद मॉरिशस के लिए गोल्ड मेडल जीतकर रेमी फेये आज मॉरिशस लौट रहा है, उसके लिए भी शानदार स्वागत का प्रबंध किया गया है। यूईएफए चैंपियंस लीग

0: Polevski et Kairat 0, Dynamo Zagreb ne Pant 0 se Kono Zalgiris Kohraya, Olympiakos 0 NEC 0, Sparta Prague 2 Lyon et Union Saint-Gilloise Tin Bodo Glimt Tin. Europa League met Larnes 0 Iberia 0, Shamrock Tin Ignacia Ek. Conference League met Ek Match Klager, Oda Tin met Dynamo Ko Ek 0 Sehraya. Friendly match में Bayern Munich की जीत 2-1 से Jeju टीम के खिलाफ, फिर Aston Villa ने भी अपना मैच जीता। आज के friendly मैचों में AC Milan का मुकाबला Inter Milan यानी मिलानो का मिलन, Chelsea खेलेगा Juventus के खिलाफ हांगकांग में, फिर मालोका Paris Saint-Germain Arsenal Betis। मोहम्मद सलाह और तुर्की की टीम Trabzonspor के बीच बातचीत हो रही है, negotiations on, आज सलाह इस्तांबुल जा रहा है। फीफा के सीनियर लीडर आज मोरक्को में मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट इन्फांटिनो ने सबको बुलाया है एक अर्जेंट मीटिंग के लिए। इन्फांटिनो के कमर्शियल प्लान पर काफी आलोचनाएं क्रिटिक्स बरस रही हैं। फीफा के चीफ ऑफ ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट आर्सेन वेंगर, सेक्रेटरी जनरल मैथियास ग्राफस्ट्रॉम, प्रिंस आली सब के सब इन्फांटिनो से सहमत नहीं है। बढ़ते तनाव और क्रिटिसिज्म के मद्देनजर इन्फांटिनो ने क्राइसिस मीटिंग बुलाई है। साइकिलिंग टूर डे फ्रांस डम में कल टाइम ट्रायल स्टेज लगा, अब स्विट्जरलैंड की मारलेन रूस नया लीडर बनी है, मॉरिशस की किम लेकूर पिना अब 15वें स्थान पर है, आज 5वां स्टेज होगा। और राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हुए, मॉरिशस की तरह कई देशों में एथलीटों और खिलाड़ियों का धूमधाम से स्वागत किया गया, पर ऐसे बहुत एथलीट हैं जो वापस नहीं जाना चाहते। कॉमनवेल्थ खेलों के बाद कई विदेशी एथलीट भाग गए, उगांडा से 4 बॉक्सर लापता हैं, पाकिस्तान का एक बॉक्सर भी वापस नहीं जाना चाहता, पर हमारे एथलीट वापस आ रहे हैं, मॉरिशस को पसंद करते हैं और मॉरिशस को उन पर गर्व है, उनका शानदार धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। ब्रावो कहेंगे हमारे उन सभी एथलीटों को जिन्होंने ग्लासगो 2026 में मॉरिशस का नाम रोशन किया और उन पर गर्व है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया, आगे लीजिए नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
2: जी हाँ, जो है समा कल हो ना हो, इसलिए तो कहते हैं ना कि जो भी है आज में है। अगर आपका आज अच्छा है, अगर आपका वर्तमान अच्छा है, तो भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाता है। चलिए यहाँ पर घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 7 बज रहे हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। बुधवार 5 अगस्त सुबह का नजराना, इस प्रोग्राम को लेकर हम यहाँ पर आ चुके हैं, आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं, आपकी सेवा में आपका साथ देने के लिए सवेरे के 9 बजे तक। सुप्रभात आप सभी को। नया दिन निकल चुका है और नया दिन जो है सिर्फ अपने आप में एक दिन नहीं होता है, बहुत कुछ इस नए दिन के साथ जुड़ा होता है। आशाएं, उम्मीदें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सपने, बहुत कुछ करना होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, अपने सपनों को साकार करना होता है, अपनों से मिलना होता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करना होता है। और चलिए जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, जो भी आपने सोचा है अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने अपनों के लिए, आपका हर एक सपना, आपका हर एक अरमा, आपकी हर एक मनोकामना जो है वो पूर्ण हो, ऐसी कामना हम करते हैं। और इन्हीं कामनाओं के साथ आज के इस सुबह का नजराना प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सवेरे सवेरे से, आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ मिलकर इस पल को हम यादगार बनाएंगे। आपको बता दें, चलिए कुछ क्षणों में हम बढ़ेंगे चिंतन की ओर। और सोचने का दिन होता है, मतलब कि कहते हैं ना कि हर एक दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ हो तो पूरा

0: दिन अपने आप में अच्छे से बीतता है। तो चलिए चिंतन की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब वह धन संपन्न होता है तब वह अकड़ कर चलता है, और जब वह धर्म संपन्न होता है तब विनम्र होकर चलता है। मनुष्य की विनम्रता को उसकी कमजोरी समझने की भूल न करें। वह जितना झुकता है उतना ही ऊंचा उठता भी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो विज्ञप्तियां सुन लीजिए। रिवे दे गाले के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहां पर आज बुधवार 5 अगस्त को दोपहर के 12 से दोपहर के 3 बजे के बीच यहां पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही पोस्लापायत के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। पोस्लापायत के खास कर कोस्टल रोड, रॉयल रोड, ब्राडो विजिटर्स सेंटर, मॉरिशस रेडियो टेलीस्कोप और एमवी इन्वेस्टमेंट यहां पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहां पर कल गुरुवार 6 अगस्त को सुबह के 8.30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच यहां पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी दो विज्ञप्तियां सीबी की ओर से।
2: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

चलिए इन खूबसूरत गानों के बीच अब समय हुआ है कि आपको बताएं कि आज रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। अभी के लिए यह है सुबह का नजराना। थोड़ी ही देर में यानी कि लगभग 7:40 से शामिल करेंगे आपके डेडिकेशंस, जिसके लिए सवेरे से ही आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स हमें मिल रहे हैं। आपके फ़ोन कॉल्स 4028085 पर, साथ ही आपके मैसेजेस 5251705 पर। और उसके बाद जो है 8 आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। 8:15 से हम लेकर आएंगे एक छोटा सा क्विज खेल खेले हम। 8:50 पर किरण जानकी से आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को। और एक भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना प्रोग्राम जो है समाप्त हो जाएगा। 9 आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी रत्ना। 10 होगा समाचार, उसके बाद हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। भक्ति धारा इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम ज्ञान चक्र हिंदू महासभा की प्रस्तुति में। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी से। 11 होगा समाचार, उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। दोपहर के 12 आप सुन पाएंगे विश्मा की प्रस्तुति में तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सौंदर्य लाहिरी। 12:30 प्रीति की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम। दोपहर के 1 आरसी प्रस्तुत करेगी तमिल भाषा में कार्यक्रम। 2:45 आप सुन पाएंगे गुजराती भाषा में प्रोग्राम अमिता की प्रस्तुति में। 2:30 से ऊषा आपका साथ देगी आपकी पसंद इस कार्यक्रम में।

बजे के समाचारों के बाद आपकी पसंदीदा कार्यक्रम जारी रहेगा। सपेर के 4 बजे शिरीष की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी कार्यक्रम विविधा। 5 बजे शाम के 5 बजे खेती बाड़ी पर आधारित आप कार्यक्रम सुन पाएंगे फारी की प्रस्तुति में। 5:15 बजे से अंताक्षरी इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे रोशन और उषा। 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। 6:30 बजे हाका भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे डेविड द्वारा। 7 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे युवराज सेन। 7:30 बजे तेलुगु भाषा में प्रोग्राम आप सुन पाएंगे राजेंद्र से। 7:50 पर नितिन की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी कार्यक्रम गीत गंगा। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे रोशनी से। 8:40 पर सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिल शब। 9:00 से 11:00 के बीच भोजपुरी तड़का इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे प्रताप। 11:00 गिनीशा की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे सुनहरे पल इस प्रोग्राम को। और 12:00 से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने तराने यहाँ चलते रहेंगे। तो इन्हीं रूपरेखाओं के साथ चलिए सुबह का नजराना इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं इन खूबसूरत गानों के जरिए। और जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, उम्मीद करते हैं जितने गाने ये खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत या उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आज का दिन हो आप सभी के लिए। शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

चले कुछ ऐसे बंधन होते हैं जैसे कि हमारा और आपका रिश्ता जो इस रेडियो के जरिए जुड़ता है, इन गानों के जरिए जुड़ता है, आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस के जरिए जुड़ता है, और एक खूबसूरत सा रिश्ता यहाँ पर हमारा और आपका भी बन गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए। और चलिए अगला जो गाना है वो बड़ा ही खूबसूरत है। सावन के महीने में है और सावन का महीना अपने आप में खूबसूरती का महीना माना जाता है, जहाँ पर पूजा प्रार्थनाएं तो होती ही है, ईश्वर की आराधना होती है, वहीं पर प्रकृति भी अपने ही रंग में रंग जाती है। बरसात होती है, कहीं कहीं पर हरियाली छाती है ना, और प्रकृति जब खिलती है ना तो हमारा मन भी खिलता है, और प्रकृति का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। और कहीं ना कहीं प्रकृति की बात करें तो जिस तरह से हमारा ये पर्यावरण है, हमारी ये प्रकृति है, जो हमें सदा देते रहती है, बदले में कुछ मांगते हुए, बदले में कुछ चाहते हुए, हमें भी उससे सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम जो हैं देने से ज़्यादा लेने में यकीन करते हैं, लेकिन देना भी उतना ही आवश्यक होता है जितना हम अपने जीवन में चाहते हैं, क्योंकि जो देंगे वही तो पलट कर हमें मिलता है ना। तो चलिए इस अगले गाने के साथ इस सावन के महीने का आनंद लेते हैं।

चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सावन को आने दो, ये जो गाना जब चला तो बहुत से लोगों को ये गाना पसंद आया, कहा कि सावन के बारे में कुछ और बातें सुनना चाहते हैं। ऐसे सावन का महीना तो अपने आप में कमाल का होता ही है, मतलब कि जितनी भक्ति की भावना इस सावन के महीने से जुड़ी होती है, भगवान शिव की आराधना होती है, और सावन के सोमवार तो अपने आप में काफ़ी जो है लाभकारी होते हैं, है ना। उसके अलावा अगर हम प्रकृति की बात करें, पर्यावरण की बात करें, हमारे आसपास चाहे फैली हुई सुंदरता की बात करें, वो भी हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क पर बहुत अच्छा असर डालती हैं। और महिलाओं के लिए तो ये खास होता है, क्योंकि किसी भी हम अनुष्ठान की बात करते हैं, किसी भी अच्छे कार्यों की बात करते हैं, कुछ नया करने की बात करते हैं, तो महिलाएं इसमें अवश्य जुड़ी होती हैं। महिलाओं का योगदान हमारे जीवन में बहुत होता है, और किसी भी सभ्यता को आगे ले जाने के लिए महिलाएं अपना जो है योगदान देती है, जो कुछ जानती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। और सावन के महीने में सहेलियां, सखियां एक दूसरे के साथ मिलती है, सजती है, संवरती है, मेहंदी लगाती है, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती है, हरे रंग की साड़ियाँ पहनती है, और बहुत तरीके से लोग जो है सावन के इस महीने को मनाते हैं। आप बताइए आप कैसे इस महीने को मना रहे हैं। अभी के लिए जो गाना चल पड़ा है, ये गाना भी ऐसा ही है जहाँ पर सखियाँ झूला झूल रही है, एक दूसरे के साथ गाना गा रही है, प्रकृति का आनंद उठा रही है। तो सिलसिला फिल्म का ये खूबसूरत गाना आप सभी के लिए।

रे, इस गाने में कितनी खुशी है और उस खुशी को हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं और ये खुशी आप तक भी पहुँच रही है, इसकी पूरी उम्मीद है हमें। और चलिए यहाँ से शुरुआत होती है आपके डेडिकेशंस की। बहुत बहुत शुक्रिया सवेरे से जो भी फ़ोन कॉल्स हमें मिल रहे हैं, जो भी मैसेजेस हमें मिल रहे हैं उसके लिए। और यहाँ पर चलिए, यहाँ पर बड़े ही प्यार से इस समय हमारे साथ जो है अनीता जी जुड़ी हुई है, मौदालबिया से हमारा साथ दे रही है। कहती है श्रवण मास सभी के लिए शुभकामनाएं दे रही है और गाना जाएगा इनकी ओर से करुणा, अमृता, कविता के नाम और इनके सभी दोस्तों के लिए। शिवरानी जी ग्रोंबोआ से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद शिवरानी जी आपके फ़ोन कॉल के लिए और बहुत अच्छा लगता है हमें भी आप लोगों से बात करना। सुरागिनी जी जो है इस समय बॉशेरी से हमारा साथ दे रही है, कहती है अगला गाना हो जाए पति चंद्रदेव के नाम, और कह रही है कि आजकल वो छुट्टियों पर है तो चाय पीते पीते प्रोग्राम का मज़ा उठा रही है। ऐसे तो सवेरे सवेरे उन्हें उतना सुनने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन अभी 15 दिन की छुट्टी लेकर वो घर पर है और हर रोज़ प्रोग्राम को सुनती है। तो चलिए ऐसे ही साथ देते रहिए, शुभ दिन कहेंगे हम सुरागिनी जी आपको। उषा जी हाईलैंड से हमें फ़ोन किया, कह रही कि गाने इतने कमाल के हैं कि बगैर फ़ोन किए उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने फ़ोन कर दिया। चलिए हमें भी बड़ा अच्छा लगा उषा जी आपसे बात करके। अगला गाना आपके नाम करते हैं, आपके सभी मोहन सिंह और सभी कुंज बिहारी परिवारों के नाम। और इस समय हमारे साथ माला जी भी बड़े प्यार से जुड़ी हुई है। जिंदगी गुजरे आपकी हंसते हंसते, प्यार और खुशी मिले रस्ते रस्ते, हो मुबारक आपको नया सवेरा, कबूल करिए हमारा सलाम नमस्ते। अरे वाह, ये खूबसूरत सा मैसेज जो है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माला जी, आपको भी हम शुभ दिन कहेंगे। अगला गाना जाता है सभी सुमारू परिवार के नाम और खासकर माला जी आपके लिए भी और हमारे सभी श्रोताओं के लिए।

चलिए, हमारे सुनने वालों जैसा भी कोई नहीं जो हमेशा हमारा साथ देते रहते हैं, हमारे कार्यक्रमों में जुड़ते रहते हैं। आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, यहाँ पर डेडिकेशंस का जो सिलसिला है इसे हम आगे ले जाते हैं। और जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य, आपके दोस्त अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारी पूरी जो है पूरी टीम की ओर से। और यहाँ पर जो है शैला जी आज अपना जन्मदिन मना रही है, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपके पति साजन की ओर से, साथ में आपके बेटे और पूरे परिवार की ओर से रेशमा है, हेमा है, प्रीति है, गौसव है, विकास है, सभी बेचान परिवार की ओर से

सभी नाती पोतों की ओर से भी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं शैला जी। और यहाँ पर नातिन निया, कुछ दिनों पहले इनका जन्मदिन था, आपको निया जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दादी दादा मून और चांद की ओर से, पापा और मामा की ओर से, मामा है नीलम, और आपके पापा की ओर से सभी फुकेचंद परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो है देखते हैं और कितने हमारे सुनने वाले अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और चलिए यहाँ पर भतीजी रेशमा का जन्मदिन है, तो रेशमा आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आई है भविष्य अविष्य की ओर से। साथ में आपके पति है सूरज, शुभकामनाएं आपके मामा कुमारी बहन कृष्णा और भाइयों की ओर से, कमलेश है, गौसव है, विकास है, अजय नीरज, सभी परिवारों की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, खासकर आपके सभी मामू और सभी मौसियों की ओर से। बॉम्बू से लक्ष्मी जी ने आपको शुभकामनाएं दी है खासकर। और यहाँ पर इस समय ग्रॉन्गप से सुनीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो आप को भी जो है हम शुभ दिन कहेंगे। सुनीता जी आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए।

जहाँ दिल उसे दो जो जा दे दे, जहाँ उसे दो जो दिल दे दे। और चलिए अभी के लिए यहाँ पर अगला जो गाना है, विश्वानी जी आपके नाम हम करते हैं, कौदेमास से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यही गाना आपकी ओर से जाएगा वीणा रामपोल जी के लिए और श्यामा रघुनंदन जी के लिए। जयबुन जी अपनी भतीजी हाजरा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही हैं। हाजरा आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपके पापा साउथ की ओर से, आपके दादा अबीद और दादी सबीना की ओर से, साथ में सभी रसमली परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर देवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्यारे तराने, वेरी नाइस, लाजवाब, थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए। शुभ दिन आपको भी हम कहेंगे देवी जी। और अगला गाना आपके नाम और आपके पूरे परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप है, चलिए कभी कभी लोग ना मैसेज में अपना नाम नहीं लिखते तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सा मैसेज आया है आपके हस्बैंड के लिए अगला गाना। ना आपने अपना नाम लिखा, ना आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखा, तो पता नहीं आप कौन हैं, लेकिन आपने मैसेज किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर ओके शोभा जी है ओके। और इस समय हमारे साथ अनीता जी भी फ्लिक ऑफ लक से साथ दे रही है, सभी को शुभ दिन कह रही है। और अगला गाना आपके लिए भी और आपके पूरे परिवार के लिए भी। और इसी गाने के साथ डेडिकेशंस का ये जो सिलसिला है यही समाप्त होता है, लेकिन हमारी आपकी मुलाकात जो है वो जारी रहेगी। अभी के लिए इस गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 8 बजे के भोजपुरी समाचार और शोक समाचार की ओर। मिलते हैं हम आपसे सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में। साथ देते रहिए हमारा, यूं ही नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सबके की नमस्ते। फजर की 8 बजलबा भोजपुरी में समाचार सुना जा। मॉरिशस के अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर आने खातिर त्याग और बलिदान की जरूरत बा। इस संदेश प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम काल सांझ के दिलन उग्रांड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा के 80वां वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में बोला थलन। प्रधानमंत्री सबसे पहले मॉरिशस में भाषा के संरक्षण में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के महत्वपूर्ण भूमिका के सराहना करलन। एकर संगे संगे उ राष्ट्र एकता और सहयोग के मांग भी करलन। उ बोलन कि देश के अर्थव्यवस्था के बचाए खातिर सरकार कठिन फैसला लेवता। उ ई भी स्पष्ट करलन कि सब मॉरिशस वासी लोग के भागीदारी और सहयोग के बिना ई लक्ष्य हासिल करे के संभव नहीं रही। अफ्रीकी विकास बैंक के कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 जून 28 जुलाई के प्रकाशित होल मॉरिशस के सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के लेके चिंता जतैले बा। रिपोर्ट के अनुसार सरकार जून के शुरुआत में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 23 बिलियन रुपया के से जस्ती के बचत सपोर्ट लोन के मांग कर ले बा। ई वित्तीय सहायता 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के दूगो किस्त में जारी करल जाए जिन वित्तीय बरिस 2026-2027 और 2027-2028 के दौरान मिली। कल सांझ के लाप्रेरी में एगो हाइड्रोप्लेन हादसा में 25 बरिस के पोलैंड के एगो पर्यटक के मौत हो गल। बोबासा के रहे होला पायलट के पुलिस के पहुंचला से पहले ही हाइड्रोप्लेन के संचालन करे होला कंपनी के कर्मचारी लोग बचा ले लंसा। गंभीर रूप से घायल पायलट के इलाज खातिर एगो निजी क्लिनिक में भर्ती करल गल बा। ओकर कंधा और रीढ़ की हड्डी ढेर जगह टूट गल बा। बजट 2025-2026 में घोषित वीएटी के पंजीकरण के सीमा के 6 मिलियन रुपया से घटा के 3 मिलियन रुपया करला के बाद एमआरए 655 मिलियन रुपया के आय कमाई लेबा। ई आंकड़ा पहला अक्टूबर 2025 से 29

0: जुलाई 2026 की अवधि खातिर है। ये जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम राष्ट्रीय सभा में काल पीएमक्यूटी के दौरान दिलन ऊ लेबर पार्टी के सांसद रविराज बिचुक के प्रश्न के जवाब देवत हलन। ये अवधि में 8,764 गो नवा कंपनी वीएटी खातिर पंजीकरण करलन स, जबकि खाली 84 कंपनी के पंजीकरण रद्द कर देवल गल बा। सरकार के अनुसार ये कदम के उद्देश्य व्यापारिक संस्था के बीच जस्ती निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करे के है और अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसाय के औपचारिक अर्थव्यवस्था के हिस्सा बनाए खातिर प्रोत्साहित करे के है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग रेफरी और पूर्व सरकारी कर्मचारी स्टीव गायतों इस बैस्त के 21 बरिस के कठोर कारावास के सजा सुनावल गलबा। उनकर सहयोगी एंटनी स्टीव साम के भी 21 बरिस के सजा देवल गलबा। दोनों के मडागास्कर से आनलगल लकड़ी के मूर्ति में 2 किलोग्राम से जस्ती हेरोइन के तस्करी के दोषी पाल गलबा। ये फैसला 4 अगस्त के एसाजेज अदालत बगल से सुनावल गल। सांसद वेरोनिक ले गोविंद के आज आजसू के सामने पेश हुई के परी ये कार्रवाई रोनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलोग्राम गांजा के तस्करी के जांच के सिलसिला में करल जाता। प्रधानमंत्री काल संसद में देवलगल जानकारी के अनुसार वेरोनिक ले गोविंद 2 अगस्त के अपन इच्छा से आजसू पहुँचलन, पर अधिकारी लोग उनकरा आज अपन वकील के संगे फिर से आए के बोलन स। ई मामला में उनकर पति गुलशन गोविंद और रविंद्र चिमाजी के पहले ही गिरफ्तार करल गलबा। सांसद वेरोनिक ले गोविंद के एसयूवी वाहन के पुलिस जब्त कर ले लेबा और जांच कर लेबा। जांच के दौरान उकर में गांजा के बिया और गांजा के निशान मिलल बा। पुलिस जांच के संगे संगे FCC भी दंपत्ति के संपत्ति के जाँच कराता। और दूसर देश के खबर में तेल के कीमत के में मंगलवार के गिरावट दर्ज करल गल और ई गल 3 सप्ताह के सबसे कमती स्तर पर पहुंच गल बा। एकर वजह यह कि अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी लोग के उम्मीद बा कि ईरान के संगे एगो समझौता हो सकी जेकर से रणनीतिक महत्व होला स्टेट ऑफ होमयूज समुद्री मार्ग के फिर से खोले सकल जाए। एक संगे भोजपुरी में समाचार पूरा हो गल। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद और सब के नमस्ते।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: मरने की खबर सुना जा। रुई मोरिस मायबू में 58 बरिस के 57 के श्री डेवेन पायन जिन जेसन से जस्ती जानल जातरलन गुजरकल हवन अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकर पत्नी गंठौती पायन के घर रुई मोरिस मायबू से उठा के टोंबो मायबू के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे 8:01 PM पिछपा के रोद मोताई ब्लॉन्च में 70 बरिस के स्वसंजीजों के श्री दयानंद कातुना जिन अनिल से जस्ती जानल जातरलन गुजरकल हवन अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकर बेटा आशिफ कातुना के घर पिछपा के रोद मोताई ब्लॉन्च से उठा के मोताई ब्लॉन्च के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे 8:02 PM रेलवे रोड एस्पेरेंस त्रिबुशे में 36 बरिस के 36 के श्रीमती प्रतिमा राम खेलावन पैदाइश नाम राजकुमार अर्जुन प्रीति से जस्ती जानल जातरलन गुजरकल हवन अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकर माँ वनिता गोकुल के घर रेलवे रोड एस्पेरेंस त्रिबुशे से उठा के पीतों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे 8:00 PM नंबर 47 कनाल बैथेस्ट सेंट क्वा में 77 बरिस के 77 के श्री सत्यदेव बोयरू जन देव से जस्ती जानल जातरलन गुजरकल हवन अर्थी आज दिन के 12:00 PM उनकर घर नंबर 47 कनाल बैथेस्ट सेंट क्वा से उठा के सिपाही भूले वाले देवप्रत के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रोमेशन टुडे 8:00 PM सुल्फेरिनो नंबर 3 वाकवा में 71 बरिस के 71 के श्रीमती उर्मिला एतुआ पैदाश नाम डोडम और जो अर्जुन माला से जस्ती जानल जाथरलन गुजरकल हवन अर्थी आज दिन के 11:00 PM उनकर घर सुल्फेरिनो नंबर 3 बाकवा से उठा के सुल्फेरिनो के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमिशन टुडे 11:30 AM डॉक्टर मनीलाल रोड मोसलमो सैंत में 77 बरिस के 77 के श्री यशदेव बरोसी जिन विजय से जस्ती जानल जात रहलन गुजर कल हमन

0: अर्थी आज दिन की 12:59 घर डॉक्टर मनीलाल रोड मोसलमो सैतौंधे से उठा के मोसलमो सैतौंधे के श्मशान भूमि ले जाल जाए क्रिमिशन टूटिया था पोस्ट नून आलेशाक स्ट्रीट नुवेल फ्रांस में 64 बरिस के ससन काथों के श्रीमती लक्ष्मीन किधू पैदाश नाम गमंडी और जो मैडम गाविन से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकर पति गाविन किधू के घर आलेशाक स्ट्रीट नुवेल फ्रांस से उठा के नुवेल फ्रांस के श्मशान भूमि ले जाल जाए क्रिमिशन टूडे एट 2 PM एसएसओ स्ट्रीट सेंट फ्रांसवा काप मालोरे में 77 बरिस के 77 के श्रीमती जसमती मंगा पैदाश नाम ब्रजमोहन आजुन मंजू से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन अर्थी आज दिन के 12:59 उनकर घर एसएसओ स्ट्रीट सेंट फ्रांसवा काप मालोरे से उठा के बेलमो गुडलैंड के श्मशान भूमि ले जाल जाए क्रिमिशन टू डी एट हाफ पास्ट नून डे के जानकी रोड लिस्पेरेंस पीतों में 79 बरिस के 79 के श्री विष्णुदेव रामकरण जिन कोमिक साडा से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन अर्थी आज सांझ के 3 बजे उनकर पत्नी प्रेमपति रामकरण के घर डे का जानकी रोड लिस्पेरेंस पीतों से उठा के पीतों के श्मशान भूमि ले जाल जाए क्रिमिशन टूडे एट 3 PM जितना जना शोक में बाऊ लोग के संगे हमने के हमदर्दी बा
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस रेडियो मॉरिशस
2: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 5 अगस्त ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। ला फ्लोरा के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। ला फ्लोरा के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक रामसहाय रोड, बाला रोड, शिबनोत लेन, स्कूल रोड, शोभा लेन, कुतवारू रोड, बॉम्बे रोड, चमन रोड, रंगलाल रोड, बॉस्टन रोड, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 6 अगस्त को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक ज़रूरी विज्ञप्ति सीबी की ओर से।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: चलिए सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। और अब बारी है एक छोटे से क्विज की, और जिसका इंतजार आप सभी बेसब्री से करते हैं हमें पता है। तो चलिए, आज एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस अपना जन्मदिन मना रही है। 5 अगस्त 1974 को इनका जन्म हुआ था। आपको जल्दी जल्दी हमें इनका नाम बताना है। इनके बारे में बताए तो जो है इन्होंने 90 के सालों में अपने करियर की शुरुआत की थी बेखुदी इस फिल्म से, और फिर देखते ही देखते अभी वो बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस में इनका नाम गिना जाता है। तो 4028085 है नंबर हमारा। आज बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस अपना जन्मदिन मना रही है, तो आप हमें उनका नाम बताएं। ऐसे इनकी बात करें तो इनकी माँ भी जो है फिल्मों में काम कर चुकी है, वो भी अपने टाइम की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक रह चुकी हैं। और चलिए, यहाँ पर लग रहा है आप लोगों को अंदाज़ा हो गया है, जवाब मिल गया है, इसलिए इतने सारे फ़ोन कॉल्स जो है यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। मिलते हैं पहले श्रोता से। हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्ते सुबह जी, मैं कौते से आशा जानू बोल रही हूँ।
0: कैसी है आशा जी?
1: बस मौसम का असर है, तुमसे सर्दी हुई है।
0: चलिए आप अपना ख्याल रखिए। और बताइए क्या है जवाब आपके पास?
1: मेरे ख्याल से वो काजल है।
0: ओके, और काजल की कोई खास फिल्म जो आपको अच्छी लगती है?
1: वैसे तो उनकी सभी के सभी फिल्में बहुत ही खास होती है, जबरदस्त होती है।
0: ओके,
1: और जैसे कि हलचल और प्यार तो

0: नहीं था, कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये तो उनकी फेमस फिल्मों में से एक से बेहतरीन फिल्म है। तो उनकी अदाएं, उनकी एक्टिंग और उनके जितने भी फिल्म उन्होंने की हैं, उनके सभी गाने आज तक बहुत ही लाजवाब होते हैं, हम सुनते रहते हैं अक्सर रेडियो पर।
1: जी
0: तो वो बहुत बहुत एंड आई थिंक वो जो हमारे 90s के दर्शक है अभी भी उनको बहुत ही बहुत पसंद करते हैं।
1: तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी आपके जवाब के लिए। जुड़े रहिएगा, थोड़ी देर में बताएंगे सही जवाब क्या है। हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार,
1: जी, आपका स्वागत है। कौन है?
0: मैं कैप्टन से गायत्री हूँ।
1: कैसी है गायत्री जी?
0: मैं ठीक हूँ।
1: और क्या है जवाब? ओके,
0: जवाब है, मेरा जवाब है काजल।
1: और कुछ बताना चाहेंगी काजल के बारे में?
0: वो मुझे बहुत अच्छी लगती है,
1: ओके, बहुत धन्यवाद
0: और
1: गायत्री
0: उसकी
1: जी।
0: जोड़ी अजय देवगन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है।
1: ओके जी, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भाग लिया गायत्री जी, आपको हम शुभ दिन कहेंगे। एक और श्रोता की ओर हम बढ़ेंगे। हेलो, नमस्कार।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, कौन है ये?
0: आई
1: किसकी आवाज़ है ये प्यारी सी?
2: एम सरोज फ्रॉम क्यूपी।
1: कैसी है सरोज जी आप?
2: इस काजोल
1: ओके, थैंक यू आपके
0: आई
1: जवाब के लिए।
2: लाइक ऑल हर फिल्म्स। आई लिव इन यूके फॉर 52 इयर्स,
1: ओके,
2: बट ऑल हर फिल्म्स व्हाट वाज कमिंग इन द सिनेमा स्क्रीन
1: ओके, तो
2: आई
1: चलिए,
2: डिड नॉट मिस नॉन ऑफ हर फिल्म।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मॉरिशस घूमने आई हैं?
2: नहीं, मैं तो यहाँ पर आई हूँ, बट बहुत हिंदी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर क्योंकि मैं तो 90 इयर्स हो गई हूँ,
1: ओके, चलिए आप,
2: 90 इयर्स एंड द फोर्थ
1: ओके
2: 14th of June,
1: ओके,
2: बट
1: बिलेटेड
2: आई
1: हैप्पी
2: सेलिब्रेटेड
1: बर्थडे।
2: ऑल माय फैमिली इन द केप टाउन हॉल।
1: ओके जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ी। आपने कहा उतनी हिंदी नहीं आती, पर फिर भी आपने कोशिश की, इसके लिए धन्यवाद। आपको हम शुभ दिन कहेंगे, और इसी तरह रेडियो मॉरिशस से आप जुड़ी रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है। हेलो, नमस्कार
3: नमस्कार,
1: जी, कौन है?
3: हम तारा हैं।
1: तारा जी, कैसी हैं आप?
3: ठीक है।
1: ओके, और क्या है जवाब?
3: जवाब है काजल,
1: ओके, और
3: उसके माता जी है और उसके माता जी को बहुत पसंद करते
1: नाम
3: हैं।
1: बताए उनकी माँ का।
3: उसके माँ का नाम उतना थोड़ा याद नहीं आती
1: चलिए बताए, तनु तनुजा
3: बहुत सब हम लोग हरदम से उसको माँ को फिल्म लिखते हैं,
1: अच्छा
3: सब
1: जी,
3: फिल्म लिखते हैं।
1: अच्छा जी, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी, आपने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया इसके लिए। हेलो, नमस्कार
4: नमस्ते सुमी जी
1: जी, नमस्ते, कौन है?
4: जी, मैं देवी देवी हूँ और मेरा जवाब है काजल जी।
1: कैसे हैं देवी जी आप? आपका जवाब के लिए
4: ठीक,
1: शुक्रिया
4: आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह से बहुत अच्छी अच्छी नजराने हमारे दामन में डाली,
1: ओह, बहुत धन्यवाद, चलिए
4: बहुत
1: आप
4: अच्छा
1: ऐसे ही
4: लगा,
1: साथ देते रहिए।
4: हमें हमें बहुत खुशी मिली।
1: बहुत
4: थैंक
1: शुक्रिया,
4: यू
1: शुभ दिन,
4: ओम नमः
1: बाय,
4: शिवाय
1: ओम नमः
4: शिवाय,
1: शिवाय।
4: बाय बाय।
1: और चलिए, एक और श्रोता की ओर हम बढ़ेंगे। हेलो, नमस्ते
5: हेलो नमस्ते,
1: जी, कौन है?
5: मैं हूँ वसंती,
1: कैसी है
5: गुमासन
1: वसंती जी
5: से।
1: आप?
5: मैं ठीक हूँ और आप?
1: बिल्कुल ठीक है वसंती जी, और
5: जी
1: बताइए क्या है जवाब?
5: जवाब है काजल।
1: ओके,
5: और मैं ये कहने जाती हूँ, जो माता जी जो है 90 इयर्स के,
1: हाँ?
5: उसमें इतना हिम्मत है सुबह सुबह फोन लेके एमबीसी फोन करना। आई
1: जी
5: सैल्यूट हर करेज।
1: चलिए, हमें भी शायद वो पहली बार हमारे प्रोग्राम से जुड़ी है।
5: मेरी अम्मी जैसी है ना,
1: हाँ,
5: आई एम वेरी हैप्पी टू हियर हर।
1: चलिए, अच्छा लगा हमें भी
5: थैंक
1: उनसे
5: यू।
1: बात करके, धन्यवाद। और एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो, नमस्कार।
6: हेलो नमस्ते,
1: नमस्ते जी, कौन है?
6: मैं हूँ रीता लालवा से।
1: कैसी है रीता जी?
6: मैं ठीक हूँ, यहाँ मौसम ठीक नहीं है।
1: ओके, चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, और बताइए जवाब क्या है?
6: काजल जी, काजल।
1: ओके, चलिए आपके भी जवाब को हमने नोट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन आपको। और यहाँ पर अनीता जी की ओर से जवाब आया है, उन्होंने लिखा है, जवाब है काजल। ओके, एक और जवाब यहाँ पर आया है शिमला जी की ओर से, जो लिखती है आंसर इज काजल। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने सही जवाब दिया। जी हाँ, आज बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक काजल जो है

इज़ सेलिब्रेटिंग अपना बर्थडे आज ही की तारीख, जी हाँ आज ही की तारीख 5 अगस्त 1974 को इनका जन्म हुआ था। 1992 में बेखुदी इस फिल्म से इन्होंने करियर की शुरुआत की थी और बाजीगर इस फिल्म से इन्हें वो कामयाबी मिली थी कि क्या कहे। फिर बाजीगर, ये दिल लगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों के ज़रिए ये लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती गई और आज बॉलीवुड के जो है पॉपुलर एक्ट्रेसेस में इनका नाम गिना जाता है। इनकी शादी अजय देवगन के साथ हुई और इनकी जो ऑन स्क्रीन जोड़ी है वो है शाहरुख खान के साथ, जो लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलिए, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस क्विज़ में, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगला तराना

तो चलिए बाजीगर फिल्म का ये खूबसूरत सा तराना अभी आप सुन रहे थे विनोद राठौड़ जी की आवाज़ में। यकीनन बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। जीवन में कभी कभार ऐसे हालात हमारे भी आ जाते हैं, कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन शब्द नहीं मिलते हैं, लफ्ज़ नहीं मिलते हैं, अल्फाज नहीं मिलते हैं, मौका नहीं मिलता है या ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जिनको हम अपने दिल की बात कह पाए। और कभी कभार बोलने का मौका होता है लेकिन ऐसा होता है कि जो कहना होता है वो भूल जाते हैं। चलिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलते रहती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो भी कुछ कहने को हो है वो दिल में कोई बात आती है तो कह देना चाहिए। क्या पता आज आपको मौका मिल रहा है, कल को वो मौका मिले ना मिले। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे अपने दोस्त हैं जिनसे आप अपने दिल की हर एक बात शेयर कर सकते हैं तो आप

0: बहुत ही खुशकिस्मत है।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: और अब बारी है हमारी धरोहर इस प्रोग्राम की, तो आइए इसे हम सुनते हैं किरण जानकी जी से।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज 6 अगस्त है और आज के दिन हिरोशिमा दिवस के पालन करल जाला। ये उही दिन है जब 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर में एगो एटॉमिक बम छोड़ल गल रहल अमेरिका द्वारा। ये दिन पहला हला दुनिया में परमाणु यानी न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल करत दिखल गल। और हिरोशिमा के 3 दिन बाद एगो दूसर परमाणु बम नागासाकी में ऊपर से गिरावल गल। जानेला एकर बाद हिरोशिमा में का हो रहल और काहे इ दिन के पालन करल जाला, तो चला इ पर ध्यान दे जा। इ परमाणु बमबारी से दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गल। हर एगो संगीतमय समारोह के आयोजन करल जाला यहाँ पर। गॉलवे अलायंस अगेंस्ट वॉर द्वारा शांति के बढ़ावा देवे खातिर हर बरिस 6 अगस्त 1945 के दूसरा विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स एगो अमेरिकन B-29 बॉमर विमान जेकर नाम रहल एनोला के, ओकर द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर एगो एटॉमिक बम गिरेले रहल और एकर से बहुत बर्बादी होल। इस शहर 90% भस्म हो गल। तुरंत ही लगभग 80,000 जना के जान चल गल। लगभग 35,000 जना जख्मी हो गए लंजा उही साल में। और ओकर बाद भी अनगिनत लोग रेडिएशन के गहरा जलन और अन्य बीमारी के शिकार होते रहलन सा। ये हादसा के 3 दिन बाद जब दूसरा बम जापान के नागासाकी शहर में छोड़ा गल, तब जापान के राजा पूरा समर्पण के ऐलान करलक। 15 अगस्त के दिन रेडियो पर

बोलन कि ई दर्दनाक और विनाशकारी परमाणु बमबारी के वजह से ई फैसला लेवल जाता। एकर बाद फिर आज ले कबो आम जनता पर ऐसा परमाणु प्रहार नहीं कर गल, लेकिन जोन पीड़ा से जापान के जनता गुजरल ई बमबारी से उ नहीं सकल जाए समझावे शब्द में।

0: समय अनुसार फजीर के 8:15 पर ई परमाणु बम छोड़लक लगभग 2000 फीट ऊपरे से और एक विस्फोट 12,000 से 15,000 टन के TNT के बराबर रहल और ई शहर के 5 square miles के बर्बाद कर देलक। ई दुगो शहर के तबाही के बाद जापान के समर्पण के उपरांत युद्ध समाप्त हो गल। लिटिल बॉय न्यूक्लियर बम से हिरोशिमा में कौन असर होल? जब ई बम विस्फोटित होल तब आंख के चकाचौंध करे होला, बिजली जैसन चमकल और एगो मशरूम के आकार में धुआं के बादल छागल। हुआ के लगभग 90,000 इमारत सफाचट हो गल। बरसों तक अजीब और दर्दनाक बीमारी से हुआ के लोग जान गंवा ले गैलन सा। तक काहे ई परमाणु बम अमेरिका जापान पर गिरवैलक? जैसे जानेला दूसरा विश्व युद्ध में जापान अमेरिका और ओकर साथी देश जैसे ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के विरुद्ध रहल। चीन और जापान अमेरिका पर वार करत रहन सा और ई युद्ध लंबा समय तक चलते आवत रहल। जापानी सैनिक बहुत ही निर्दयी रहलन सा। उ लोग समर्पण करे होला, सैनिक पर जुल्म करत रहलन सा। त अमेरिका जापान पर ई प्रहार करलक ताकि ई युद्ध खत्म हो जाए और सच में यही बात होल। त ई रहल हिरोशिमा डे पर आज के कार्यक्रम और देख लीजा कैसे हमने के विश्व में चले होला दूसरा युद्ध के समाप्ति कितना दर्दनाक रहल। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
2: तो चलिए इसी के साथ किरण जानकी जी को हम धन्यवाद देंगे हमारी धरोहर इस कार्यक्रम के लिए। और अब बारी है इस भोजपुरी गीत की, जिसके साथ हमारी आपकी मुलाकात समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, सवेरे के 6 बजे से आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। 9 बजे आप सुन पाएंगे समाचार और समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे आज की चर्चा इस प्रोग्राम को, जिसे प्रस्तुत करेगी रत्ना। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर भी और इसे आप फॉलो कर पाएंगे MBC प्ले ऐप पर भी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए MBC रेडियो से और हमारा साथ यूं ही देते रहिए। आज अभी के लिए बस इतना ही, हमारी आपकी मुलाकात दोबारा होगी 10 बजे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी हैं गीता जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते गीता जी।
2: नमस्कार रत्ना जी, सभी को हमारा नमस्कार। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी, ये संदेश प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कल शाम दिया। वे ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मॉरिशस में भाषाओं के संरक्षण में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार कठिन फैसले ले रही हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी मॉरिशस वासियों की भागीदारी और सहयोग के बिना ये लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं होगा। अफ्रीकी विकास बैंक की कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 जो 28 जुलाई को प्रकाशित हुई, मॉरिशस की सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जून की शुरुआत में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 23 बिलियन मॉरिशन रुपए से ज़्यादा के बजट सपोर्ट लोन की मांग की है। ये वित्तीय सहायता 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 2 किश्तों में जारी की जाएगी। कल दोपहर बाद लापरी में एक हाइड्रोप्लेन हादसे में 25 साल के पोलैंड के एक पर्यटक की मौत हो गई। वहीं बोबासे के रहने वाले पायलट को पुलिस के पहुंचने से पहले हाइड्रोप्लेन का संचालन करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने बचा लिया। गंभीर रूप से घायल पायलट को इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग रेफरी और पूर्व सरकारी कर्मचारी स्टीव गायतों इस बेस्तर को 21 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उनके सहयोगी एंटोनी स्टीव साम को भी 21 साल की सजा दी गई है। दोनों को मारागास्कर से लाई गई लकड़ी की मूर्तियों में छिपाकर 2 किलोग्राम से ज़्यादा हेरोइन की तस्करी का दोषी पाया गया। ये फैसला 4 अगस्त को असाइसिस अदालत द्वारा सुनाया गया। सांसद वेरोनिक लेगोविन को इस बुधवार एंटी ड्रग एंड स्मगलिंग यूनिट के सामने पेश होना है। ये कार्रवाई रूनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलोग्राम गांजे की कथित तस्करी की जांच के सिलसिले में की जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा कल संसद में दी गई जानकारी के अनुसार वेरोनिक लेगोविन 2 अगस्त को अपनी इच्छा से आजसू पहुंची थी। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें इस बुधवार अपने वकील के साथ दोबारा उपस्थित होने के लिए कहा। इस मामले में उनके पति गुलशन गोविंद और रविंद्र चिमाची को पहले ही गिरफ्तार किया।

0: किया जा चुका है। और विदेशी खबरों में तेल की कीमतों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई और ये पिछले 3 सप्ताहों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इसकी वजह ये रही कि अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि ईरान के साथ एक समझौता हो सकता है जिससे रणनीतिक महत्व वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज समुद्री मार्ग को फिर से खोला जा सकता है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, बुधवार का दिन 5 अगस्त आज की तारीख और आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ आपका साथ देने के लिए जहाँ कहीं से भी साथ जुड़े हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बुधवार के दिन हम स्वास्थ्यवर्धक बातें करते हैं, स्वास्थ्य को लगकर कुछ ऐसी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और जी हाँ, जैसे कहते हैं ना कि शरीर का स्वास्थ्य जितना आवश्यक होता है, मानसिक स्वास्थ्य जितना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से हमारे दांतों की देखभाल करना, हमारा ओरल हेल्थ भी उतना ही ज़रूरी होता है। और ओरल हेल्थ अगर हम ध्यान ना दें तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इस पर आज की चर्चा का कार्यक्रम हम आधारित रखेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर पूजा ताजू मेवा जी, आज के इस कार्यक्रम को हमारे साथ वे आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल हम उनसे बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: और आज के इस कार्यक्रम में आप यहाँ पर आए और आज हम ओरल हेल्थ पर बात करने वाले हैं, ओरल हाइजीन पर बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर जी, ओरल हाइजीन ओवरऑल क्या है?
2: ओरल हाइजीन का मतलब सिर्फ दांत नहीं है, हम लोगों का पूरा जो मतलब जो हमारे दांत है, मसूरें, हमारा जुबान है, वो सब ओरल हाइजीन के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग, कुछ लोग होते हैं जो बस दांत पे ध्यान देते हैं, नहीं, हम लोगों को लाइक 2 बार ब्रश करना, ऊपर से फ्लॉसिंग वगैरह करना और ज़ुबान को भी ठीक से साफ़ करना, वो सब ओरल हाइजीन का पार्ट होता है। तो ये सब करना ज़रूरी है, तभी हम बोलेंगे कि हम लोग ओरल हाइजीन को मेंटेन करें।
1: यानी केवल सिर्फ ब्रश करना ये ज़रूरी नहीं है,
2: ये काफ़ी नहीं है।
1: और जैसे डॉक्टर जी कहा गया, एक स्लोगन है कि दांत खराब तो पेट खराब, और मुंह की सफाई अपने हमारे जो पूरा शरीर है उसके स्वास्थ्य से कनेक्टेड होती है, तो इस पर आप थोड़ा सा खुलासा करें।
2: जो हमारा मुंह है ना, ये होते हैं दरवाज़ा है पूरा शरीर का ना। हम लोग सब कुछ यहाँ मुंह से ही डालते हैं तभी पूरा शरीर में जाएगा। अब इतना है कि अगर हम लोग कुछ भी खाते हैं, अगर हमें मान लो दांतों में इन्फेक्शन हो गया, दांतों में जितने भी सड़न वगैरह हो जाता है, इन्फेक्शन हो गए, अब वो जो इन्फेक्शन जो है पूरे शरीर के अंदर जाता है तो फैलेगा। और यही दिक्कत होती है कि अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ वगैरह, वो सब जो है ना उसको और भी इंक्रीज़ कर लेता है।
1: डेफिनेटली
2: किसी को मतलब डायबिटीज़ उसे तो और भी मतलब होते हैं कि हो सकता है उनको। और ये भी है ना कि अगर दांत नहीं है मुंह में तो कोई खाना कैसे खाएगा?
1: सही बात।
2: अब ये है कि ठीक से हम चबा नहीं पाएंगे, डाइजेशन की दिक्कत होती है, गैस के वगैरह इशू होते हैं, तो इसलिए दांत जर्म बोलते हैं कि दांत ज़रूरी है।
1: दांत मतलब दांतों की सुरक्षा मुंह की जो सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे हो कि वो गेटवे है, और अगर यहाँ कुछ खराबी है तो जो अंदर होगा वो और भी खराब हो जाएगा। और अगर हम अपने दांतों की सफाई पर ध्यान ना दें तो कैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं डॉक्टर जी?
2: फर्स्ट थिंग मैं यही बोलूँगी, दांतों में सड़न, जो कैविटीज़ बोलते हैं ना, वो ये तो फर्स्ट थिंग है
1: जी।
2: जो हम सब इसीलिए तो आते हैं कि चलो मेरे दांत में ब्लैक सा दिखने लगा है, तो कैविटीज़ एक तो ये, मुंह से बदबू आना, अगर मुंह से बदबू आने लगे तो हम लोग इतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे बात करने के लिए। और ब्रश करेंगे मसूरों से खून आना लगेगा, लाइक ब्लीडिंग गम्स जो बोलते हैं वो होगा। और बाद में ये है कि दांत जो हिलने लगते हैं, एक बार हिलने लगे तो बाद में ये होगा कि दांत निकालना पड़ेगा और हम लोग अपने दांतों को लूज करने लगता है।
1: बिल्कुल मतलब तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपने एक दांत को नहीं कहीं पर मतलब किसी कारण उखाड़ना पड़ा तो आगे चलकर आपके और भी दांतों को वो प्रॉब्लम दे सकता है।
2: ये है ना कि दांत को क्यों उखाड़ना पड़ा, ये है कि कभी कभी जो कैलकुलस हम लोग बोलते हैं, टाटा वगैरह, वो जम जाता है वहाँ पे, तो वो जो मसूरें होते हैं ना वो नीचे होने लगते हैं, दांत को छोड़ने लगते हैं, तो दांत इसकी वजह से हिलने लगते हैं,
1: ढीले हो जाते हैं।
2: अब ढीले हो गए तो हम लोग

0: कोशिश करेंगे कि चलो साफ़ कर लेते हैं, स्केलिंग करा देते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या पता वो मसूर जो है ना वो गम जो है फिर से अपना जगह ले लेगा, पर नहीं होता। तब ये हम निकाल देते हैं और बाकी के दांत पे भी कैलकुलस जमे होते हैं तो बस निकालना पड़ता है फिर।
1: तो यानी एक तरह से देखा जाए तो उसको अर्ली ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये टार्टर को का जमना ही कहीं ना कहीं आपके दांतों को पूरी तरह से ख़राब कर देता है, तो उसको जैसे शुरू से ही आपको रेगुलरली उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
0: इसे हमेशा बोलते हैं चेकअप कराना, डेंटिस्ट के पास जाना, ये सब अगर डेंटिस्ट चेक करेंगे बताएंगे आपको तो वो
1: समस्या नहीं होगी और लॉन्ग रन तक आपके दांत जैसे हैं वैसे सुरक्षित रहेंगे। तो जैसे डॉक्टर जी अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, बच्चों की जब हम बात करते हैं, बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं, तो उनके लिए ओरल हाइजीन बहुत अधिक मात्रा में ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चे होते हैं तब की बात अगर करें, या डायबिटिक है स्पेशली तब की बात अगर हम करें, तो ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है।
0: बच्चों से शुरू करती हूँ, बच्चों में नए नए मिल्क टीफ आती है,
1: बिल्कुल।
0: अब उनका है जो एनामेल होता है ना, जो शुरू का जो व्हाइट पार्ट दिखता है वो हम मतलब शुरू में हम लोगों की तरह थिक नहीं होता, थोड़ा सा थिन होता है। और बच्चों का क्या है, मीठा ज़्यादा खाएंगे और अभी अभी दांत आए और अभी से केरीज वगैरह हो गए तभी दिक्कत होती है, दर्द होता है उनको। तो बच्चों में यही ध्यान देना पड़ता है कि वे जो टूथपेस्ट उनके लिए होता है वो यूज़ करें, जो फ्लोराइड वाला होता है वो यूज़ करेंगे, अपना ब्रश जो बच्चों का आता है वो यूज़ करें, तो अपना दांतों का ध्यान रख सकता है। अब जो बुज़ुर्गों का होता है उनको ऑलरेडी कुछ कुछ बीमारियां हो जाती हैं, मान लो अगर बीमारी में बीमारी भी नहीं ना हो, कुछ कुछ दवाइयाँ जो वे लोग खाते हैं जो उनका जो सलाइवेशन होता है ना वो अलग हो जाता है, तो अब मुँह की सलाइवेशन चेंज हो गया हो तो अब यही है कि कुछ भी मुँह जो है ड्राई माउथ जैसे होता है तो कुछ खाते हैं ना तो वो अटकता रहता है मुँह में, जब अटकता रहता है तो वो जमा हो जाता है तो केरीज उनको जल्दी होती है। अब ये है कि वो जो सलाइवा वो एक फ्लश जैसा है, लुब्रिकेंट है मुँह के अंदर। अब जो भी कैलकुलस ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा हो गया तो उनका वैसे जैसे मसूरें नीचे हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं कि चलो उनके लिए। और डायबिटिक पेशेंट्स जो है ना उनको इन्फेक्शन जल्दी पड़ जाती है, कुछ भी चाहे मुंह का हो कि उनको जल्दी पड़ जाती है,
1: तो इसीलिए टेंडेंसी उनको प्रोन होता है इन्फेक्शन के लिए। हाँ,
0: तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो आएँ डेंटिस्ट के यहाँ जाएँ, चेकअप करें, और अगर मान लो जो स्केलिंग बोलते हैं ना वो उनके लिए अच्छा है, ज़रूरी है कि करें, हम लोग चेक करें ताकि आगे से ऐसा इन्फेक्शन ना हो, को आगे जाके उनको और भी दिक्कत करे।
1: तो डॉक्टर जी लगभग कितने समय में यानी कितने अंतराल में उनको एक डेंटल चेकअप होना बहुत ज़रूरी
0: है? हम लोग बोलते हैं कि हर साल में एक बार, हो सके तो हर 6 महीने, नहीं तो साल में एक बार ज़रूर मतलब चेकअप,
1: रेगुलर चेकअप
0: जी। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट, वो लोग आते ही हैं क्लिनिक पे, तो वो लोग आए हम चेकअप कर लेंगे, उनको जो ट्रीटमेंट देना है दे भी देंगे, उनको बताएंगे भी क्या है,
1: क्योंकि ये एक तरह से कई बार ऐसा होता है कि दांतों का जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा कैविटीज बढ़ जाती है, तब जाकर हमें पता चलता है।
0: सबको यही है कि अब मेरे मुँह से बदबू आ रहा है, तब मैं डेंटिस्ट के यहाँ जाऊँगा, ऐसा कि अब पेन हो रहा है तब आते हैं, इससे पहले कि कोई नहीं आता, बोलता है एक चेकअप करा दीजिए प्लीज, कोई नहीं आता।
1: बहुत रेयर लोग होते हैं। तो डॉक्टर जी जब एक टाइम था जब हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, तो बेसिकली ब्रश कितनी बार करना चाहिए और ब्रश करने का तरीका, सही तरीका।
0: सच बोलूँ, आप स्कूल की बात कर रहे हैं ना, हम अभी भी जा रहे हैं स्कूल में, हम लोग जाते हैं स्कूल में, सब बच्चों को से बात करते हैं और उनको सिखाते भी हैं कैसे ब्रश करना। फर्स्ट ही मैं ये बोलूँगी बच्चों को अपना ब्रश यूज़ करना, जो सॉफ्ट ब्रशेस वाला ब्रश वो यूज़ करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ब्रश को आप लीजिए, 45 डिग्रीज को अपने मसूरों के पास रखिए, सर्कुलर मोशन, सिंपल सर्कुलर मोशन कीजिए, हर दांतों पे सर्कुलर मोशन, गोल गोल जैसे बोलते हैं ना, वो करने का सब दांतों पे, सामने पीछे टंग के पास, और जो च्यूइंग वाला पोर्शन है ना जिसपे मास्टिक, उसके सब पोर्शन पे सर्कुलर मोशन आराम से, और ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं। कुछ लोगों को ये है ना, प्रेशर जितना मैं लगाऊँ इतना
1: मतलब मेरे दांत चमकेंगे,
0: वही डेफिनेटली नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं चमकेगा,
1: बिल्कुल।
0: ये करने का दो बार सुबह। अब कुछ लोग हैं जो है सुबह खाना खाने से पहले, नाश्ता से पहले, नाश्ता के बाद ब्रश करते हैं, जो भी उनको अच्छा लगे, और फिर रात को सोने से पहले।
1: दो बार होता है
0: मेन, ये रात को सोने से पहले डेफिनेटली, खाना खाने के बाद नहीं, सोने से पहले
1: आप ब्रश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फूड पार्ट

0: पार्टिकल्स है अगर रह जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जैसे जमा हो जाता है तो सड़ने लगते हैं दांत। तो बिल्कुल जैसे दांतों का ब्रश करना हम स्कूल से सीखते आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग आज तक उस आदत को पाले हुए हैं। और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि दांतों को जो साफ करने का तरीका है, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना है, दांतों को गोल गोल सर्क्यूलर मोशन में उनको क्लीन करना बहुत ही आवश्यक है। और इतना ही नहीं, हर दांत के लिए थोड़ा सा आप टाइम निकालें और क्लीन करें। लगभग 2 से 3 मिनट लगती हैं आपको ठीक से ब्रश करने के लिए। और कई बार ऐसा भी, हमने बहुत ऐसे प्रोग्राम्स भी किए हैं जहाँ पर डॉक्टर ने हमें ये भी कहा है कि बहुत सारे लोग हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और दांतों को इस कदर घिसते हैं जैसे कि साली धो रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है आपको, बिल्कुल आपके दांतों का जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो एक सॉफ्ट ब्रश के माध्यम से होना चाहिए। और आज हम ओरल हाइजीन पर बात कर रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम। आज हमारे साथ डेंटल सर्जन डॉक्टर पूजा ताजू जी जुड़ी हुई हैं जो इस पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं। और जी हाँ, जब हम ब्रश की बात करते हैं डॉक्टर जी, जब हम आजकल तो मार्केट में आप देखिए ब्रश, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, फ्लॉस करने के इतने सारे उपकरण आ चुके हैं, तो इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो दांतों को क्लीन करना या माउथ को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन सारे प्रोडक्ट्स में से मेन क्या होना चाहिए?
1: सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अलग अलग। ब्रश, फर्स्ट थिंग मैं ब्रश ही बोलूँगी, ब्रश करना ज़रूरी है, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते।
0: सही,
1: दो बार जैसे हमने बताया, ऐसे आप बोल रहे थे दो से तीन मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग 10 मिनट तक भी ब्रश करते
0: हैं, बिल्कुल
1: बिल्कुल भी नहीं।
0: कई बार आपने देखा होगा कि कितने लोगों के तो ब्रश पूरे फट गए होते हैं,
1: वो पूरे खुल गए। ऐसा लगता है कि ऐसा बोले बहुत साली कर रहे थे, वैसे ही हो रहा था। तो इसलिए नहीं, एक ऊपर से बच्चों के लिए उनका, जैसे मैंने बताया, उनका टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट जो हमेशा फ्लोराइड वाला होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: अब बच्चे जो है एज के हिसाब से, ऐसा नहीं कि वो जब बेबी था उसका तब, मतलब जब तक वो सब उसके परमानेंट टीथ नहीं आ जाते ना, हमेशा बोलते हैं कि तब तक उनको एडल्ट वाला टूथपेस्ट ना दें। तब से कुछ भी यूज़ करें चलेगा, लेकिन बच्चों का अलग से। और जब ब्रश कर लेते हैं ना, कुछ लोग अपना जो टंग जो है ना सुबह, वो साफ नहीं करते। वो ज़रूरी है, टंग क्लीनर, मतलब जो हमारा जो टंग स्क्रेपर आता है ना, वो यूज़ करना। उसमें ये उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें वो जो सिलिकॉन के आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं,
0: स्टील के आते हैं, बहुत सारे प्रकार।
1: स्टील का ये होता है कभी कभार
0: छिल जाती है,
1: वही कट जाता है, तो अब खून आता है तो उसकी वजह से स्मेल आ सकती है मुंह में से।
0: ओके,
1: तो वो अलग चीज है। अब हम आएंगे उस पे, फ्लॉसिंग पे। फ्लॉस जो है ना, फ्लॉस जरूरी है, क्योंकि दांतों के बीच में जितना भी हम लोग ब्रश करेंगे वो ठीक से साफ नहीं होता। अब फ्लॉस जो है उसके बीच में हम लगाएंगे दांतों के बीच में, तो जितना भी खाना कुछ हो वो निकल जाता है, तो ये बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: चलो दो बार नहीं कर सकते, वंस अ डे, शाम को सबको टाइम मिलता है, सुबह तो टाइम नहीं है किसी के पास,
0: बिल्कुल।
1: तो तब हम लोग कर सकते हैं। और जो हम लोग बोलते हैं माउथवॉश,
0: जी
1: माउथवॉश जो है, अगर आपको डेंटिस्ट बोल रहा हो तब यूज करने का।
0: ओके, ओके।
1: इतना है ना कि कुछ कुछ आते हैं जो बस फ्लेवर्ड मिंट वगैरह है, वो चलो कोई यूज कर सकता है, बस अगर उनको रहता है कि बैड ब्रेफ आ रहा है, लेकिन ये उसका लाइक रीजन
0: नहीं है।
1: तो इसीलिए जो माउथवॉश होती है उसमें एक कंपोनेंट जो क्लोरहेक्सिडिन जो हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसी का कारण होता है कभी किसी को ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं माउथवॉश यूज करने के लिए। लेकिन जैसे अगर डेंटिस्ट बोले तब, नहीं तो थोड़ा सा लुकवार्म पानी में नमक डाल के आप उससे रिंस कर सकते हैं।
0: इजीएस्ट, मोस्ट सबसे इजी, सभी के घर में नमक होता है, सभी के घर में पानी होता है, तो ये एक तरह से वो कंप्लीटली आपके जो माउथ के जो बैक्टीरिया है उसे भी क्लीन कर देता है। तो डॉक्टर जी, हमारे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को बहुत ही दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अगर डिटेल में बता सके कि फ्लॉसिंग जो है, फ्लॉसिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाता है, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं शायद ना भी जानते हों कि फ्लॉसिंग एग्जैक्टली क्या है, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमें बता सके।
1: फ्लॉसिंग, चलो अगर फ्लॉसिंग जो नॉर्मली एक फ्रेज जैसा ना, जिफिल जैसे बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि चलो टू फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा जो लेंथ आपको चाहिए वो आप पहले एक डिब्बा में आता है, उसको जितना चाहिए आपको उसको तोड़ लें, टू फिंगर्स के बीच में ऐसे रोल करके, फिर आप दांतों के बीच में उसे फंसा कर आगे पीछे करें, फिर नीचे फिर लें। लेकिन हम लोगों के पास ना फ्लॉस पिक आती है
0: ओके
1: जो फैम

0: हम सीज में मिलता है, फ्लॉस पिक मच इजी है, मतलब आसानी से हम लोग यूज करते हैं उसको.
1: बिल्कुल.
0: वो वैसे ही एक फ्लॉस होल्डर होता है वो. आप उसको बस पकड़िए और दांतों के बीच में डालिए और आसानी से,
1: और वो वन यूज होता है.
0: अगर मुझे अगर बुजुर्गों को बोलना है तो मुझे ये सबसे आसान लगता है. एक तो उनके जब मैं बोलूंगी कि चलो इतना फ्रेड लेना है, इतना करना है, नहीं, फ्लॉस पिक आराम से, लेकिन बस फ्लॉस वाला पार्ट यूज करना है.
1: जी जी.
0: उनका ये कि दूसरा वाला पार्ट थोड़ा सा
1: पॉइंटेड होता
0: है, तो वो लेके अगर डालेंगे तो इन्फेक्शन करने
1: वो हो सकता है कि वो आपके मसूड़ों में घाव
0: घाव
1: कर दे.
0: बिल्कुल बिल्कुल. इसी हम अब फ्लॉसिंग की बात कर रहे हैं, इसी हम बोलते हैं कि माउथ पिक जो टूथ पिक होता है ना, वो यूज नहीं करने का. कुछ लोग होते हैं कि सीधा खाना खा लिया, टूथ पिक लेते हैं,
1: फिर दांतों को क्लीन करते हैं.
0: जो गम्स होते हैं ना, उसमें हम लोग उसको चोट पहुंचा देते हैं. नहीं, जैसे मेरे पापा करते हैं, मैं आपको वो जो जैसे कि कोई भी दवाई खाता है ना, वो जो मेटल वाला पार्ट नहीं होता, उसको वैसे टर्न कर
1: करके फिर उससे दांत क्लीन करते हैं. तो अगेन वो भी डेंजरस है, क्योंकि जैसे खासकर जब हम डायबिटिक लोगों के लिए बात करें तो ये कहीं ना कहीं उनके मसूड़ों को घाव पहुंचा सकता है, और जैसे डायबिटिक लोगों को इन्फेक्शन प्रोन ज्यादा होते हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो आपके मुंह के छालों को बढ़ा सकती है, मुंह में घाव कर सकती है. और जहां हम छालों की बात करते हैं, तो आए दिन बहुत सारे लोगों को छाले हो जाने की संभावनाएं भी होती है. अभी थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कि छालों का होना क्या कारण संकेत करता है, क्या सूचना देता है, और अगर हम इन छालों को छोड़ दें तो क्या ये तब्दील होकर और बड़ा घाव बन सकता है, मुश्किल में डाल सकता है. आज हम ओरल हाइजीन पर बात कर रहे हैं. आते हैं एक गीत के ब्रेक के बाद, कार्यक्रम को जारी रखेंगे रेडियो मॉरिशस पर आज की चर्चा कार्यक्रम ओरल हाइजीन पर.
2: मोरिस देश के हम छोड़ के ला फ्रांस गईली, वही पे रह गईली, कहूं न फिर गईली, वही पे रह गईली, कहूं न फिर गईली.

0: आज की चर्चा कार्यक्रम, आज हम ओरल हाइजीन पर बात कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस वक्त रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पा रहे हैं, साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं। वैसे आपको ये भी याद दिला दें, इस कार्यक्रम में अगर कुछ भी छूट गया हो, कुछ भी मिस हो गया है, तो दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच आप इस कार्यक्रम को पुनः सुन पाएंगे 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। और बिल्कुल इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें इस वक्त सहयोग मिल रहा है। टेक्निक पर हमारे साथ है फैजान जी, साथ है प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा और हमारे प्रोड्यूसर जिनेश जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर पूजा ताजू जो एक डेंटल सर्जन है। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि कई बार ब्रश करने से, कई बार हमारी ज़ुबान को साफ करने से कई बार ऐसा होता है कि कुछ खून निकल आता है और थोड़े ही दिनों के बाद उस पर एक छोटा सा छाला जम जाता है, तो छाला होना ये क्यों होता है, आइए जानते हैं डॉक्टर जी से। और अगर छाला बढ़ने लगे या आए दिन, बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्या है कि छाले ठीक नहीं होते, आए दिन छाले उनके मुंह में पड़ते रहते हैं, तो क्या ये कोई संकेत या सूचना देता है कि हमारी ओरल हेल्थ मुश्किल में है, आइए जानते हैं डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर किसी को आए दिन छाले पड़ते रहते हैं मुँह में, तो ये क्या संकेत देता है?
1: एक तो ये हो सकता है कि शायद ब्रश जब कर रहा हो ना, तो बार बार अपने आप को हर्ट कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है, वही आइदर ये, या फिर ये हो सकता है कि उसमें कुछ दांत जो है ना शार्प हो गए हो, मान लो थोड़ा सा टूट गया हो या फिर थोड़ा सा केरीज हो गया, वो शार्प हो गया, बार बार जब वहाँ पर टकरा रहा है तो उसमें से छाले हो रहे हैं, ये हो सकता है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि जैसे बोलते हैं कि जो छाले होते हैं ना बॉडी के, जब अंदर कुछ हो रहा हो तो वो मुंह में दिखेगा, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आयदा वो जो मतलब जो भी है, ज़्यादा तीखा खा रहे हो, कुछ ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से,
0: पेट खराब है
1: इसकी वजह से हो रहा है। नहीं तो ये भी है कि विटामिन के डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, तो कुछ कुछ विटामिन के डेफिशिएंसी होते हैं तो मुंह में छाले होने लगते हैं।
0: मतलब बहुत सारे कारण हैं,
1: बहुत सारे कारण
0: हैं, उसके लिए हमें डायग्नोस प्रॉपरली करना चाहिए, तब जाकर पता चलता है। तो क्या डॉक्टर जी, कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो आए दिन जो छाले होते हैं, कई सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े छाले मुँह में पड़ जाते हैं, तो क्या ये आगे चलकर कोई कैंसरियस फॉर्म ले सकता है या कोई ऐसी खतरनाक बीमारी का रूप धारण कर सकता है?
1: इतना मैं बोलूँगी कि अगर कुछ ऐसा होना तो पहले चेकअप कराने आ जाइए हमारे पास या फिर डॉक्टर।

0: के पास, ताकि हम लोग देखें कि क्यों हो रहा है. एक तो है कि हिस्ट्री लेंगे हम कि क्यों हुआ, कब से हो रहा है, और क्या ये मतलब लगातार होता रहता है. ऐसे जब हम लोग पूछेंगे तब अगर होगा तो हम लोग स्पेशलिस्ट के यहाँ भेजते हैं कि वो लोग देखेंगे, कुछ बायोप्सी वगैरह कुछ कराना हो, कुछ आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना हो, तब हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है. नहीं तो मेनली ये होता है कि कुछ डेफिशिएंसीज होते हैं या फिर से कि अंदर कुछ हो रहा हो, तब मुंह में जो रिफ्लेक्ट होता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और डॉक्टर जी, जब हम दांतों की दुर्गंध की बात, मुंह में दुर्गंध आना, कई सारे ऐसे लोग हैं भले हालांकि दो बार तीन बार ब्रश करते हैं पर मुंह में उनको लगातार दुर्गंध आती रहती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है?
0: हमारे ना कि मुख्य कारण ये है कि प्लाक और टार्टार जो बोलते हैं, जो कैलकुलस बोलते हैं, वो हमारे मुँह में आ जाता है, प्लाक आ जाता है. लेकिन जो प्लाक जो है टाइम के साथ ये सख्त हो जाता है, सॉलिफाई हो जाता है, तो वो कैलकुलस बन जाता है, तो वो दांत में जमा हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन का एक मेन सोर्स होता है. अब इसी में उसी कैलकुलस में सब कुछ जमा होता है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो जितना भी कोई ब्रश करेगा ये जो टाटा कैलकुलस होता है ना वो नहीं निकलता, तो इसकी वजह से मुँह से दुर्गंध आती रहेगी. ये है, नहीं तो और एक रीज़न ये है कि मान लो हमारे दांत आ रहे हैं, टीफ जो है ना, मान लो हमारे विजडम टीफ आ रहे हैं, तो वो खून नहीं आ जाता, तो इसकी वजह से भी हम ब्रश भी करेंगे तो बार बार वो जो गम में वो जो खुल गया है ना उसमें से ब्लड आ रहा हो और वो ब्लड मुंह में रहता है, उससे भी दुर्गंध आती है.
1: और डॉक्टर जी, मान लीजिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो दवाइयाँ लेते हैं, बहुत हैवी डोज दवाइयाँ हैं, खासकर डायबिटीज़ की है, हाइपरटेंशन की है, क्या इन दवाओं के कारण भी उनके मुंह से दुर्गंध आना स्वाभाविक है?
0: जी, आ सकता है ज़रूर. ये है ना, एक तो जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ कुछ दवाइयों से ना उनकी जो गम जो है ना फूल जाता है, थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है. अब स्वेलिंग आ गई तो उस वजह से, जैसे स्वेलिंग आती है, जैसे टच भी करेंगे ना तो खून आता है,
1: मतलब वो बहुत सेंसिटिव
0: हो जाता है. एक तो ये कारण, नहीं तो जैसे मैंने बताया था मुंह का जो सलाइवेशन होता है ना, सलाइवा का, वो कम हो जाता है, नहीं तो वो थिक हो जाता है, तो इसकी वजह से
1: ड्राइनेस
0: खाने वगैरह रहते हैं मुंह में, तो इसकी वजह से भी उनको दुर्गंध आ सकती है. तो यही मेन है कि कुछ भी हो, अगर खासकर से वो जो गम जो है अगर फूलने लगता है, तो हम बोलते हैं कि एक बार अपने जो भी जो इनका डॉक्टर है उनको हम लोग बोलते जाके दिखाइए आप, अगर चेंज करना है दवाई कुछ हो तो वो लोग चेंज करते हैं.
1: बिल्कुल. और डॉक्टर जी, जब हम आए दिन आपने देखा होगा आजकल तो जैसे हमारा लाइफस्टाइल जिस तरह का है, कोल्ड ड्रिंक्स लेना आए दिन, हम तो दिन में मतलब कई बार कुछ लोगों का तो मतलब पानी पीना कम होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का जो सेवन है वो ज़्यादा होता है, अल्कोहल का जो सेवन है, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, कुछ ऐसे भी हैं जो धूम्रपान करते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ों के कारण भी दांतों में मतलब दांतों को खराब होना
0: दुर्गंध आना,
1: वो सब.
0: अब मानो शुगर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है ना, एक तो शुगर इतना ज़्यादा है उसमें, तो दांत में कैविटीज़ होना बहुत
1: स्वाभाविक
0: है. तो एक तो ये है, उससे हम लोगों को दुर्गंध भी आ सकती है.
1: जी.
0: अब जो हमारा एनामेल होता है ना, जो वाइट वाला पोर्शन है, जितने भी हम लोग शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, जितना भी मतलब सोडा होता है ना उसमें, तो उससे वो कमज़ोर हो जाता है, तो जल्दी हम लोगों के केरीज हो जाते हैं. ये मतलब अब वो जो चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं,
1: बिल्कुल मैं यही पूछने वाली थी कि बहुत सारे चलो कोल्ड ड्रिंक्स ये तो है, पर चाय कॉफ़ी भी बहुत हद से ज़्यादा अगर ले ली जाए तो क्या ये
0: स्टेन्स हो जाते हैं? मेन ये है, स्टेन्स हम लोग को सामने चलो दिख नहीं रहा, लेकिन पीछे दांत के पीछे से ना वहाँ पे बहुत सारा
1: पीलापन
0: नहीं, कालाई हो जाता है वो, तो
1: ओहो मतलब पूरी तरह से वो खराब कर देता है,
0: खराब कर देते हैं, और वो एक लेयर जम जाता है वहाँ पे, तो वो जब वैसे हो जाता है तो ये है ना कि अब उससे भी दुर्गंध भी आएगी, और वो जो स्टेन जो है उनको मतलब वो जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला वो भी फील होगा. अब तंबाकू पे आएंगे, तंबाकू पे यही है, उसमें इतने सारे चीज़ें हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन सब जो है सब धूम्रपान वगैरह करते ही हैं.
1: सही बात.
0: तो उससे भी जो फर्स्ट यही है कि उनका जो है ना, उनका जो सलाइवेशन सेम उनका अलग हो जाता है, ठीक होता है सेम उनका, वो इसी इसकी वजह से ही उनको ज़्यादा मतलब मुंह से दुर्गंध आती है, और उनको कैविटीज़ भी जल्दी हो जाता है.
1: और मैं समझती हूँ जो तंबाकू का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनको आगे चलकर ओरल कैंसर होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं.
0: वही हम लोग बोलते हैं, कैसे वो पैकेट पे भी लिखा है ना,
1: बिल्कुल
0: फिर भी वो लोग करते हैं. और उनका ये भी मॉरिशस में चलो इतना नहीं है, वो लोग जो पान मसाला वाला खाते हैं यहाँ पे इतना नहीं है.

0: तो वो लाइक वो ज़्यादा
1: डेंजरस
0: था, लेकिन फिर भी स्मोकिंग जो है वो तो मुंह में चेंजर्स करता ही आता है. और वो लोग इतना है कि जहाँ पे वो लोग वो सिगरेट लगाते हैं ना, वहाँ पे आपको वो जो मसूर है ना उनमें हम लोग चेंजेस दिखने लगता है. जैसे मतलब वहाँ पे पूरा काला हो जाता है, ग्रे हो जाता है, उनको पता नहीं चलता. जब वो लोग आते हैं ना, बोलते हैं कि चलो वहाँ पे घाव हो गया है, कुछ हो गया, तब हम लोग बोलते हैं कि चलो और जांच करानी
1: पड़ेगी. तब जाकर पता चलता है, तब जाकर पता चलता है कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खराब हो चुका है. डॉक्टर जी, यहाँ पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम छालों की बात कर रहे थे, तो मेरे मन में एक सवाल आया है कि जब हमें छाले पड़ जाते हैं या आए दिन जिनको छाले पड़ते हैं, कई बार घरेलू नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं. कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप ये ले लो, बाइकार्बोनेट ले लो, उससे आप गागल कर लो, या फिर कोई ऐसे फिजी ड्रिंक्स ले लो, उससे आप गागल कर लो. तो डॉक्टर जी, इस पर मैं ज़रूर आपको पूछना चाहूँगी, क्या ये हेल्दी प्रैक्टिस है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि नमक वाले पानी से गागल कर लो, क्या मतलब कौन सा हमें करना चाहिए अगर घरेलू नुस्खे अगर हम इस्तेमाल करते हैं?
0: घरेलू बोलूँगी, मैं इतना ही बोलूँगी, नमक पानी, थोड़ा सा लुकवार्म पानी में नमक डालो, आप रिंस कर सकते हैं. लेकिन ये जलेगा, डेफिनेटली जलेगा. लेकिन जो आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बोल रहे हैं वो मुझे पता नहीं है, और मैं इतना
1: एडवाइस
0: दे सकती हूँ कि नहीं, मत कीजिए आप,
1: क्योंकि वो ऑलरेडी एसिडिक होता है. आई बिलीव
0: एसिडिक होता है, मेरे ख्याल से उनको और भी दर्द होगा. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग सम रिलीफ, मेरे ख्याल से उनको और भी पेन होगा इसके वजह से.
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये हो सकता है कि वर्सन कर दे, ये आपके घाव को या छालों को और भी ज्यादा उनको खराब कर दे. या बिल्कुल, और ये पेनफुल होता है, तो मैं समझती हूँ कि वो थोड़ा छोटा भी होता है तब भी
0: पेनफुल होता है. और वो कुछ मतलब जो वहाँ पे एसिडिक टाइप लगा रहे हैं तो और भी पेन होगा उनको.
1: बिल्कुल,
0: इसलिए मैं ये बोलूंगी लुकवार्म पानी में थोड़ा सा नमक डालिए, आप वो काफ़ी होगा.
1: बिल्कुल. और आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पूजा ताजू जी, जो कि एक डेंटल सर्जन है. और बिल्कुल जैसे आजकल हमने देखा है, बहुत सारे घरेलू नुस्खों में ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि कहीं छाला पड़ गया तो कहते हैं कि एगो बिकोबनाद लेके तनी गागारीजे कर द, या एगो कोनो फिजी ड्रिंक लेके गागारीजे कर द. लेकिन कहते हैं कि ये हेल्दी नहीं है, बेटर है आप थोड़ा सा नमक वाला पानी, गुनगुना पानी लेकर अगर आप अपने मुंह को क्लीन कर देते हैं तो ये ज़्यादा आपको रिलीफ देता है, इंस्टेड ऑफ वो चीज़ को ख़राब करने के बजाय. तो जी हाँ, आज हमारे इस प्रोग्राम में आप भी हमारा साथ दे सकते हैं. अगर आपके मन में कोई सवाल है, 4028085 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं. और इसी के साथ चलिए गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में.

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हैं। डॉक्टर पूजा आज हमारे साथ हैं, जो कि खुद एक डेंटल सर्जन है। और ओरल कैंसर के लक्षण क्या है, ओरल कैंसर होता कैसे है, इस पर थोड़ा सा जानकारी हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये भी ओरल हाइजीन का ही एक हिस्सा है। तो डॉक्टर पूजा हमें ज़रूर बताइए कि ओरल कैंसर्स जो होते हैं उनके लक्षण शुरुआती तौर पर कैसे आपको पता चले।
2: ये हो सकता है कि किसी को मुँह में ना कुछ घाव हो गया हो, जो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया कि वो ठीक ही नहीं हो रहा, ये मतलब शायद हो सकता है,
1: मतलब एक संकेत दे सकता है।
2: संकेत दे सकता है, क्योंकि कुछ भी घाव ठीक नहीं हो रहा तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है ये, या फिर कुछ दाग सफ़ेद या फिर लाल, कुछ दाग जो आपको मतलब यहाँ ही है, जा ही नहीं रहा, आप ब्रश भी करते हैं, मतलब जो हमारे जो चीक के उस पर वहाँ पर हो गया हो, या फिर ये भी हो सके गांठ फील हो रहा हो, कोई भी गांठ फिर आ रहा हो, मतलब कहीं भी कहीं पे भी,
1: मसूड़ों में या कहीं पर भी,
2: या फिर शायद गले के पास गांठ फिर रहा हो और ये मतलब अचानक से आ गया, ये भी कुछ हो सकता है। या फिर जैसे बोलते हैं ना कि आवाज में बदलाव आ गया, हम लोग बात कर रहे हैं अचानक से,
1: और मतलब वो पर्सिस्टिंग है, बहुत दिनों से है,
2: और वो बदलाव आ गया, वो समझ में भी नहीं आया कि ऐसे कैसे हो रहा है ये, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि किसी को मुंह खोलने में दिक्कत हो रही हो,
1: मतलब दर्द महसूस हो रहा,
2: दर्द हो रहा है, या फिर अचानक से कुछ तो अजीब है कि मुझे दिक्कत हो रही है मुंह, जैसे पहले मैं काफी मुंह जो है काफी
1: वाइड खोल पाते थे, मतलब बड़ा मुंह खोल

0: पाते थे, पर अब वो नहीं खुल पा रहा है।
1: तो ये सब जो है ना, हमेशा बोलते हैं जांच कराना चाहिए,
0: मतलब ये सिम्टम्स है, हम ये नहीं कहते कि यही हो सकता है कि आपको कैंसर हुआ है, क्योंकि कई सारे लोग प्रोग्राम में सुनकर भी कई सारे लोग अपने दिमाग में मनगढ़ंत ऐसी बातें हो सकती है कि भाई ये दर्द हो रहा है, कहीं डॉक्टर ने बोला था कि ऐसा हो सकता है कि कैंसर हो, ऐसा नहीं है, पर इसकी जाँच करवाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हम जब ओरल कैंसर के बारे में जानते हैं, इसी के साथ हम ये भी जान लें कि जो हमारी गर्भवती महिलाएँ हैं, जो से जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, कई बार उनको भी डेंटल केयर के लिए कहा जाता है। डेंटल केयर क्यों आवश्यक होता है महिलाओं में जो गर्भवती
1: हैं? जो हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहा है ना
0: जी जी,
1: इतना कुछ उनको कुछ जो है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उनको सब कुछ नया नया सा लग रहा है।
0: बिल्कुल।
1: अब मुझे उनमें भी चेंजेस आती हैं कि कुछ ये हो सकता है कि उनके जो गम थोड़े से फूलने लगते हो हार्मोनल की वजह से, ब्लीडिंग हो रहा हो, तो ये सब ना जांच करानी चाहिए। इसी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब भी उनको पता चल गया ना कि प्रेग्नेंट, वे लोग प्रेग्नेंट हैं, उनको मतलब वो जो बुक वगैरह मिलता है ना वो लोग लेके आए, हम लोग चेक करते हैं, उनको बोलते भी हैं कि कुछ कराना वगैरह हो, लेकिन मेनली उनका ये हार्मोनल के साथ, हार्मोनल के
0: यानी एक तरह से वो ट्रीटमेंट में उनको ये बता दें कि उनके मसूड़े जो हैं, उनके दांत जो हैं वो स्वस्थ हैं, ताकि आगे चलकर उनको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल। तो कई सारे लोग जो है अपनी अपॉइंटमेंट स्किप कर देते हैं या नहीं जाना पसंद करते हैं या डर के मारे कि डेंटिस्ट के पास जाना, कई सारे लोगों के लिए जैसे बोलता ना कुस्मो नाइटमेयर्स, बहुत सारे लोग डरते हैं इन सारी चीज़ों से, लेकिन देखा जाए तो ये सारी अपनी सुविधाओं के लिए है और आपके ओरल हाइजीन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसी के साथ डॉक्टर जी, जैसे जब हम स्केलिंग के बात करते हैं तो स्केलिंग करवाते रहना, यानी उसका कितना ड्यूरेशन में हमें स्केलिंग करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपने बताया कि टाटर जमा हो जाता है और ये आगे चलकर मुसीबत खड़ी कर सकता है, तो स्केलिंग हमेशा कितने समय के अंतराल में हमें करवाना चाहिए?
1: मैं ये बोलूँगी साल में एक बार जब चेकअप कराने आते हैं ना, अगर हम लोग को लगता है कि चलो इतना सा वो जो प्लाक जमा हो गया, थोड़ा सा मतलब थिक होने लगा, क्लीन कराना ज़रूरी है। इसलिए स्केलिंग जो है, जैसे कि हम बोलते हैं ना चेकअप कराने आइएगा, हम लोग को लगता है स्केलिंग कराना है तो ज़रूर हम लोग, लेकिन अगर कोई अपने ठीक से फ्लॉस भी करता हो, ठीक से ब्रश भी करता, इसका मतलब नहीं है कि उनको स्केलिंग करना ज़रूरी नहीं है। तो स्केलिंग कराना ज़रूरी, खासकर से जब वो प्लाक और टाटा जमा हो गया हो, तो साल में एक बार मेरे ख्याल से काफ़ी है।
0: हाँ। और डॉक्टर जी, जब हम रूट प्लांट, आजकल आपने देखा है कि रूट कनाल करवाते हैं, रूट कनाल क्या होता है और रूट कनाल क्यों करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए?
1: रूट कनाल तभी हम लोग करते हैं कि जब आप जो इन्फेक्शन होता है ना दांत में, वो पल्प तक चला गया हो, मतलब वो जो दांत में जो डिफरेंट लेयर होता है ना, शुरू में जब एनामेल में ही है तब हम लोग फिलिंग, थोड़ा सा फिलिंग कर लेते हैं, अगर डेंटिक तक भी चला है तभी हम लोग फिलिंग करते हैं, लेकिन जब वो पल्प को छू लेता है तभी बहुत दर्द होता है।
0: बिल्कुल।
1: तब हम लोग रूट कनाल के लिए बोलते हैं, जब हम लोग स्पेशलिस्ट होते हैं ना हॉस्पिटल में, उनके यहाँ हम लोग भेजते हैं। यही है ना कि रूट कैनाल के साथ जो दांत है वो आपके मुंह में ही है, ऐसा नहीं कि दांत जो है वो पल्प टच हो गया निकालना पड़ा, नहीं। तो रूट कैनाल ये एक सुविधा है जो हम लोग हमेशा इंकरेज भी करते हैं कि आप रूट कैनाल कराइए, दांत में पेन हो रहा है, पेन होता है हाँ, लेकिन रूट कनाल कराइए आप, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत पेन हो रहा है बस दांत को निकालना चाहते हैं, नहीं। हम एडवाइस करते हैं कि चलो टच हो गया पर कोई ना, हम लोग रूट कनाल के लिए भेज देते हैं।
0: और क्या रूट कनाल की सुविधाएं यहाँ मॉरिशस में अवेलेबल है?
1: जी, जितने भी हॉस्पिटल है ना हमारे, हम सब में एक एक जो एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं इनको, वो लोग सब है और हम लोग उनको रिफर करते हैं।
0: ओके।
1: और ये सुविधा है और हम लोग एंकरेज करते हैं पेशेंट्स को रूट कनाल कराने के लिए।
0: डॉक्टर जी, कई सारे बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि डेंटिस्ट के पास जब हम जाते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट एक बार में फिनिश नहीं होती, मतलब उनको हर बार अपॉइंटमेंट दिया जाता है कि भाई आज आए हो आप, थोड़ा सा ये मतलब उसमें क्लीन करके फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि 2 हफ्तों के बाद आओ, और लगातार मतलब हर 2 हफ्तों के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो डॉक्टर जी, इसका क्या कारण है कि मतलब हर बार एक बार में ट्रीटमेंट फिनिश नहीं होती, उसे कंटिन्यू रखना पड़ता है?
1: मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई आता है जो वो दांत है ना काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया, मैं बोल रही हूँ कि उसका पल्प टच हो गया हो लेकिन काफ़ी बड़ा कैविटी है, अब उसमें दवाइयाँ लगाते हैं फिर उसके ऊपर

0: बोलते हैं पौसमा करते हैं तो सेम एक दवाई लगाते हैं फिर उसके ऊपर हम लोग एक और एक फिलिंग चढ़ाते हैं जो टेम्पररी होता है वो तो वो जो दवाई है ना उसको 21 days रखते हैं नॉर्मली
1: ओके
0: बुक के हिसाब से 21 days लेकिन हम लोग कुछ देखते हैं कि कैसा है तो अपने अंदाजे से फिर हम लोग 2 हफ्ते के बाद भी हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं तो ये एक कारण हो सकती है कि हम लोग क्यों ट्रीटमेंट उसी दिन नहीं देते लेकिन हाँ अगर मुझे

0: मैं जो भी फीलिंग करूँगी ना वो रहने वाला नहीं है. इसकी वजह से हम लोग सेम थोड़ा सा टेम्पररी फीलिंग डालते हैं कि वहाँ पे उस ब्लीडिंग पे उस मसूर पे काम करेगा, फिर हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं कि चलो आप इतने दिन में आएंगे, वो ठीक भी हो जाएगा और आपका फीलिंग कर देंगे. क्योंकि जब परमानेंट फीलिंग है ना, उसको ठीक से दांत में रहने के लिए जो भी अराउंड सब कुछ ठीक होना चाहिए. अगर उसमें सिस्टम की सलाइवा वगैरह है, खून चला जाएगा तो वो निकल जाएगा कुछ दिनों में. फिर ये भी सुनने में आएगा कि डेंटिस्ट ने ठीक से काम नहीं किया.
1: इसीलिए कहीं ना कहीं इसीलिए उसको प्रोलॉन्ग किया जाता है इतने दिनों तक, मतलब उसकी ट्रीटमेंट को जारी रखा जाता है ताकि धीरे धीरे करते हुए उसकी ट्रीटमेंट को कम्प्लीट कर.
0: अब ये भी है ना, मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हम लोग चारों तरफ काम नहीं करते. हम जिस तरह मैं राइट साइड काम कर रही हूँ तो मैं ये बोलूंगी कि चलो आप इस तरफ खाइएगा मत आज. अगर मैं लेफ्ट राइट दोनों काम कर लूँ तो कैसे खाएंगे.
1: सही बात है, सही
0: इसी वजह की शायद हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि मैंने इस तरह काम तो आपको दो हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट दे रही हूँ उस तरफ काम करने के लिए.
1: बिल्कुल,
0: ये एक रीज़न भी होता है.
1: बिल्कुल. और जैसे कई बार होता है कि पेन भी बर्दाश्त होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप दो तीन दांत एक ही दिन में ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये भी एक तरह से इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है.
0: दांत भी अगर निकालना पड़े तो अगर बोलते हैं कि तीन दांत निकाल दो तो ये पेन जो है वो बर्दाश्त
1: नहीं कर पाएंगे.
0: हम लोग देखते हैं अगर कैसा है, वो कर सकते हैं तो हम लोग करते हैं, लेकिन
1: रेकमेंड करते हैं कि मतलब उसकी जो ट्रीटमेंट है ग्रेजुअल धीरे धीरे होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. तो लगभग हम आज के इस कार्यक्रम के समाप्ति तक हम आ पहुँचे हैं. हमारे साथ डॉक्टर पूजा तेजू मेवा जो हैं आज हमारे साथ जुड़ी, जो कि एक डेंटल सर्जन है. डॉक्टर जी, जाते जाते हमारे श्रोताओं को ओरल हाइजीन पर अगर आप समाप्त करना चाहें आज के इस प्रोग्राम को, तो आप क्या कहना चाहेंगी.
0: मैं इतना बोलूँगी कि जो स्वस्थ दांत है ना, सिर्फ एक सुंदर मुस्कान बस नहीं देता. हम लोग के ये ना पूरा शरीर को, जितना भी पूरे बॉडी को, झोड़ा जो मुंह है, दांत है, वो सब भावित पड़ता है.
1: बिल्कुल.
0: तो इतना बोलूँगी कि यहाँ पे हमारे पास मॉरिशस में लगभग 55 डेंटिस्ट लाइक
1: सर्विसेज हैं,
0: सर्विसेज है, डेंटिस्ट है,
1: मतलब जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा.
0: जी, तो 55 काफ़ी ज़्यादा है.
1: हाँ हाँ.
0: मतलब आप उसका उपयोग कीजिए. आए हम लोग, और ये है कि हम लोग चेकअप करते हैं, और शुरू में अगर हम लोग को दिख गया कि चलो छोटा सा कैविटी है, हम लोगों ने फिलिंग कर दिया, तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती.
1: बिल्कुल.
0: अगर खैर स्केलिंग भी कराना हो, हमने देख लिया, करा दिया, तो ना ब्लीडिंग होगी. तो इसीलिए जल्दी अगर कुछ पकड़ लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी.
1: बिल्कुल, समय से पहले
0: पेन भी नहीं होगा. और मेन यह है कि किसी को दर्द भी नहीं लगेगा डेंटिस्ट से.
1: सही बात.
0: जब कोई आता है ना पेन में है, तब डर लगता है डेंटिस्ट से, बोलते हैं उसने मुझे दर्द कर मतलब
1: दर्द में थे और दर्द. बिल्कुल, जब आप उसको छुओगे तो भी वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. तो एक तरह से दर्द होने से पहले ही अगर आप रेगुलर चेकअप करवा दें तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि आपके दांतों की सड़न बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है कि सीरियस हो जाए, या जो भी है आपके आपकी जो ओरल हेल्थ है, जो ओरल हाइजीन है, उसको समय दर समय आप उसको चेक करवाते रहे, डेंटिस्ट के पास जाते रहे. और जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि हो सके तो 6 महीने में, या तो फिर 1 साल में पर्याप्त है, यानी आप जा सकते हो. और 55 यानी 55 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर दांतों की चेकअप की जाती है, डेंटिस्ट जो है हमारे जो उपलब्ध है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से. तो आज के इस कार्यक्रम में, जी हाँ, डेंटल सर्जन डॉक्टर पूजा तेजू जी से आज का हमारा ये कार्यक्रम रहा. और इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें सहयोग प्राप्त हुआ. तकनीक पर हमारे साथ जुड़े रहे फैजान, साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा बानो, और जिनेश हमारे प्रोड्यूसर जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग दे रहे हैं. तो आपने इस कार्यक्रम को सुना, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद. और खासकर धन्यवाद देना चाहेंगे पूजा जी को, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई. आपकी और आपकी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. और बेस्ट विशेस के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर हम समाप्त करेंगे. पुनः उपस्थित होंगे एक नए कार्यक्रम को लेकर. तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति. नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10 बज रहे हैं, समय हुआ है समाचार का।
2: आइए सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार। आपके साथ गीता जी, नमस्कार आपको।
3: नमस्कार मनीष मां, सभी को हमारा नमस्कार। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी, ये संदेश प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कल शाम दिया। वे ग्रांड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मॉरिशस में भाषाओं के संरक्षण में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार कठिन फैसले ले रही हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी मॉरिशस वासियों की भागीदारी और सहयोग के बिना ये लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं होगा। अफ्रीकी विकास बैंक की कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 जो 28 जुलाई को प्रकाशित हुई, मॉरिशस की सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जून की शुरुआत में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 23 बिलियन रुपए से ज़्यादा के बजट सपोर्ट लोन की मांग की है। ये वित्तीय सहायता 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दो किश्तों में जारी की जाएगी। बजट 2025-2026 में घोषित वीएटी के पंजीकरण की सीमा को 6 मिलियन रुपए से घटाकर 3 मिलियन रुपए किए जाने के बाद एमओरे ने 655 मिलियन रुपए की आय एकत्र किया है। ये आंकड़े पहली अक्टूबर 2025 से 29 जुलाई 2026 की अवधि को दर्शाते हैं। ये जानकारी प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कल राष्ट्रीय सभा में पीएमक्यूटी के दौरान दी। वे लेबर पार्टी के सांसद रविराज बिचुक के सवाल का जवाब दे रहे थे। और विदेशी खबरों में ब्राजील के साओ पाउलो में एक रासायनिक कारखाने में भीषण आग लगने के बाद कई धमाके हुए जिससे लोग अपना घर छोड़कर भाग गए। आग पर काबू पाने के लिए 30 दमकल गाड़ियां और 60 से ज़्यादा दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। 150 लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, कुछ ही देर में शोक समाचार। एसएसआर स्ट्रीट सैं फ्रांसवा कैप मालेरो में 77 साल की 77 ईयर ओल्ड की श्रीमती जसमती मंगर पैदाश नाम ब्रजमोहन और जो मंजू से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर एसएसआर स्ट्रीट सैं फ्रांसवा कैप मालेरो से उठाकर बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे 12:30 PM। टागो रोड एन एस फ्लोरों में 68 साल के 68 ईयर ओल्ड के श्री राजनाथ भीमल जो हरी से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे चंद्र प्रकाश भीमल के घर टागो रोड एन एस फ्लोरों से उठाकर बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
4: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: 819 kHz, ये है Radio Mauritius.

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: बुधवार 5 अगस्त घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:05 रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। एक बार फिर यहाँ पर हम आप सबकी सेवा में आ चुके हैं भक्ति धारा इस कार्यक्रम को लेकर। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। चलिए, ईश्वर की अपार कृपा आपके जीवन पर सदा बनी रहे ऐसी कामना करते हैं। और श्रवण मास की मंगल कामनाएं आप सभी को। आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम ज्ञान चक्र अभी कुछ क्षणों में हिंदू महासभा की प्रस्तुति में, और साथ ही इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे हमेशा की तरह कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। तो अभी के लिए आइए भगवान गणेश की वंदना से हम कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हैं।

0: श्रोताओं, और अभी के लिए भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत समय हुआ है हम बढ़े ज्ञान चक्र इस विशेष कार्यक्रम की ओर। और इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे हिंदू महासभा की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य गिरीश जी। तो आइए आचार्य जी को हम सुनते हैं।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं।

ईश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। अति पावन श्रावण मास के उपलक्ष में प्रसारित इस विशेष ज्ञान चक्र कार्यक्रम में मैं बाबा जी गिरीश शर्मा हिंदू महासभा की ओर से आप सभी श्रोताओं का सादर अभिवादन स्वागत एवं वंदन करता हूँ। श्रोताओं, पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण मास विशेष रूप से देवादिदेव भगवान महादेव शिव को समर्पित है। आप सभी जानते ही हैं कि यह मास भगवान शिव की आराधना जप तप व्रत संयम और भक्ति का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इसके संबंध में पुराणों में एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जब सनत आदि कुमारों ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, श्रावण मास आपको इतना प्रिय क्यों है, तब भगवान शिव ने उन्हें एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग सुनाया। भगवान शिव ने कहा कि जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में देवी सती ने अपने योग्य बल से देह का त्याग किया, तब उससे पूर्व उन्होंने यह अतल संकल्प किया था कि प्रत्येक जन्म में वे केवल भगवान शिव को ही अपने

पति के रूप में प्राप्त करेंगे। कालांतर में वे हिमालय राज और मैना रानी के यहां देवी पार्वती के रूप में अवतरित हुए। युवावस्था में देवी पार्वती ने संपूर्ण श्रावण मास कठोर व्रत उपवास और भगवान शिव की अनन्य आराधना की। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक धैर्य और अतूट विश्वास के साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने का संकल्प निभाया। उनकी निष्काम भक्ति, कठोर तपस्या और पूर्ण समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी दिव्य प्रसंग के कारण श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसलिए इस पावन मास में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का अभिषेक, पूजन, जप, व्रत, रुद्रपाठ तथा शिव महिमा का स्त्रोत्र पाठ करने के विशेष पुण्य प्राप्ति होती है। यह मास हमें देवी पार्वती की तपस्या, धैर्य, समर्पण और अटूट श्रद्धा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी भक्ति, संयम और सदाचार अपनाने का संदेश देता है। चलिए आज हम मानस विचार के अंतर्गत बालकांड की दोहा संख्या 65 की एक चौपाय पर ध्यान दें। तुलसीदास जी लिखते हैं, सती मरत हरि सन वरु मांगा जन्म जन्म।

0: गोस्वामी जी कहता है, सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। चलिए, आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।
2: श्रोताओं, अभी हम ज्ञान चक्र इस विशेष कार्यक्रम को सुन रहे थे श्रवण मास के उपलक्ष्य में, और इस कार्यक्रम के लिए आचार्य गिरीश जी को हम धन्यवाद देते हैं।

0: श्रोताओं, भक्तिधारा इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार। और अब भक्तिधारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत समय हुआ है हम सुने कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में।
1: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
2: प्रिय श्रोतागण,

आदर नमस्ते। यह कार्यक्रम सेवा में प्रस्तुत है, हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं एक बहुत मधुर गान से, आप रसास्वादन करें।

0: श्रोताओं, श्री प्रकाश आर्य जी के स्वर में गाए गए इस गीत के बाद अब आप संदेश सुनेंगे। संदेश प्रस्तुत करने के उपस्थित हैं श्रद्धेया पंडिता प्रेमिला सिरतन जी। हम उनका अभिवादन करते हैं और निवेदन करते हैं कि आज किसी एक मंत्र का पाठ करें और उस पर अपने विचार दें। पंडिता प्रेमिला सिरतन जी।
1: ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु न सुखकारी परमात्मा है आनंद स्वरूप इष्ट सिद्धिकारक विभो सकल जगत का भू अमृत वर्षा कर रहा रक्षक पोषक आप दिव्य कृपा उसकी सदा हरती तीनों ताप। सम्माननीय श्रोतागण सादर नमस्ते। श्रोताओं, हम इस मंत्र से आचमन करते हुए वाणी के पति प्रभु से प्रार्थना करते कि हमारे कंठस्थ कफ की निवृत्ति हो जाए, हमारी वाणी मधुर शुद्ध हो जाए ताकि हम अच्छी तरह से ब्रह्म यज्ञ संपन्न कर सके। जैसे देवी स्वरूप ईश्वर पूर्ण अभीष्ट कीजिए, यह नीर हो सुधामय कल्याण दान दीजिए। हे देव, आप सभी को जल से तृप्त कर पिपाशा शांत करें ताकि सुखमय आनंदमय हमारा यज्ञ होता रहे। देवी आप जैसे यह जल दिव्यता से पूर्ण है, वैसे सबका प्रकाशक सबको

आनंददाता सर्वव्यापक ईश्वर वेद वरदान की वाणी से हमारा यज्ञ शांत भाव से उत्पन्न हो। जैसे जल में सलीलता एवं शीतलता होती, वैसे हम में शांति भरते रहने की विनती है। जल और मंत्र से अमृत ग्रहण करते हैं, वह जल हमारे लिए औषध बन जाता, जिससे हम रोग रहित हो जाते हैं। ऐसी अक्षय शांति के लिए हम 3 बार जल से आचमन करते हैं, जिससे सबका कल्याण होता। मन शांत, बुद्धि श्रेष्ठ, आत्मा प्रबल, वाणी कोमल मिठास से भरी रहती। अभीष्ट यह सुखकारी प्रभु से, मन इच्छित आनंद के वरदान से, तनाव रहित शरीर के लिए विनती करते हैं, जिससे आध्यात्मिक स्वास्थ्य से मन दूषित न होए, खुशी की खुराक निश्चिंत जीवन को योग्य बना लेते हैं। यज्ञ से ही योग्यता एवं कुशलता से हम आदर्श बनते हैं। शाम सवेरे के मिलन बेला में आचमन कर तन मन को स्वस्थ, व्याधि से दूर तो रहते हैं, पर मानसिक शारीरिक बौद्धिक शक्ति जागृत करने की प्रेरणा भी मिलती है। प्रभु मिलन से स्वर्णिम सुअवसर पाकर आनंदित तो रहते, समाज में मानसिक शांति निर्मलता होती रहती है, निर्विकारिता भी हो और संताप भी हो, उन व्यथित हृदय या दुखों से आह कहाँ निकलेगी। हमें तो आनंद ही आनंद मिलेगा। हमें मनोवांछित आनंद पाना ही हमारा कर्म है। सुख समृद्धि शांति आनंद के लिए पूर्ण आनंद के ध्यान में डूब जाते हैं। जैसे उदित सूर्य और अस्त समय हम जीवन के उद्देश्य अक्षय शांति के लिए परमानंद के ध्यान में डूबकर स्थिर चित्त को शांत कर पूर्ण आनंद में समाहित करने की याचना करते हैं और आनंद पाने का प्रयत्न करते रहते हैं। आप पोषक रक्षक से अमृत बरसाने और सुख की वृष्टि चारों ओर से पाने की सर्वदा इच्छा रहती है। शाश्वत आनंद के सुख के लिए प्रभु देव को निहारते ही रहते हैं। हमारे आत्मा निवेदन है कि आप दिव्य गुण वाले सर्वव्यापक सांसारिक सुख के साथ मुक्ति आनंद के दाता हमें सब ओर से सुख शांति प्रदान कीजिए। आप तो कल्याणकारी हैं, हमारा कल्याण करते रहने की कृपा की विनय है। इसलिए शाम सवेरे यज्ञ करते हुए सबका प्रकाशक आप ही हैं। जैसे ओम शन्नो देवी रभिष्टय, आपो सबका प्रकाशक आनंददाता से हमारी प्रार्थना रहती है कि आनंद के लिए सजना सवरना, दैहिक सुंदरता के लिए बहुमूल्य समय शक्ति धन जो लुटा रहे हैं वह तो पसीना आते ही नष्ट हो जाएगा। शारीरिक सुंदरता सूर्य समान ढल जाती, चिंता भय ईर्ष्या उत्पन्न होती और भाग्य और भगवान को दोष देते, लेकिन उत्तम वस्त्र पहनते ही पुराना हो जाता है। इसलिए हमें आंतरिक आनंद, व्यवहारिक सुख, आत्मिक शांति की प्रार्थना है। बाहरी आनंद तो वैसे ही है जैसे विष से भरे हुए घड़े के मुख पर अमृत लगा हो। बाहरी आनंद से ज्यादा महत्व अंदर के भाव की वृत्ति होती है। शुद्ध भाव ही सुख देने वाले शाश्वत होता, जिससे कल्याणकारी विचार आत्मिक स्नेह के आनंद से जन्म देता है। मन को इच्छित आनंद अभिष्टय प्राप्त होता रहे। शन्नो आत्मसुख के लिए नम्रता, धैर्य, मधुरता, सहनशीलता, सरलता, शांति आदि दैवी गुणों का उद्भव होता रहे। हमारी आत्मा शरीर सुख समृद्ध रहे, जिससे सर्वगुण संपन्न निर्विकारी ही हमें परमात्मा आनंद से सच्चा सुख, असीम शांति, अकाद आनंद पाही लेते हैं। आत्मा आनंद अजर अमर अविनाशी होते, जैसे सांप के

मस्तक में मनी होती, वैसे हमारे शरीर में आत्मा मनी होती, जिससे आचमन की अमृत जल पीकर आनंद भोगती, मन के विकृत भाव नष्ट हो जाते हैं। हमें तो आनंद धन की आवश्यकता है, जो परम सुंदर, पवित्र, अविनाशी है। मन की इच्छा अनुसार आनंद पाने की कामना करते हैं। जैसा देखेंगे वैसा सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। आचमन जल में वह मिठास है, जिसे पीकर आनंद और स्वाद पाकर शाम सवेरे तृप्त रहते हैं। हम आनंद एवं प्रकाश के स्वामी से कामना करती कि दिव्यता से पूर्ण आनंद प्राप्त हो। जिसका मन मस्त रहता, उसके पास समस्त रहता। दूसरे भाग में मंत्र की पुकार है, भवंतु पीतये। प्रश्न उठता है कि किस लिए सुखानंद की चाह है? मोक्षानंद की प्राप्ति के लिए, पीतये आनंद से भरपूर रहने के लिए, पूर्णानंद भगवान से विनती है। हमें जीने के लिए आहार एक गुना, पीना दो गुना, श्रम तीन गुना एवं आनंद चार गुना होना अति आवश्यक है। जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, पर ये हमसे दूर होते जा रहे हैं। जिसका कारण मनमुटाव, बिगड़ी बातें, कलह, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, तनाव, वैर विरोध दुखदायी होते तो आनंद से कहाँ रह पाएंगे? गम के सागर में डूबे उदास रहेंगे। जीवन में सच्चित, हार जीत, अच्छा बुरा, हानि लाभ, उतार चढ़ाव, जीवन मृत्यु के बाद आनंद में न रह सकते। हमारे जीवन की कठिनाई, दुख, दर्द, संकट जल के समान शुद्ध, ताजा, पवित्रता के साथ आनंद में बहता रहता। वे औरों के जीवन में आनंद लाने के लिए बने रहते और सभी को अपना बनाकर आनंद के साथ आगे बढ़ जाते। जैसे सरिता अति अति आगे बढ़ने वाली होती है, हम रक्षक पोषक से अमृत बरसाने की आराधना करते, ताकि आनंद से मुस्कुराता मुख, दमकती आँखें सभी को प्रभावित करे, हमारे व्यक्तित्व में निखार लाए। इस मंत्र से जल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सैकड़ों दवाइयों से बेहतर है। जिस आनंद जल से शरीर के सभी ज्ञान एवं कर्म इंद्रिय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता, मन सक्रिय रहता, आत्मानंद से हर दर्द भुलाकर खुशी और आनंद से जीते हैं। जैसे श्वास जितना ही जरूरी होती, उतने विश्वास और उल्लास जो मोतियों की तरह हैं, इसलिए सवेरे आचमन कर दिन भर आनंद से भरे रहते हैं। आनंद की लगन लग जाने से जीवन ही बदल डालते। जिसके पास यह संपत्ति है, रिश्ता भी जुड़ा रहता है, हमारे खास उपकार होता रहता। परमात्मा के लुप्त न होने वाले आनंद हम में समाये रहते। अंध के प्रस्तुत मंत्र का भाग कह उठता, संयोरभि श्रवन्तु न। हे प्रभु, आपसे हमारा कल्याण सदा होता रहे। जिसे सुख उपकार कल्याण की सर्वदा सब ओर से वृष्टि कर। सांसारिक सुख के साथ मुक्ति, आनंद और अक्षय शांति तथा स्थिर चित्त को जीवन उद्देश्य से समृद्धि को पाने की ललक है। हमारी शाम का आचमन, रात्रि की निरवता में चैन की नींद के आनंद सब ओर से प्राप्त कराने की कृपा चाहती, ताकि सवेरे ऊर्जा शक्ति से भरपूर तो हो सकते हैं। इस प्रकार रक्षक पोषक की अमृत के आनंद की दिव्य कृपा से हमारे तीन ताप मिट जाते, जो दुख अशांति पैदा करने वाले काम, क्रोध, घृणा, क्लेश, स्वार्थ, मोह, अहम हर कर कल्याण करने की विनय रहती। हम यज कर पवित्रता का सच्चा व्रत लेकर, विकार का उपवास कर, विष पान छोड़ आपके आनंद अमृत पान कर मुक्त होना चाहते हैं। दिव्य गुणों से भरे रहने

0: की ललक रहती, जो हमारी संपदा है, जो अतिंद्रिय प्रेम आनंद शांति प्रदान करने में सहयोगी बनकर तीनों तापों से छुटकारा देती। हे प्रभु, आप सबका प्रकाशक हैं, आनंद देने वाले और सर्वव्यापक हैं, मन इच्छित ऐश्वर्य दाता, ईश्वर से आनंद एवं पूर्ण आनंद पाने का पूर्ण निवेदन है, जिसमें सभी का कल्याण निहित है। हे परमेश्वर, हम पर सब ओर से सदा सुख शांति आनंद की वर्षा करने की आराधना है। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रोताओ, अभी आपने पंडिता प्रेमिला श्रीतन जी को सुना, हम उनका धन्यवाद करते हैं। आशा है आपने उनके विचारों से लाभ उठाया होगा। अंत में आप एक और भजन सुनेंगे प्रकाश आर्य जी के स्वर में। जाते जाते हम धन्यवाद करते हैं श्रीमती अंजू लक्ष्मण जी को, टेक्नीशियन के रूप में उन्होंने सहायता की, और आपने सुना, आभार। फिर मिलेंगे, नमस्ते।
2: आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: तो चलिए यहाँ पर इस अगले भक्ति गीत द्वारा कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं। भक्ति धारा इस कार्यक्रम में आप हमारा साथ दे रहे हैं। कहते हैं कि ईश्वर के प्रति ये जो निष्ठा होती है, ये जो विश्वास होता है, ये सदैव हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम जीवन में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, हमें ज़्यादा समय नहीं मिलता है, हम चिंता से घिरे होते हैं, परेशानी से घिरे होते हैं, उलझनों से घिरे हुए होते हैं। ऐसे में ईश्वर ही एकमात्र ऐसा सहारा है हमारे लिए जो हमें सभी नकारात्मक चीज़ों से लड़ने में शक्ति प्रदान करते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो विज्ञप्तियां सुन लीजिए। लाफ्लोरा के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, विलाज दे लाफ्लोरा, यहाँ पर खासकर यहाँ के राम सहाय रोड, बाला रोड, शिबनोत लेन, स्कूल रोड, शोभा लेन, कुतवारू रोड, बॉम्बे रोड, चमन रोड, रंगलाल रोड, बॉस्टन रोड, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 6 अगस्त को सुबह के 9 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच, सुबह के 9 से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही मोशवाजी के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, मोशवाजी के खास कर काजवारीना, कोरल, आजो, मौसलमा, लेविए, मेडिटेरियन, मिस्टिक होटल, XMCB, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर भी कल गुरुवार 6 अगस्त को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 2.5 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी दो विज्ञप्तियाँ CEB की ओर से। तो भक्ति धारा इस कार्यक्रम में आपने हमारा साथ दिया और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम के हम अंत तक आ पहुँचे हैं। जाते जाते भगवान गणेश का नाम लेते हुए हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। बुधवार का दिन है, उनकी पूजा अर्चना होती है, तो इस भक्ति गीत द्वारा ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और साथ ही हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया। 11 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा। अगली भेंट तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को।

0: सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार एक बार फिर से गीता जी के साथ। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा, सभी को हमारा नमस्कार। अफ्रीकी विकास बैंक की कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 जो 28 जुलाई को प्रकाशित हुई, मॉरिशस की सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जून की शुरुआत में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 23 बिलियन मॉरिशन रुपए से ज्यादा के बजट सपोर्ट लोन का अनुरोध किया है। ये वित्तीय सहायता 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दो किश्तों में जारी की जाएगी। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी, ये संदेश प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कल शाम दिया। वे ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मॉरिशस में भाषाओं के संरक्षण में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार कठिन फैसले ले रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी मॉरिशस वासियों की भागीदारी और सहयोग के बिना ये लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं होगा। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग रेफरी और पूर्व सरकारी कर्मचारी स्टीव गायतों एस्बेस्टो को 21 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उनके सहयोगी एंटोनी स्टीव साम को भी 21 साल की सजा दी गई है। दोनों को मडागास्कर से लाई गई लकड़ी की मूर्तियों में छिपाकर 2 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन की तस्करी का दोष पाया गया। ये फैसला कल असाइजेस अदालत द्वारा सुनाया गया। और विदेश में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। कम से कम 14 लोगों की मौत हुई जबकि 22 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये इस साल कीव पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव के लिए यूक्रेन ने अपने सहयोगी देशों से अमेरिकी निर्मित पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टरों की अतिरिक्त आपूर्ति की अपील की है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: शम्मे फरोजा।

ज़िंदगी को ऐसा बना दे या रब कि खुशी मिले तो सजदा कर लूँ और गम मिले तो सब्र कर लूँ। मौज़े सामीन, इसी नेक तमन्ना के साथ आगाज़ करते हैं इस उर्दू मजलिस का। उम्मीद है आप फ़ज़ले खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ान रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, बयान, अन्नातु सलाम और आपके पैगामात। फरमाने बारी ताला है, ज़िक्र करो अपने रब का सांसों के साथ दिल में, बग़ैर आवाज़ निकाले आजिज़ी और खुफिया तरीक़े से सुबह और शाम ज़िक्र करो और गाफिलीन में से मत बनो। तो आइए आगाज़ करते हैं कलामे इलाही से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

क्या जो चीजें तुम्हें यहां मुयस्सर हैं उनमें तुम यूं ही बेखौफ छोड़ दिए जाओगे, यानी बाग और चश्मे और खेतियां और खजूरें जिनके खोशे लतीफ और नाजुक होती हैं, और पहाड़ों में तराश तराश कर पुरतकल्लुफ घर बनाते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरे कहे पर चलो, और हद से तजावुज करने वालों की बात न मानो जो मुल्क में फसाद करते हैं और इस्लाह नहीं करते।

वो कहने लगे कि तुम तो जादू ज्यादा हो, तुम और कुछ नहीं, हमारी ही तरह के आदमी हो, अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। स्वाले ने कहा, देखो ये ऊंटनी है, एक दिन पानी पीने की इसकी बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी, और इसको कोई तकलीफ न देना, नहीं तो तुमको एक बड़े सख्त दिन का अजाब आ पकड़ेगा। बिलाखिर उन्होंने उसको मार डाला, फिर नादिम हुए, सो उनको अजाब ने आ पकड़ा, बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है।

0: कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया। जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के जिम्मे है।
1: अतः

क्या तुम दुनिया जहान में से लड़कों पर मायल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। वो कहने लगे कि ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो शहर बद्र कर दिए जाओगे। लूत ने कहा, मैं तुम्हारे काम से सख्त बेजार हूं।

ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे घर वालों को इनके कामों के वबाल से नजात दे। सो हमने उनको और उनके घर वालों को सबको नजात दी, मगर एक बुढ़िया के पीछे रह जाने वालों में थी। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया और उन पर मेह बरसाया, सो जो मेह उन लोगों पर जो खबरदार किए गए थे बरसा, वो बुरा था।

और बन के रहने वालों ने भी पैगंबरों को झुठलाया जब उनसे शुएब ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इस काम का तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है।

देखो पैमाना पूरा भरा करो और नुकसान न किया करो और तराजू सीधी रखकर तोला करो और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो और मुल्क में फसाद न करते फिरो और उससे डरो जिसने तुमको और पहली खलकत को पैदा किया।

वो कहने लगे कि तुम तो जादू जदा हो और तुम और कुछ नहीं हम ही जैसे आदमी हो और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। सो अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ। शुएब ने कहा कि जो काम तुम करते हो मेरा परवरदिगार उससे खूब वाकिफ है। तो उन लोगों ने उनको झुठलाया। पस साहिबान

और ये कुरान रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है, इसको अमानतदार फरिश्ता लेकर उतरा है, यानी उसने तुम्हारे दिल पर इसका इल्का किया है ताकि तुम लोगों को खबरदार करते रहो, और इल्का भी फसीह व बलीग अरबी जबान में किया है, और इसकी खबर पहले पैगंबरों की किताबों में लिखी हुई है।

और क्या उनके लिए यह सनद नहीं है कि उलमाए बनी इसराइल इस बात को जानते हैं? और अगर हम इसको किसी अजमी पर उतारते और वो इसे उन लोगों को पढ़कर सुनाता तो ये इसे कभी न मानते। इसी तरह हमने इनकार को गुनाहगारों के दिलों में दाखिल कर दिया, वो जब तक दर्द देने वाला अजाब न देख लें इसको नहीं मानेंगे। वो अजाब इन पर नागहां आवाके होगा और इन्हें खबर भी ना होगी। उस वक्त कहेंगे क्या हमें मोहलत मिलेगी।

0: तो क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं?
1: भला देखो तो, अगर हम इनको बरसों फायदे देते रहें, फिर इन पर वो अजाब आवाके हो जिसका इनसे वादा किया जाता है, तो जो फायदे ये उठाते रहे इनके किस काम आएंगे? और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसके लिए खबरदार करने वाले पहले भेज देते थे ताकि याद दिला दें, और हम जालिम नहीं हैं।

और इस कुरान को शैतान लेकर नाजिल नहीं हुए, ये काम न तो उनके लायक है और न वो इसकी ताकत रखते हैं। वो तो आसमानी बातों के सुनने के मकामात से अलग कर दिए गए हैं।

तो अल्लाह के सिवा किसी और माबूद को मत पुकारना, वरना तुमको अजाब दिया जाएगा। और अपने करीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो, और जो मोमिन तुम्हारे पैरों हो गए हैं उनसे तवाजों से पेश आओ। फिर अगर लोग तुम्हारी नाफरमानी करें तो कह दो कि मैं तुम्हारे अमाल से बेताल्लुक हूं, और उस गालिब व मेहरबान पर भरोसा रखो जो तुमको जब तुम तहज्जुद के वक्त उठते हो देखता है, और नमाजियों के साथ तुम्हारे रुकू और सुजूद को भी देखता है। बेशक वो सुनने वाला है, जानने वाला है।

क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान यानी जिन्नात किस पर उतरते हैं? वो हर झूठे गुनहगार पर उतरते हैं। जिन्नात सुनी हुई बात उसके कान में ला डालते हैं और वो अक्सर झूठे हैं।

0: और शायरों की पैरवी गुमराह लोग किया करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर वादी में सर मारते फिरते हैं और कहते वो हैं जो करते नहीं, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और अल्लाह को बहुत याद करते रहे और उन्होंने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद इंतकाम भी लिया, और जालिम अनकरीब जान लेंगे कि कौन सी जगह लौट कर जाती हैं।
1: सदक़ल्लाहु अज़ीम। मौज़े सामीन, कुरान पाक की तिलावत करना जितनी बड़ी सादत है उतनी ही बरकत से उसे गौर से सुनना भी चाहिए। कुरान करीम दिलों को सुकून, रूह को ताज़गी और इंसान के अंदर उम्मीद पैदा करता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को शिफा भी करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, और हम कुरान पाक में वो चीज़ नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। इसलिए रोज़ाना कुछ वक्त कुरान पाक की मोहब्बत, अदब और तवज्जा से सुनने की हमेशा हमें आदत बनानी चाहिए, क्योंकि ये दिलों की राहत और रूह की ग़िज़ा है। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कुरान शरीफ समझकर पढ़ने और सुनने की तौफीक अता फरमा। आमीन।

0: अल्लाह ताला हमारे तमाम सुनने वालों को उम्बारगाहे इलाही की हाज़री उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। मौज़ सामईन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:28 हो चुके हैं। बुध का दिन है, अगस्त की आज 5 तारीख है और इस्लामी साल के दूसरे महीने माह सफ़र की आज 21 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। ताखीर ना करते हुए अब आप समाअत फरमाएंगे। हर बुध की तरह खतीब व इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मार्क्स पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा कादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समाअत फरमाइए।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सैयद अल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, अम्मा बादु।

नज्म का जवाब नहीं, जिनकी रुबाइयात का जवाब नहीं, वो ज़ाते गिरामी इमाम अहले सुन्नत वादले बरेलवी रदियल्लाहु ताला की है, जिनकी हदाई के बख्शिश का जवाब नहीं है, जिनके कंजुल ईमान तर्जुमा कुरान का जवाब नहीं है, जिनके फतवा रिजविया अल अताया अन नबविया फी फतवा रिजविया का जवाब नहीं है, जिनकी अद्दौलतुल मक्किया बिमादतुल गैबिया का जवाब नहीं है। हजार हा फितने उठे, कभी इश्क रसूल को जड़ से काटने वाले फितने उठे, कहीं इल्म गैब मुस्तफ़ा पर तलवारें चलाई गई, कहीं जाकर के मुस्तफ़ा जानेमत के इख्तियार को छन्नी करने की कोशिश की गई, कहां कहीं पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबस और मजबूर लिखा गया। अल्लाहु अकबर कबीरा, जब बड़ी बड़ी दरसगाहों में बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने वाले, बड़े बड़े अमामे पहनने वाले लोग, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाने वाले लोग, अपने आप को दारुल उलूम के मोहतमिम और कासिमुल उलूम वल खरात कहने वाले लोग, जब अपनी किताबों के जरिए से कुरान और हदीस में तहरीफ करने लगे और कुरान और हदीस में चोरी करके लोगों के दिलों से इश्क रसूल को काटने लगे, तो ऐसे वक्त में उम्मत मुस्लिमा बेकरार हुई और इस्तिराब के आलम में पुकारने लगी, ऐ अल्लाह कोई ऐसा मर्द कलंदर पैदा फरमा, तेरे महबूब के इख्तियार को चैलेंज किया जा रहा है जो कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दे सके, तेरे महबूब के इल्म गैब को जो है पागलों और जानवरों से तशबीह दी जा रही है, किसी ऐसे मर्द कलंदर को पैदा फरमा जो इसके कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दे सके, ऐ अल्लाह किसी आशिक रसूल को पैदा फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस उम्मत मुहम्मदी पर करम आ गया और ऐ रहमत ने करवट ली और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा जहमत की उम्मत को कश्ती को संभालने के लिए और भंवर से निकाल कर किनारे पर लाने के लिए मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बरेली की सरजमीन पर इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नक़ी अली रहमत व रिदवान के घर में पैदा फरमाया। इल्म व इरफान के घर में ये शख्सियत पैदा होती है और चार साल चार महीने और चार दिन की उम्र शरीफ में बिस्मिल्लाह खानी करने के बाद नाज़रे कुरान की तकमील के बाद ये ज़ाते गिरामी 13 साल 10 महीने 4 10 दिन की उम्र शरीफ में तमाम उलूम व फ़नून को हासिल करने के बाद मुफ्ती की मसनत पर बैठ कर जब मुतमक्किन होकर फतवा लिखती है, अल्लाहु अकबर कबीरा, फिर अरब व आरब के उलमा की तवज्जो इधर मरकूज होती है और हर मुश्किल मसले को इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में पेश किया जाता है और आपके कलम से निकला हुआ फतवा मुस्तनद समझा जाता है। हर्फ आखिर रखता है कि जब इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने जो तहकीक फरमा दी उसका जवाब नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा, लाखों फतावे आपके कलम से सादिर हुए और दुनिया ने उसको जो है बड़ी अजमत के साथ देखा और किसी ने अपने सर पर रखा। अल्लाहु अकबर कबीरा, आपने इश्क़ रसूल के चिराग को जलाया, आपने ऐसी तहरीक को पैदा फरमाया जिसने लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल को पैदा फरमाया। इख्तियारात मुस्तफ़ा पर हमले हुए तो आपने उसका जवाब दिया, जब मुस्तफ़ा जहमत के इल्म गैब पर हमला हुआ तो आपने उसका जवाब दिया, मुस्तफ़ा जहमत को बेबस कहा गया तो उसका जवाब इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला ने दिया। तमाम तरफ से फितने उठते चले आए, कहीं कादियानियत का फितना, कहीं वहाबियत का फितना, कहीं नेचरियत का फितना, कहीं सल्फियत का फितना, जितने फितने पैदा हुए तन्हे तन्हा ज़ाते गिरामी है एक पांव पर खड़े होकर के इश्क़ रसूल का पहरा दिया। वो मुहाफिज़ नामूस रिसालत है, वो मुहाफिज़ नामूस सहाबा है, वो मुहाफिज़ नामूस कुरान है जिसने अकेले तन्हा फैसला तन्हा जो है हिफाजत फरमाई। जब ये तमाम लोगों ने और बड़ी बड़ी खानकाहों ने देखा कि तन्हा एक बंदा है और ये जवान तमाम का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और इसके जवाब के सामने सब जो है दंदान शिकन नजर आ रहे हैं और अपनी उंगलियां दबाते हुए नजर आ रहे हैं, तो बड़ी बड़ी खानकाहों से आवाज आई, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा, उनके सलाम का जवाब नहीं, उनके तर्जुमे कंजुल ईमान का जवाब नहीं, उनकी तहकीक व तसनीफ का जवाब नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा, उलमाए अरब व अजम ने माना कि तुमने जो है ऐसे इल्म व इरफान के दरिया बहाए हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारी पेशानी में हमने देखा है, जब आपने हज किया तो मक्का शरीफ के जो शेखुल हदीस थे और हरम शरीफ के जो मुफ्ती आजम थे, जब वो निकल रहे थे इमाम अहमद रज़ा की उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने आपकी पेशानी को देख कर फरमाया था जो आपकी तकरीजात में जो आपकी किताबों में मौजूद है कि आपकी पेशानी में मैं इल्म व इरफान की रोशनी देख रहा हूँ। उस ज़माने में एक फितना पैदा हुआ कि लोगों ने जब इल्म गैब मुस्तफ़ा के इनकार किया तो देवबंद की तहरीक से चंद उलमा उठे और उसका सरगना खलील अहमद

अम्बेठवी था और खलील अहमद अम्बेठवी वहाँ पहुँचा और शरीफ मक्का को जा करके उसने वलखलाया और उसने कहा कि बरेली शरीफ से एक मौलाना आए हैं जिनका यह अकीदा है माज़ल्ला, जो शिरकिया अकीदा रखते हैं, जो नबी के इल्म गैब को इस तरह से मानते हैं। अल्लाह अकबर, शरीफ मक्का ने कहा कि वो आए हुए हैं। तो कहा कि उनकी बारगाह में एक सवाल करो और सवाल करने के बाद उनका जवाब पूछो, अगर वो जवाब कुरान हदीस की रोशनी में दे दें तो ठीक है, और नहीं दे तो फिर जो तुम उलमा फरमाएंगे वो सज़ा उनको दी जाएगी। चुनांचे सवाल मुरतब किया गया। इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला मदीनतुल मुनव्वरा जाने की तैयारी में है और हज के जो फ़राइज अंजाम देने के बाद आपकी कुछ तबीयत नासाद है, बुखार के असरात हैं, न लाइब्रेरी है, न किताबें हैं, न कोई दारुल इफ्ता साथ में है। सवाल पेश किया गया अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम के इल्म गैब के हवाले से। इमाम अहमद रज़ा ने उसको देखा, फरमाया जवाब उर्दू में लिखा जाए या अरबी में लिखा जाए। कहा अरबी ज़बान में लिख दें तो बहुत अच्छा होगा, यहाँ उलमाए अरब उसको पढ़ लेंगे। इमाम अहमद रज़ा सहने मक्का में बैठते हैं और बैठने के बाद जवाब लिखना शुरू फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा लिखते लिखते एक किताब तैयार हो जाती है, उसका नाम आपने दौलतुल मक्किया बिमादतुल गैबिया रखा। जब वो रखने के बाद शरीफ मक्का की बारगाह में उस किताब को रखा गया और उलमा ने उस किताब को पढ़ के सुनाया अल्लाहु अकबर कबीरा, तो वो उसने अपने सर पर रख कर के रश करने लगा। हैरत ज़दा रह गए उलमा या रब आजम, कैसा ज़िहानत है, न लाइब्रेरी है, न किताबें हैं, ये कैसा मुताला है और ये कैसा इल्म इरफान है और ये झलक रहा है किताब से। 8 घंटे के अंदर इमाम अहमद रज़ा ने अद्दौलतुल मक्किया बिमादतुल गैबिया जैसी किताब अता फरमा दी। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये आपका इल्मी शाहकार है। दुनिया ने इसीलिए तो कहा कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। शरीफ मक्का ने पूरी किताब को सुना और किताब सुनने के बाद उसने तारीखी जुमला बोला, अल्लाह दे रहा है, बंदा ले रहा, रसूल अल्लाह ले रहे हैं और ये बीच में कौन बंदा है जो टांग अड़ा रहा है, यानी अल्लाह देने वाला है, रसूल अल्लाह लेने वाले हैं, तो ये मुल्ला इनकार करने वाला कौन होता है। आला हजरत ने फरमाया, और कोई गैब क्या जो तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। उम्मत मुस्लिमा पर एक ऐसा वक्त में आया कि जब उलमा अरब और अजम, मुल्क शाम के उलमा, सीरिया के उलमा, इजिप्ट के उलमा, तमाम दुनिया जहान के उलमा, अरब के उलमा, मक्का और मदीना के उलमा खामोश हो गए। जब करंसी तब्दील हुई और नोट में इसको जो कागज़ में तब्दील किया गया और लोगों ने यह फैसला किया कि इसको जेब में रखना जायज़ है कि नहीं, एक कागज़ से कागज़ खरीदना जायज़ होगा कि नहीं, उलमा अरब की बारगाह में सवाल पेश किया गया कि इसका जवाब दीजिए। उलमा अरब व अजम ने तहकीकात के दरिया बहाए लेकिन जवाब न मिल सका। जब जवाब न मिल सका तो मुफ्ती आजम मक्का ने यह लिखा कि यह उलमा की गर्दन पर एक बोझ है, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आएगा और इसको अपनी गर्दन से उतार देगा और ज़रूर उसका जवाब मिलेगा, लेकिन हमारी हद यहीं तक थी, हमें इसका जवाब नहीं मिला, हम जवाब लिखने से कासिर है। इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला जब दूसरे हज के लिए तशरीफ़ लेके गए तो वहाँ के मुफ्ती आजम ने आपकी बारगाह में इस्तफ़्ता पेश किया कि इसके हवाले से कोई जुज़िया आपकी बारगाह में मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, हाँ मौजूद है। आपने वो सवाल देखा और लिखा, अलकिफ़लुल फ़कीहिल फ़ाहिम मिनल क़िरसासि दराहिम जैसी किताब। इमाम अहले सुन्नत ने अरबी ज़बान में करंसी तब्दील होने के हवाले से जो किताब लिखी हरम शरीफ के मक्का के, और मुफ्ती आज़म ने कहा कि ये जमाल की निगाह से ये जुज़िया कहाँ रह गया था कि एक अजम का बंदा आया और उसने आकर के इसका जवाब दे दिया। वो किताब रख कर के अपने सर पर रश कर रहे थे, ये कौन आलिम रब्बानी है। कहा, बरेली शरीफ के मौलाना अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने। आज दुनिया नोट इस्तेमाल कर रही है, 1 सदी से ज़्यादा हो गई और नोट इस्तेमाल हो रहा है, ये इमाम अहले सुन्नत का एहसान अज़ीम है। दुनिया की खान का हो उससे फैज़ आपको मिलता है, अगर लेने वाला साहिब ज़र्फ़ हो महरारा मुतहरा से आपको फैज़ मिला, सैयदना आले रसूल की बारगाह से ग़ौसे आज़म का ख़ास फैज़ आपको मिला, लेकिन दुनिया की खान काहों को इमाम अहमद रज़ा ने जो दिया है उसका जवाब नहीं। आपने इस्तिदलाल की ज़बान अता फरमाई, दुनिया की खानकाहों का, दुनिया के तमाम खानकाहों के मरासिम व मामूलात अहले सुन्नत की आपने हिफाजत फरमाई और उनको दलाइल की ज़बान अता फरमाई। कोई खानकाह ऐसी नहीं है जिस पर इमाम अहले सुन्नत का एहसान अज़ीम ना हो। वो आदमी क्या है जो इमाम अहले सुन्नत से बुग़्ज़ रखता हो, वो सुन्नी नहीं हो सकता है। इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला की ज़ाते गिरामी सुन्नियत का मियार है। इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने शेखैन की अजमत का पहरा दिया है और खुलाफा राशिदीन की अजमत का पहरा दिया, अहले बैत अथार की अजमत का पहरा दिया है। आज लोग 2 किताबें पढ़ने के बाद

0: बड़ी आसानी के साथ में, जिनको जो है अरबी की अलिफ ऐन तक नहीं आती है और अगर अरबी किताबें रख दी जाएं तो हिज्जे करने पर मजबूर हो जाएं, वो सवाल करने लगते हैं कि इमाम अहमद रज़ा को माज़ल्लाह अहले बैत अतहार से मोहब्बत नहीं। अरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत देखना हो तो आओ इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में, आपको मालूम होगा कि किस तरह से इमाम अहले सुन्नत मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, आज हमारे दिलों में अहले सुन्नत वल जमात के जो दिलों में, हमारे दिलों में जो सादात का अदब है, एहतराम है, अल्लाह के हबीब अली सलाम की औलाद से जो बेपनाह मोहब्बतें हैं, हमारे सर उनके कदमों पर कुर्बान है और हमारे सर झुके हुए हैं इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत ने हमारे सीनों में कूट कूट करके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत को हमारे सीनों में रखा है। अल्लाह अकबर, तुम उनकी मोहब्बत को जाँचना चाहते हो? अल्लाह अकबर कबीरा, वो आला हजरत हैं लिखते हैं, आला हजरत फादले बरेलवी फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वो इमाम अहले सुन्नत फादले बरेलवी, उनकी मोहब्बत को चेक करना चाहते हो तो आओ देखो इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत ये है। क्या बात रजा इस चमनिस्ताने करम की है, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, गौसे आज़म की बारगाह में जब वो आते हैं तो अर्ज़ करते हैं, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम अहले सुन्नत फ़ादले बरेलवी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के किस किस पहलू पर गुफ्तगू की जाए और कहाँ कहाँ गुफ्तगू की जाए, जिस बाप को आप छेड़िएगा तो एक लंबी दास्तान है। मैं इस बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, मुल्क के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत को हमारे सीनों में रोशन फरमाए और उनके मज़ार मुबारक पर अनवार और तजल्लियात की बारिश फरमाए और हमें उनकी कदर की करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और मुस्लिम के मसलक पर ज़िंदगी और उनके मसलक पर मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़ सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मासपा व मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा क़ादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समात फरमाइए चंद ऐलानात। जुमेरात 6 अगस्त दारुल उलूम मजलिस रज़ा प्लेंदे पपाई में बाद नमाज ज़ोहर मोहतरमा आलिमा सैयदा उनाज़ा फ़ातिमा और उस्तादा यास्मीन आज़िया साहिबा की सरपरस्ती में उर्स आला हज़रत और ज़िक्र का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा मंगल 11 अगस्त बाद नमाज ज़ोहर दारुल उलूम मजलिस रज़ा ब्रांच आबिद गुलेद पोर्टलुस में उर्स आला हज़रत का अहतमाम किया जा रहा है। मोहतरमा आलिमा सैयदा उनाज़ा फ़ातिमा की सरपरस्ती में तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। और इतवार 9 अगस्त सुबह 10 बजे सुन्नी रज़वी औलिया मस्जिद और सुन्नी रज़वी अकेडमी इदगोलोगों पोर्टलुस में सुन्नी रज़वी सोसाइटी इंटरनेशनल की जानिब से उर्स आला हज़रत का अहतमाम किया जा रहा है।

दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनकी हर ख्वाहिश पूरी करे, उन्हें सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी और ढेरों खुशियां अता फरमाए। और बंधु, जी हाँ, तखय्युले से बंधु फैमिली, एक कलाम की फरमाइश।

ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। नमस्कार, श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आप सुन रहे हैं आपके पसंद प्रोग्राम। और इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर। आज बुधवार 5 अगस्त 2026 और हमेशा की तरह आप साथ दे रहे हैं। और आपको हमें फ़ोन करना है 4028085402808 और मैसेजेस आप कर सकते हैं 4251700। चलिए आशा जी की प्यारी आवाज़ में आज का पहला गाना सुनते हैं।

चले श्रोताओं, बढ़ते हैं आगे और अगला गाना विश्वानी डुमन जी की मांग पर, और वो रहती है वाकवा गाना, खासकर वो मांग रही है अपनी बहन इंदिरा शारदा, सहेली जो है नीला प्रतिभा शोभा और गीता गजाधर के लिए।

जहाँ दोस्तों साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अगला गाना हम चलाएंगे बॉम्बे का बाबू। जी हाँ, फिल्म का नाम है और ये गाना खास कर सुदेवी जी के लिए, वो रहती है वाक्वा और गाना खास कर वो मांग रही है दीदी ललिता, कुशल फैमिली, दीदी सुनीता, शोभा, देविना, बिंदु, माला, मालेगा के अनुषा, किरण, कृष्ण, कृष्णी और पूरे राम रतन परिवार के लिए, राम गुलाम परिवार के लिए और साथ ही साथ में रघुभर परिवार के लिए। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा गाना और साथ ही साथ में जालू परिवार के नाम ये गाना जाएगा।

2:53 हुए है दोस्तों, और ये गाना जाएगा सालमा के लिए जो हमें सुन रही है मेबर्ग से। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद, ये गाना उनके लिए और उनके शोहर जोहब के नाम। और इसी गीत के साथ हम भरेंगे 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। एमओआरए ने टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल बताया कि वीएटी पंजीकरण की सीमा 60 लाख से घटाकर 30 लाख रुपए किए जाने के बावजूद अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच सरकार को 655 मिलियन रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। इस दौरान 8764 नए कारोबार वीएटी में शामिल हुए, जबकि सिर्फ 84 कारोबार बाहर हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सभी कारोबारियों के लिए बराबरी का माहौल बनेगा और अनौपचारिक कारोबार भी औपचारिक व्यवस्था का हिस्सा बनेंगी। 156 किलो गांजा तस्करी मामले में सांसद वेरोनिक लुगोविन आज फिर आदसू के सामने पेश हुई है। प्रधानमंत्री ने कल राज्यसभा में बताया कि वे 2 अगस्त को खुद आदसू पहुंची थी, लेकिन उन्हें अपने वकील के साथ आज फिर बुलाया गया है। उनकी एसयूवी गाड़ी में जांच में गांजे का एक बीज और उसके कुछ अवशेष मिले हैं।

0: वहीं उनके पति गुलशन गोविंद से कल पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने जांच में सहयोग करने और डीएनए नमूने देने पर सहमति जताई। आज फिर से उनसे पूछताछ की जा रही है। पुदुदो में 54 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में 14 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जाक लुई फिडेल को चाकू लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रेजिडेंस सेंटक्लेयर से आरोपी को गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ में उसने विवाद के बाद हमला करने की बात कही। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल होने वाला रसोई का चाकू भी बरामद कर लिया है। लाप्रेरी में हुए सी प्लेन हादसे में पोलैंड के 25 वर्षीय एक पर्यटक की मौत हो गई। विमान के पायलट को बचा लिया गया और गंभीर हालत में एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि उनके कंधे और रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर हुए हैं। विदेश की खबरों में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की फांकुल 9 रॉकेट का एक हिस्सा इस समय चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। यह हिस्सा जनवरी 2025 में प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया। इसका वजन करीब 4 टन है। चंद्रमा से टकराने पर करीब 10 लाख किलोग्राम धूल और मलबा अंतरिक्ष में फैल सकता है। हालांकि ये टक्कर नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगी। नासा ने कहा कि इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बढ़ती हैं शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड इक्वानियो में 54 साल की 54 years old के रामचंद्र कसिगन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम के 4 बजे उन्हीं के मकान इक्वानियो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 4 PM। रॉयल रोड बोबासा में 69 साल की 69 years old के सुरेश रामगुलाम की मृत्यु हो गई है। वे लातूकेनिग पॉइंटसाब के निवासी हैं। लोग उन्हें सुरेश कंट्रैक्टर के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के दौरान एलियंसन बुबासे से उठाई गई और अंतिम संस्कार के लिए इसी समय वाले तिपत की शमशान भूमि ले जाई जा रही है। एलियो स्ट्रीट सीते लोआजो फ्लोरियाल में 77 साल की 77 years old की श्रीमती लक्ष्मी दसिया की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रामजतन, लोग उन्हें देवरानी के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के बल्कि कल गुरुवार को दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान सीते लोआजो फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अली ब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: आपकी पसंद।
2: तीन बजकर 5 मिनट हुए हैं। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम बुधवार 5 अगस्त 2026। और यहाँ पर यह कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए और आप ये कार्यक्रम सुनेंगे 4 बजे तक। जी हाँ, बढ़ते हैं आगे। अगला गाना मुकेश साहब की आवाज़ में और ये गाना खासकर राजन लक्ष्मण जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम लाफ्लोरा। गाना उनके लिए और पूरे लक्ष्मण परिवार के लिए।

3:10 हुए हैं। चलिए इज्जत फिल्म से लिया गया अगला गाना। विद्या जो रहती है यूनियन पर गाना मांग रही है अपने लिए, अपनी बहन सती, सुरेखा, अमृता, सबीना और चाची कुमारी के नाम, लता जी और रफी साहब की आवाज़ों में।

आपकी पसंद। तीन बजकर 16 मिनट हुए हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर मोडालबिया के रहने वाली की अमृता जी गाना मांग रही है। अनीता जी, जी हाँ, गाना वो मांग रही है करुणा, अमृता, कविता, इंदिरा और सभी सुनने वालों के लिए। अनुरोध फिल्म से लिया गया किशोरदा की आवाज़ में।

0: आपकी पसंद।
1: तीन बजकर 23 मिनट हुए हैं दोस्तों, चले बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम सुनने जा रहे हैं अगला गाना सागर फिल्म से लिया गया और ये गाना कमला ढीनू जी की मांग पर, वो रहती है मोताबा और गाना खासकर वो मांग रही है अपने लिए, ढीनू परिवार के लिए, रामधनी परिवार के लिए, साथ में रियांश और आरोही के नाम।

0: की पसंद।
1: सारे 3 बज चुके हैं। चलिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा प्यारा गाना, नया गाना और पॉपुलर गाना, जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से लिया गया, श्रेया घोषाल और साथ में है अरिजीत सिंह। गाना जाएगा खासकर रिहाना के लिए, जो हमें सुन रही है फ्रॉम फिनिक्स।

आने वाला पल चला जाएगा और यादगार बन के रह जाएगा किशोरा की आवाज़ में, और ये गाना जाएगा खासकर रोहित जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं बोबास।

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, 90s का ये खूबसूरत गाना हमने चलाया, मैं खिलाड़ी टू अनारी फिल्म से लिया गया कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, और ये गाना हमारे सभी 90s लवर्स के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर सत्यम शिवम सुंदरम, जी हाँ, और गाना हम चलाएंगे माया जी के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम मोटाई ब्लॉश, और वो कहती है कि सावन का महीना है। तो चलिए गाना आपके नाम हमारे पूरे MBC टीम के लिए भी धन्यवाद आपको। और जितने लोग श्रावण मास मना रहे हैं तो आपको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: On the hour, every hour.
1: Radio Marches.
2: Aye, sunye si biki or se kuchvi gyaptia. Post Lafayette, ke aswaske ilake, Coastal Road or Royal Road. Brado Visitor Center, Mauritius Radio Telescope or MV Investment ke rehne walon ko. Ye suchit kiya jata hai ke kal guruvar 6 अगस्त 2026 सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और लाफ्लोरा के आसपास के इलाके रामसाहाई रोड, बाला रोड, शिबनुत रोड, स्कूल रोड, शोभा लेन, कोतवाहू रोड, बॉम्बे रोड, चमन रोड, रंगलाल रोड और बस्टन रोड के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि कल गुरुवार 6 अगस्त 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सही भी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। चलिए 80s का ये खूबसूरत गाना अलीशा चिनॉय की आवाज़ में और ये गाना जाएगा ब्रिंडा के लिए जो रहती है हैमीबर्ग और इस समय हमें सुन रही है और तबाजी कोकोनट के सभी स्टाफ के लिए उनके लिए भी हम गाना चला रहे हैं जो इस समय काम कर रहे हैं। 3:55 हुए हैं

होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सही भी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। चलिए 80s का ये खूबसूरत गाना अलीशा चिनॉय की आवाज़ में, और ये गाना जाएगा ब्रिंडा के लिए जो रहती है मीबर्ग और इस समय हमें सुन रही है, और तबाजी कोकोनट के सभी स्टाफ के लिए, उनके लिए भी हम गाना चला रहे हैं जो इस समय काम कर रहे हैं। 3:55 हुए हैं

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
2: प्रिय श्रोताओं नमस्कार, आज के इस खेती बाड़ी के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ बालगोबिन बासेनू, वल्गराइजेशन ऑफिसर फारे से। आज कंपोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो कंपोस्ट करने के बहुत तरीके हैं, पर आज के इस प्रोग्राम में सबसे आसान तरीका आपको मैं बताऊंगी। कंपोस्ट किस चीज को कहते हैं? तो जब बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, जो हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, सर कर एक खाद बनती है जो ऑर्गेनिक पदार्थ, न्यूट्रिएंट और माइक्रोब्स से भरा हुआ है, उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट को फल और सब्जियों को उगाने में काम आती है। आर्थिक विकास से हमारे रहन सहन में बहुत बदलाव आई है, जिसे हम बहुत खरीदारी करते हैं, और दुर्भाग्यवश ऐसे बदलाव से बहुत सी वेस्ट मटेरियल हर रोजाना पैदा होता है। हर एक मॉरिशन लगभग 400 केजी वेस्ट हर साल पैदा करते हैं, और इससे हर साल मॉरिशस में लगभग 500,000 टन्स की घरेलू कचरा पैदा होता है। सरकार को बहुत ज्यादा लगते हैं इन कचरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उनको खत्म करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कचरे उठाने के लिए और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए जगह लगते हैं, व्यवस्था लगते हैं और बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। यहाँ वहाँ पड़े हुए कचरे ना सिर्फ लैंडस्केप को खराब करते हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और एनवायरनमेंट पे भी जरूर भारी पड़ता है। तो इसके लिए कुछ अच्छा करना बहुत जरूरी है। सभी घरों में बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होते हैं, वो एक अच्छी नेचुरल रिसोर्स होता है। इन बायोडिग्रेडेबल कचरों को हम कंपोस्टिंग के द्वारा रिसाइकल करके कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट एक ऐसी पदार्थ है जो कचरों की डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से, जहाँ पर मिट्टी में बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोब्स, कीड़े मकोड़े द्वारा से बनती है। इन जीव जंतु को बहुत सारे हवा और गर्मी चाहिए अपने पूरे लाभ दिखाने के लिए। अंत में एक अच्छी खाद मिलती है जो नेचुरल, इकोलॉजिक और ऑर्गेनिक भी है, जिसे

हम कृषि विकास में उपयोग कर सकते हैं, जिससे मिट्टी के स्ट्रक्चर, उसके फर्टिलिटी और पानी रखने की क्षमता को बढ़ाता है। कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं, पर हर एक तरीके एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि अपने आंगन में भी कर सकते हैं, छोटे आकार में या चाहे तो बड़े कमर्शियल आकार में भी आप कर सकते हैं। अपने यहाँ कंपोस्ट बनाने के लिए आप अपने जगह ठीक तरीके से ही चुनें। कौन सी सिस्टम में अपने कचरे को डालना है, कौन सी मटेरियल को चुनना है, कैसे चुनना है, इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखें। कंपोस्ट बनाने के लिए एक गुप्त जगह जो एक्सेसिबल भी हो, थोड़ा छांव में हो, ही ठीक होता है। आप अपने कंपोस्ट बिन प्लास्टिक के ले सकते हैं, लकड़ी से या फिर कंक्रीट ब्लॉक्स से भी आप बना सकते हैं। प्लास्टिक का बिन आसानी से मार्केट में मिल जाता है, प्रैक्टिकल भी है और ज्यादा दिनों तक भी चल सकती है। आप इकोनॉमिकल शेप कंपोस्ट भी अपना सकते हैं, जिसे आप अपने कचरे आसानी से ऊपर से ही डाल सकते हैं। इनके एक ढक्कन नीचे की तरफ भी होते हैं, जहां से आप तैयार हुए खाद को आराम से निकाल सकते हैं। एक अच्छे तरह ढके हुए कंपोस्ट बिन गर्मी को अंदर बढ़ाता है और चूहे से आपका कंपोस्ट को भी बचाता है। कचरे को चुनने के बाद कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जिन्हें हम कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रसोई का कचरा, जिनमें सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं, सब्जियों की पत्ती, मुरझाए और खराब हुए फल या फिर सब्जी, अंडे के छिलके, कॉफ़ी का वेस्ट जिसे हम कॉफ़ी ग्राउंड्स कहते हैं, कागज़ के फिल्टर, चाय की पत्तियाँ, चाय के वेस्ट और जो हर्बल चाय जिसे हम चिजान भी कहते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें घर के कचरे भी होते हैं, जैसे कि कर्टन, बिना छिपा हुआ कागज़, लकड़ी का जो डस्ट होता है जिसे हम सोडस्ट कहते हैं। आप बगीचे के कचरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें हैं सूखी पत्तियाँ, सूखे फूल, हरे पत्ते जिसे हम टी ट्रिमिंग कहते हैं, कटी हुई घास हम गाजों भी कहते हैं, और जो डालियाँ भी हम डाल सकते हैं, और जो भी फल आपके पेड़ से गिरे हुए हैं वो भी आप डाल सकते हैं। दूसरे और कुछ ऐसी सामान हैं जिन्हें कंपोस्टर में नहीं डालनी चाहिए, वो हैं प्लास्टिक के बैग या प्लास्टिक की जो भी वस्तु होते हैं, प्लास्टिक का धातु जो डिब्बे होते हैं, बोतल, टूटे हुए कांच, तेल या फिर जो भी ग्रीसी पदार्थ होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बना होता है, और बचे हुए मांस मछली के भोजन नहीं डालते हैं। बचा हुआ खाना, डायपर्स, वाइप्स, सिगरेट के टुकड़े भी नहीं डालते हैं। सिंथेटिक कपड़े, घरेलू पशुओं के एक्सक्रीमेंट जैसे कि बिल्ली और कुत्ते होते हैं, उनके एक्सक्रीमेंट नहीं डालते हैं। न्यूज़पेपर और जो भी मास्क इस्तेमाल किया जा चुका है उसे नहीं डालते हैं। जो भी लकड़ी, ट्रीटेड वुड जैसे हम करते हैं, और घास जिनमें बीज लग चुके हैं, हम उसे नहीं डालते हैं कंपोस्टर में। हम ऑर्गेनिक कचरे को उनकी पानी की मात्रा जिसे हम वाटर कंटेंट कहते हैं, उसके आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले होते हैं हरी वस्तुएं जैसी रसोई का कचरा, कटी हुई घास, इनमें आमतौर पर बहुत अधिक नाइट्रोजन और पानी होता है। ऐसे वस्तुएं बहुत जल्दी डिकम्पोज होती हैं, डिकम्पोजिशन के दौरान एक पानी छूटती हैं और बहुत बदबू भी आ सकती हैं। और दूसरी ओर है सूखी हुई ऑर्गेनिक पदार्थ जैसे लकड़ी की डालियाँ, सूखी पत्तियाँ, कागज़, कॉटन, जो कार्बन से भरपूर और पानी की मात्रा में बहुत कम होती हैं, और इसीलिए इस प्रकार के सामग्री को डिकम्पोज होने में थोड़ा अधिक समय लगता है। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस पानी और हवा की उपस्थिति में माइक्रोब्स द्वारा स्वाभाविक रूप से होती है। तो एक सफल कंपोस्ट पाने के लिए ये

महत्वपूर्ण है कि हम विभिन्न प्रकार के कचरे को एक साथ मिलाएं, हरा कचरा, सूखा कचरा, कार्बन और नम कचरा अलग अलग आकारों में। सुझाव दिया जाता है कि 2/3 सूखी सामग्री के साथ आप 1/3 हरी सामग्री मिलाएं, ये सब अच्छे डिकम्पोजिशन के लिए आवश्यक हैं। कचरे को चुनने के बाद जो कचरा आकार में बड़ा और सख्त होता है उसे डिकम्पोजिशन को बेहतर बनाने के लिए काटना या पीसना चाहिए। इसके साथ प्रिय श्रोताओं, मैं आज का प्रशासन समाप्त करती हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप फागे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपके सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अगले सप्ते फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।

0: Kiss. जी हम जानते हैं कि आप लोग कितने खूबसूरत हैं, इसीलिए हमारे साथ दे रहे हैं प्रोग्राम अंताक्षरी में 5:15 हो गए हैं।
1: अंताक्षरी अंताक्षरी

0: प्यारे प्यारे श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। बुधवार की है शाम, उषा और रोशन आए हैं आप लोगों के साथ।
1: जी हाँ दोस्तों, नमस्कार आप सबको, कैसे हैं आप?
0: हम जानते हैं कि आप लोग एकदम मस्त जबरदस्त हैं, क्योंकि समय आ गया है अंताक्षरी प्रोग्राम का और आप संख्या बड़ी संख्या में अपने रेडियो सेट के करीब है।
1: बिल्कुल।
0: और बता दीजिए बहना कि आज वो भाग कैसे ले सकते हैं? तीन माध्यम है।
1: आप फ़ोन कर सकते हैं 1402-8085, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना खेल सकते हैं। और ज़्यादा आप यहाँ पर भी हमें देख सकते हैं लाइव टिकटॉक, क्योंकि जैसे कि हमने कहा हर बुधवार हम लाइव टिकटॉक भी करते हैं, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं और खेल भी सकते हैं। कैसे? जवाब जो है आप लिख कर भेजिए और मैसेजेस आप भेज सकते हैं ऑन 5251705, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू सो मच।
0: जी हाँ, इतने सारे माध्यम आपको बहना ने बता दिया है, अब आप चूज कीजिए, लेकिन आपकी आवाज़ भी हम सुनेंगे तो ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए, आज का जो विषय है, कल तो किशोरदा का जन्म दिवस था, है ना? बहुत सारे गाने चले रेडियो मॉरिशस पर, रेडियो मस्ती पर, रेडियो मनोरंजन पर, तो ज़्यादा कठिन नहीं होगा आपका पहला गाना गाने के लिए। तो पहला गाना आप गाएगा अवश्य किशोरदा पर, और जो दूसरा जो गाना आपको गाना है वो धुन राउंड पर होगा। और धुन राउंड पर हर एक गाना हम बजाएंगे जिसका जन्मदिवस, कलाकार का जन्मदिवस अगस्त महीने में है। और आज का जन्मदिवस जो बर्थडे स्टार है वो तो है काजोल। जी हाँ, काजोल का जन्मदिवस है। तो आपको एक हमने हिंट दे दिया है, तो जल्दी जल्दी नंबर मिला लीजिए 4028।

0: पांच पर
1: 4028085 आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर एक फर्स्ट कॉलर है उनको देखते हैं उनको देखते सुनते हैं है, हेलो हेलो
2: हेलो नमस्ते उषा जी नमस्ते रोशन जी
1: नमस्ते
2: आप कैसे हो
0: हम ठीक हैं जी
1: बिल्कुल ठीक हैं
0: आप कैसी हैं
2: मैं भी ठीक हूँ
0: श्रोताओं को
2: बता दूं सुहाना है
0: बिल्कुल सुहाना ही मौसम में कौन हमसे बात कर रही है
2: जी मैं सरिता हूँ
0: हाँ, सरिता जी कैटरबोन से श्रोताओं को पता होना चाहिए चलिए सरिता जी पहला गाना किशोरदा पर आप प्लीज गाइए
2: किशोरदा
0: हाँ जी पहला गाना आपका किशोरदा पर होना चाहिए और दूसरा गाना हम म्यूजिक चलाएंगे आप पहचानिएगा ओके गाइए
2: जिस ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा बर्बादी की तरह

0: बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया है
1: जी, धन्यवाद।
0: ये रहा आपका पहला गाना
1: जी,
0: और इस गाने के लिए किशोरदा को मिला था बेस्ट सिंगर का अवार्ड, बहन आपको याद है ना, अमानुष फिल्म का गाना। तो चलिए, ये रहा आपका बहुत ही सुंदर सा गाना सरिता जी। अब आप, आपको देखेंगे, आज है काजोल का जन्म दिवस है ना, तो चलिए काजोल का जन्म दिवस है आज, बर्थडे ऑफ काजोल, तो एक धुन उन पर आप गाना पहचानिए और गाइए। ओके, सुनिए।

0: जी सरिता जी, याद आया आपको?
1: नहीं याद
0: आया? एक गाना इतना पॉपुलर गाना है, अगर उषा जी को आप सुनेंगे। नहीं जी, ये तो नहीं, ये तो काजोल कहाँ है, इसमें तो उर्मिला है, नरसिम्हा फिल्म। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी याद नहीं आ रहा,
0: याद नहीं आया, लेकिन उषा जी आपको यहाँ पर है याद दिलाने के लिए, लेकिन आपके लिए ये है। ये है आपके लिए, चलिए आप सुनिए।
2: मेरे ख्वाबों में जो
0: आए, उससे कहो तो कभी सामने तो आए,
2: कभी सामने तो आए, और हम सामने आ गए क्योंकि यहाँ पर लाइव टिकटॉक भी हम कर
1: रहे हैं। बहुत खुशी हुई आपकी, आप लोग सामने आए, मैं आपको देख रही थी।
0: ओ, टिकटॉक पर?
1: टिकटॉक पर,
0: वेरी गुड, क्या बात है। ऐसे ही आप देखते रहिए और भाग लेते रहिए। धन्यवाद, बाय।
2: धन्यवाद। यहाँ कुछ लोगों ने मैसेज भेजा है, और
0: देखते हैं।
2: हेलो, हाय हाय हाय
0: हाय, बिल्कुल हेलो।
2: दिनेश गोपी है, हेलो टू यू।
0: माया
2: रामडोस है, हेलो, कैसे हैं, कैसी हैं आप, नमस्ते। नर्मदा राम स्वामी, हर हफ्ते वो ये कार्यक्रम देखती है
0: टिकटॉक के द्वारा।
2: सान जो है, हेलो सान। शोभा जी है, संगीता नमस्ते आपको, और हम आपको कहेंगे प्लीज ये जो लाइव है आप उसको शेयर करो, लाइक करो, और ये जो पेज है उसको फॉलो करो,
0: और ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे।
2: और कैसे कहते हैं वो, लाइक भी करो, स्क्रीन को ऐसे करो और हमारा जो लाइक है वो बढ़ेगा। थैंक यू। और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कौन है
0: लाइन पर, कौन है सामने तो आइए। हेलो
2: हेलो
3: हेलो, नमस्ते भैया, उषा बहना,
0: नमस्ते इंदिरा बहन,
2: नमस्ते इंदिरा जी, कैसी हैं आप?
3: ठीक है।
0: चलिए, आप तो आ गई हैं, लेकिन किशोरदा का गाना कौन सा होगा, गाइए।
3: मेरे महबूब खयामत

सुंदर सा गाना आपने गाया मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से, बहुत अच्छा लगा। तो अब आपके लिए जो गाना हम चलाएंगे वो विजयंतीमाला जी पर होगा और उसका जन्मदिवस भी अगस्त महीने में ही पड़ता है। ओके, सुनिए और पहचानिए ये धुन।

0: पहचान पा.
1: मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया.
0: मैं क्या करूँ राम, बुढ़ा मिल गया.
2: जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, क्या बात है. आप बनती हैं फर्स्ट ऑफ द वीक इंदिरा जी, बहुत बधाई हो आपको.
1: थैंक यू आपको.
0: बाय बाय.
2: इस गाने में अगर आप राज कपूर का चेहरा देखेंगे तो हंस पड़ेंगे.
0: यहाँ पर वो लोग जवाब ही दे रहे हैं. हेलो विक्सन, कैसे हैं आप? और माया रामदोस ने कहा संगम, सही कहा आपने, फिल्म संगम.
2: क्या बात है.
0: चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन है. हेलो
2: हेलो. ओह ये तो आराधना का गाना है, लगता है कि नीला जी हैं ये तो. हेलो
3: हेलो रोशन,
2: जान गया मैं, आप अपने अपने गाने के साथ आती हैं. प्लीज रेडियो को आप बंद कर दीजिए प्लीज.
3: हाँ जी
2: नीला जी, कैसी हैं आप?
3: रोशन जी एंड उषा जी, मैं ठीक हूँ. नमस्ते.
0: नमस्ते.
2: नमस्ते जी.
0: पूछने से पहले उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ और हम खुश हुए ये सुनकर कि आप ठीक हैं.
2: आज आप ठीक हैं और ऐसे ही रहना चाहिए आपको. ओके तो चलिए आप नीला जी किशोदा का गाना गाइए प्लीज, हम दोनों के लिए और पूरे मॉरिशस भर के लिए. गाइए.
3: हाँ जी.
2: हाँ गाइए.
3: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, दूर कहीं हमसे ना हो जाए. अंताक्षरी दूर नहीं होना है.
2: हाँ बिल्कुल. हाँ जी, रूप तेरा मस्ताना, अंताक्षरी का प्रोग्राम भी है मस्ताना एकदम. ये रहा आपका पहला गाना. अच्छा अब आपके लिए ये गाना है,
0: सुनिए और पहचानिए.
2: और इस ये गाना जो है अनीता राज पर फिल्माया गया है, उसका भी जन्म दिवस इस महीने में है. ओके सुनिए, हमने आपको हिंट दे दिया है.

0: कौन सा गाना है नीला जी? लता जी का गाना
1: नहीं
0: है?
1: आती है? नहीं नहीं।
0: अरे बाप रे, अगर उषा जी को सुनेंगी तो ही ओ माय गॉड।
2: हमको सुनने से पहले यहाँ पर टिकटॉक किसी ने जवाब ही दे दिया, ऐसा समा ना होता।

0: बिल्कुल, हमारे श्रोता जो हैं हमारे हमराह ही हम सफर है, और ये गाना आप नहीं पहचान पाए नीला जी, क्या
1: नहीं
0: करें?
1: पहचानी, नहीं
0: क्या करें, कोई बात नहीं,
1: एक लेकिन दूसरा दू
2: नहीं
0: जी, ये क्या आप तो क्या कह रहे हैं, दादी अम्मा निकली आप तो ओके नीला जी, अगले सप्ताह
1: ओके बाय बाय, मैं खेल रही हूँ आज ही।
0: हाँ जी, मजाक कीजिए। अच्छा, धन्यवाद,
1: ओके थैंक यू।
2: करें एक और कॉलर ले,
0: देखें आप जो कहना चाहें, आप अपनी मर्जी की मालिका है।
2: यहाँ पर कौन है? हेलो
0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते उषा जी, नमस्ते रोशन जी,
0: नमस्ते श्यामा जी।
1: हाँ,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: ओके श्यामा जी, किशोदा को पसंद करती हैं आप?
1: जी हाँ।
0: तो गाइए प्लीज।

0: बहुत अच्छा, सुंदर सा गाना आपने गाया। ये शाम बिल्कुल मस्तानी है, अंताक्षरी प्रोग्राम है, आप लोगों का साथ है और उषा जी की आवाज है, तो शाम तो मस्तानी ही होने वाली है
1: और हमारे आप भी है रोशन जी, आप भी है यहाँ
0: जी, बिल्कुल हम सब साथ हैं, इसीलिए तो मस्तानी मौसम है, मस्तानी शाम है ना। अब देखेंगे श्यामा जी जितनी तर पुराना गीत कहाँ जो आपकी किस्मत में है वही तो। सुनील शेट्टी का जन्म दिवस भी इसी महीने में है।
2: तो उस
0: अयोबाप नहीं, ओ अम्मा अयोबाप नहीं। चलिए ये गाना बहुत ही पॉपुलर है, आप जान जाएंगी झट से। ओके सुनिए।

0: बहुत आसान है श्यामा जी, बताइए
1: ना। कजरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो।
0: देखा आपने, और आपने कहा आयो बाप।
1: ओके, नया गाना मुझे नहीं मालूम।
0: लेकिन ये कैसे पता चल गया आपको?
2: चलिए धन्यवाद आपको,
0: धन्यवाद आपको।
1: ओके बाय
0: बाय। स्टॉप ऑफ द वीक आप बनती हैं। जितनी बार ये गाना सुनेंगे ना उषा जी, उतना ही कम होगा। कितनी बार आपने गा लिया ये गाना है?
2: बहुत सी बार। और यहाँ पर मीनाक्षी नमस्ते बोथ ऑफ यू, नमस्ते आपको
0: मीनाक्षी जी।
2: और इंदिरा लॉटन भी है। और तरुण राम कैसे हो, थैंक यू सो मच आप आए। लेकिन आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग इस पेज को लाइक कर रहे, फॉलो कर रहे, क्योंकि ये जो नंबर है ना वैसे का वैसा ही
0: वैसा
2: रह रहा
0: ही है।
2: प्लीज हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि रेडियो मॉरिशस जो है हर जगह हम नहीं सुन सकते हैं,
0: बिल्कुल इसीलिए
2: फ्रीक्वेंसी की वजह से।
0: हाँ।
2: लेकिन यहाँ पर हम आपका काम हमने आसान कर दिया है
0: जी। हाँ।
2: आप हर जगह पर जहाँ पर भी है आप हमें सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं,
0: देख भी सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है बहना।
3: तेरा गहना सिंगार तेरा,
0: क्या करें अगर एक स्त्री सिंगार न करें तो कैसे लगेगा,
2: कैसे लगेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। हेलो
0: हेलो जी, नमस्ते।
4: नमस्ते उषा जी।
2: नमस्ते उदय जी।
0: उदय भाई फ्रॉम व्याजीपोस्ट।
4: कैसे मिस करेंगे हमारे जो किशोर दा है ना, कल जाके जाना,
0: उसका जन्म दिवस है
4: अक्टूबर को।
0: तो चलिए अब उनके उनका गाना गाइए प्लीज।
4: एक श्री कृष्ण गाना है।
0: अच्छा गाइए।

0: किसको कहेगा तू मैया, एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। ओके
1: बहुत अच्छा उदय भाई, बहुत सुंदर आवाज में आपने ये गाना गाया है, बहुत अच्छा लगा। अब आपका गाना चल पड़ा और सैफ अली खान का भी जन्मदिवस अगस्त महीने में ही है, तो चलिए उनका गाना हो जाए, सुनिए।

0: आसान सा गाना है उदय भान।
1: आगे याद नहीं जा रहा है,
0: नहीं याद आ रहा। हाँ
1: चांद से पर्दा कीजिए।
0: हाँ जी उषा हंस पड़ी।
2: मैं क्यों हंस रही हूँ, ये जो म्यूजिक आता है ना बीच में,
0: यही म्यूजिक है जो

0: बहुत अच्छा उदय भाई, बहुत अच्छा, क्या पहचाना आपने, बहुत धन्यवाद, अगले सप्ताह मुलाकात होगी, बाय बाय
1: बाय।
2: यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, जल्दी देखते हैं लाइन यहाँ
0: टिकटॉक पर
2: हाँ हाँ वो तो है। शोभा जी गाना गाने के लिए बोल रही हैं, देखते हैं अगर समय मिला तो हम गाएंगे,
0: क्यों नहीं।
2: हेलो सुभाष कटवाल जी, यश ये जो प्रोग्राम है फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन गाना आप डेडिकेट कर रहे हैं माया धनु सुरेखा और जो रहते हैं कोडमास पावे रोनी अचाना, आपको भी हम कहते हैं हेलो हाय
0: जी।
2: चलिए थैंक यू फॉर शेयरिंग और लाइक करो है?
0: बिल्कुल धन्यवाद। टिकटॉक के जरिए देखिए कितने लोग जुड़ गए हैं, नए नए नाम हमें सुनने को मिल रहे हैं,
2: बिल्कुल
0: बहुत अच्छा। चलिए अब देखते हैं अगर कोई और श्रोता है तो। हेलो
3: रोशन जी और उषा जी को आशा जानो की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार आशा जी, कैसी हैं आप?
3: मैं अच्छी हूँ और आप दोनों कैसे हैं?
0: ठीक हैं जी। चलिए आप किशोरदा की जबरदस्त फैन हैं।
3: जी हाँ, मैं तो उनकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ।
0: तो चलिए श्री गणेश कीजिए।

बहुत अच्छा आशा जी, शराबी फिल्म का गाना आपने गाया है, बहुत अच्छा लगा। अब आपके लिए जो म्यूजिक है वो अरबाज खान पर है, और अरबाज खान का जन्म दिवस भी इसी महीने में ही है। ओके, सुनिए।

0: बातों का दीवाना दीवाना दीवाना।
1: ओके आशा
2: जी, बहुत अच्छा आशा जी, बहुत धन्यवाद, आपने गाना पहचान लिया है और आपने गाया भी, बहुत धन्यवाद आपको, ऐसे ही आप गाती रहे, शुभ संध्या आपको भी,
1: शुभ संध्या आपको। और जैसे ही लाइन मिले, चलो कोई बात नहीं, एक दो लाइन, चार पांच लाइन हमने गा लिया जल्दी जल्दी।
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: ओह माय गॉड, क्या करे, ऐसा मौका बार बार
2: बार बार नहीं आता,
1: नहीं आता है ना, तो
2: एक बार एक सप्ताह में आता है ना, इसीलिए।
1: हेलो
2: हेलो,
3: नमस्ते उषा जी और आसान जी।
2: नमस्ते कविता जी, सैपिया से।
1: नमस्ते आपको।
2: आपका ये ट्रेडमार्क है हंस के आना है, मुस्कुरा के बात करना, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए कविता जी, पहला गाना किशोरदा पर प्लीज गाइए, पहला गाना किशोरदा पर आप गाइए प्लीज।
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है, आपने क्या गाना गाया। एक बहुत ही अलग अंदाज में, फिल्म अंदाज का।

0: गाना गाया आपने, बहुत अच्छा
1: कविता।
0: चलिए अब दूसरा गाना आप सुनिए, ये जो है विजयंती माला जी पर आधारित है ये गाना, उसका जन्मदिवस है, तो सुनिए।

0: जी याद आया आपको, बहुत
1: नहीं आ रहा है।
0: नहीं आ रहा है आपको?
2: हो रे जब जब जब तेरी ओ रे जब जब
1: सुन
2: तेरी
1: तेरी
2: कवारियों का दिल
0: मचले,
2: मचले। ओके
0: कविता का
1: कवारियों का
0: दिल
1: दिल
0: मचले जिन
1: मचले
0: मेरी।
1: मेरी
0: कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश की है कविता जी, यही तो हमें चाहिए
1: हाँ।
0: ना।
1: बहुत बहुत
0: ओके,
1: धन्यवाद,
0: बहुत धन्यवाद आपको भी, बाय
1: बाय।
0: बाय। आप तो झूमने लगी उषा जी यहाँ तो आप भंगड़ा कर रही हैं जब ऐसे कंधे झूमते हैं हिलते हैं तो
3: कैसे ना नजर,
0: तो मैं कहूँ आपको भंगड़ा पाले
2: भंगड़ा पाले। हेलो
4: हेलो, नमस्कार उषा जी, नमस्कार रोशन जी,
0: नमस्कार संध्या जी।
4: संध्या जी
0: कैसी हैं? संध्या जी ठीक हैं आप?
4: जी ठीक हूँ, और आप लोग कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं
2: संध्या
0: जी। आपकी मीठी आवाज में किशोरदा का एक गाना हो जाए प्लीज
4: जी।
0: ओके
4: आपकी आंखों में कुछ

0: कुछ।
1: सुंदर सा गाना आपने गाया घर फिल्म का, बहुत ही अच्छा लगा। इस दौर की नवयुवती हैं आप, लेकिन इतनी जानकारी रखती हैं, बहुत अच्छा। तो चलिए, ये गाना आपका था किशोरदा पर। अब जो गाना चलेगा आदित्य नारायण पर रहेगा, उसका भी जन्म दिवस, उदित नारायण का सुपुत्र आदित्य नारायण, आप उन्हें जानती हैं ना। तो चलिए ये गाना, इस धुन को पहचानिए और गाइए।

0: याद आया आपको? हाँ,
1: छोटा
0: अरे
1: बच्चा
0: बाप रे,
1: जान के ना कि ना कोई आंखें दिखाना रे, डूबी डूबी डब डब, डूबी डूबी डब डब,
0: क्या
1: सही
0: बात है।
1: पहचाना आपने।
0: समझ के
1: हाँ
0: तुमको
1: ना समझाना रे, डूबी डूबी डब डब।
0: बहुत अच्छा है संध्या जी, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। थोड़ा कठिन था लेकिन आपने पहचान लिया, बहुत अच्छा लगा।
1: नहीं,
0: धन्यवाद
1: बहुत
0: आपको,
1: आसान था। ओ
0: आपके लिए आसान होगा।
1: क्या
0: ओ क्या बात,
1: बात।
0: अच्छा धन्यवाद
1: हमारे दौर
0: आपको।
1: का गाना है, जब हम बचपन
0: जब
1: बचपन
0: आप
1: में।
0: बचपन में थी तो।
1: हाँ
0: ओके धन्यवाद आपको,
1: ओके, बाय
0: बाय।
1: बाय, थैंक यू।
0: छोटा बच्चा बड़ा हो गया उषा जी।
1: बड़ा हो गया एकदम। और यहाँ
0: हाँ
1: पर अंजू है, हर्षा
0: हाँ
1: वर्ष जगन्नाथ है।
0: ओ
1: हर्षा ने
0: वशिष्ठ,
1: सही जवाब दिया, छोटा बच्चा ही। हाँ यही
0: छोटा
1: गाना है,
0: बच्चा, बहुत ही अच्छा
1: छोटा
0: लगा।
1: बच्चा। और देखते हैं यहाँ पर कौन है।
0: कौन
1: हेलो,
0: है? चलो हेलो।
1: हेलो भाई जी, नमस्ते। उषा बहन को भी नमस्ते।
0: नमस्ते
1: आपको
0: आपको
1: जी
0: अमृता जी।
1: भाई जी,
0: ओके अमृता जी, चलिए आपका गाना हो जाए किशोरदा पर। अरे वाह क्या बात है गाइए, अच्छा।

0: खाने को हो हो हो हो।
1: बहुत अच्छा मुनीम जी का गाना देवानंद साहब पर,
0: जी
1: बहुत अच्छा लगा। अब आप देखेंगे आप कितने पानी में उतरी हुई हैं। चलिए सुनिधि चौहान जो बहुत ही बढ़िया गायक गायिका है, उनका जन्म दिवस भी अगस्त महीने में है, तो ये गाना

0: याद आया?
1: रुके रुके रुके रुके फूल,
0: हाँ
1: रुके रुके फूल मसे
0: रुकी रुकी से शुरू होता है, अगर उषा गाएंगी तो आपको पता चल जाएगा। गाइए उषा,
2: रुक

0: क्या बात है।
1: ओके ओके अमृता जी, बहुत
2: धन्यवाद,
0: धन्यवाद, आपने पहचान लिया और उषा जी ने सहायता कर दी आपकी। बाय बाय, बाय बाय। ये तो बहुत खुश हो गए अमृता जी, जब उनको पता चल जाता है ना तो उनका खुशी, उनकी खुशी का समा नहीं वो उड़ाता। हम भी चाहते हैं कि हमारे श्रोता जो है उनकी दोस्ती खुशी से हो जाए।

0: चलिए, ज्यादा समय नहीं रहा हमारे पास, वैसे 10 मिनट और।
1: हाँ जी।
0: और यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते।
2: हेलो नमस्ते रोशन जी, नमस्ते।
1: देवी जी,
0: नमस्ते।
1: देवी जी हाईलैंड से आप बात कर रही हैं ना?
2: हाँ
1: जी बिल्कुल। तो चलिए आपका पहला गाना किशोरदा पर हो जाए।
2: हाँ। मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा पूरा रहता है।
1: बहुत अच्छा गाना आपने गाया है, पड़ोसन फिल्म का गाना है ना, बहुत अच्छा लगा। चलिए ये गाना हो जाए आपके लिए। और ये जो गाना है फिल्माया गया है अदनान सामी पर, उसका भी जन्म दिवस अगस्त महीने में ही है। बहुत आसान है, आप तो हंस रही हैं। नहीं जानती हैं आप उनको? जानती तो हैं।
2: गाना नहीं आ रही है अभी
1: तो गाना भी आया ही नहीं है, म्यूजिक कैसे आपको पता चलेगा? सुनिए सुनिए। बहुत आसान है।
2: नहीं आ रहा है। कोई और गाना है जो मैंने सोचा था, वो नहीं है।
1: नहीं, लेकिन लिफ्ट करा दी आपने, सुना है ना?
0: हाँ।
1: गा दीजिए उनके लिए बहना। तेरी ऊंची शान है मौला। लिफ्ट करा दे। हाँ जी, देखिए आप अगर टिकटॉक में हैं तो आप उषा जी को देखेंगे कि कैसे लिफ्ट कराती हैं वो।
2: देखा है।
0: यहाँ पर हर्षा जो है हर सवालों का जवाब दे रही है। थैंक यू हर्षा फॉर पार्टिसिपेटिंग।
1: हाँ क्यों नहीं। ओके धन्यवाद। बाय।
0: ओके बाय।
1: हर्षा जी को हम देख, हर बार आप सही जवाब दे रही हैं और हम
0: नहीं। ये उनको पता नहीं है,
1: पता
0: उन्होंने
1: नहीं है।
0: कहा तासे
1: तासे। ओ हर्ष की बात है कि वो भाग ले रही है।
0: तो चलिए एक और कॉलर।
1: हाँ जी चलिए देखते हैं कौन है।
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
3: हेलो जी नमस्कार।
1: नमस्कार। ये
0: अभिषेक,
1: तो अभिषेक भाई है। कैसे हैं आप अभिषेक भाई?
3: हम ठीक हैं, और आप दोनों कैसे हैं?
1: हम भी ठीक हैं जी। तो चलिए आपका गाना हो जाए किशोरदा पर।
3: ओके
1: गाइए।
3: क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हो बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ हाँ हाँ यही प्यार है।
1: बहुत ही अच्छा, और आपने गाया रोके

0: फिल्म का गाना। और चलिए आपके लिए अब हम बजाएंगे ये गाना जो आधारित है सैफ अली खान पर, उसका जन्म दिवस अगस्त महीने में है। बहुत आसान है अभिषेक भाई, सुनिए।
1: जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले क्या यही है।
0: यही तो है, आप गाइए प्लीज। गाइए।
1: जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले ओले ओले गाऊं ताराना यारा झूम झूम के हाले हाले ओले ओले ओले ओले ओले ओले मुझको लुभाती है जवानिया मस्ती लुटाती जिंदगानिया। आगे नहीं मालूम।
0: मस्त पवन सा ये दिल डोले ओले ओले, बहुत ही बढ़िया, क्या गाना गाया आपने।
1: थैंक यू
0: सो मच। ओके बाय।
2: और हमें याद है जब ये आइसक्रीम आया था नया नया, सोबे ओले, सब लोग ऐसे चिल्लाए थे सोबे ओले ओले,
0: यही गाना गाते थे ना। वो जमाना कुछ और था,
2: कुछ और था जी, बिल्कुल। चलिए एक और कॉलर हम लेंगे, लास्ट कॉलर,
0: चलिए देखते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्ते रोशन जी, उषा जी।
2: रेडियो सेट को आप
3: मैंने बंद
0: बंद कर दिया।
2: नमस्ते आपको।
3: हाँ नमस्ते।
0: ओके तो चलिए मीनाक्षी जी, किशोरदा का कोई गाना हो जाए।
3: ओके
0: गाइए।

0: खुद पे शर्माए हुए चांदनी रात में।
1: सुंदर सी आवाज में सुंदर सा गाना मीनाक्षी जी ने गाया, बहुत
0: जी
1: अच्छा लगा। अब आपके लिए ये गाना है, अनीता राज अभिनेत्री है, ओ मत कीजिए आप, सुनिए तो सुनिए तो सही। पहले ही आप बोल रही हैं नहीं नहीं, सुनिए तो सही, सुनिए।
2: चलिए समय नहीं है।
0: ओ तो सी।

0: ओ नो, आप गाना जान पाए
1: और आपने कहा ओ
0: नो
1: ओके बधाई हो आपको,
2: गाना नहीं जानते ना,
0: इसीलिए कहते हैं ना नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ।
1: यस बिल्कुल, पहले आप समय को न जाने दें लेकिन अपनी चांस भी तो आपको लेना है ना। धन्यवाद आपको मीनाक्षी जी, बाय। 5:51 हो गए हैं उषा जी,
0: और
1: क्या करें,
0: हम एक गाना गाएंगे
1: ओके,
0: और फिर आज का जो प्रोग्राम है यही पर समाप्त करेंगे।
1: चलिए टिकटॉक पर किसने लॉस्ट में हमें मैसेज भेजा है,
0: टिकटॉक पर लास्ट वही है शोभा जी, वो भी जवाब दे रही हैं, सान है और कितने सारे लोग जुड़ चुके हैं।
1: ओके, तो कौन सा गाना आपने चुना है अपने श्रोताओं के लिए आज?
0: वो है मेरे कयामत, मेरे महबूब कयामत, अगर I'm not mistaken, वो शोभा जी हैं जिसने कहा ये गाना
1: गाने के लिए
0: और किशोरदा का गाना है, सो होप यू विल एंजॉय।
1: मिस्टेक्स गाइस,
0: तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनो

0: बहुत अच्छा, लेकिन समाप्त हो गया?
1: समाप्त हो गया।
0: कोई बात नहीं, इस गाने को आप गुनगुनाते रहिए और गाते रहिए। ये जो गाना है किशोर दा का गाना था और वन ऑफ द फेवरेट ऑफ उषा जी।

0: किसी ने कहा है
1: हर्षा ने क्या कहा? हर्षा ने
0: माँ सरस्वती बसती है आपके गले में,
1: गले में। बिल्कुल, बहुत अच्छा, क्योंकि माँ सरस्वती को बसने से पहले गले में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, है ना।
0: अमिका हेलो टू यू, एंजल रोजिदा हेलो, ओके वेलकम शोभा जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों ने साथ दिया, और वैसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वेंसडे को। और
1: चलिए, आपका अगला कार्यक्रम कब रहेगा अपने श्रोताओं के लिए बता दीजिए आप।
0: हमारा जो कार्यक्रम है आज है दिलों की आवाज प्रोग्राम ऑन आरएम फ्री रेडियो, लेकिन शायद हम लाइव टिकटॉक करेंगे भी या नहीं, लेकिन फिर भी आप जुड़े रहिए हमारे साथ और खूबसूरत 80s और 90s का गाना एंजॉय कीजिए, और आपको भी हम कहेंगे तहे दिल से धन्यवाद रोशन जी।
1: धन्यवाद उषा जी आपको। और अगर आप लोग रेंज मनोरंजन ट्यून करेंगे फ्राइडे को, तो आप भोजपुरी में कार्यक्रम हमारे साथ दे सकते हैं कलाकार की बात।
0: जी तो विषय आपने सुन लिया, और यहाँ पर शैलिंदर गिल है जो मॉरिशस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रोग्राम है हमेशा वो सुनते रहते हैं। चलिए थैंक यू आपको सरोज को हम कहेंगे धन्यवाद, अंजन बासनेट धन्यवाद आपको, वैसे अगर हम लाइव करते रहेंगे
1: तो ये
0: समाप्त नहीं होगा। थैंक यू सो मच,
1: ओके बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि आप लोगों को,
0: शुभ रात्रि,
1: बाय।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 5 अगस्त की तारीख शाम के ठीक 6 बज रहे हैं। समाचार सुनिए। नमस्कार, शाम 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लाप्रेरी में सी प्लेन हादसे के बाद जांच तेज, नेशनल कोस्ट गार्ड ने मलबे की तलाश जारी रखी और दुर्घटनाग्रस्त विमान को बाहर निकालने का अभियान चलाया। इस बीच 21 वर्षीय पोलैंड के युवा पर्यटक की मौत से शोक का माहौल बना हुआ है। मॉरिशस के बंदरगाह ने लगातार 2 वर्षों में गतिविधियों का नया रिकॉर्ड बनाया। कंटेनर कारोबार और जहाजों को ईंधन की आपूर्ति में बढ़ोतरी के साथ एमपीए ने अच्छा मुनाफा दर्ज किया। अब फोर्ट विलियम में नए मछली बंदरगाह और कंटेनर सेक्टर के विस्तार की तैयारी। मॉरिशस तेलुगु महासभा ने मनाया अपना 80वां स्थापना दिवस। समारोह में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका पर जोर देते हुए राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया। जूनियर मिनिस्टर का पद छोड़ने के बाद सिडनी पियर ने अपने राजनीतिक भविष्य पर दी पहली प्रतिक्रिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले रेमी फ्योये का स्वदेश लौटने पर शानदार स्वागत। उन्होंने 28 साल बाद मॉरिशस को इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल दिलाया है। स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा चंद्रमा से टकराया। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। लाप्रेरी के समुद्र में मंगलवार को हुए सी प्लेन हादसे के बाद लोगों में अब भी दुख का माहौल छाया हुआ है। आज विमान के बचे हुए मलबे की तलाश जारी रही, साथ ही नेशनल कोस्ट गार्ड की टीम ने दुर्घटनाग्रस्त विमान को बाहर निकालने की भी कोशिश की। ये जांच का अहम चरण है ताकि ये समझा जा सके कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। लेकिन इस त्रासदी के पीछे सबसे बड़ी सच्चाई एक 21 वर्षीय पोलैंड के युवा पर्यटक की असमय मौत है। हम आपको बता रहे थे कुछ देर पहले अभी सुर्खियों में कि मॉरिशस के बंदरगाह की गतिविधियों में लगातार 2 साल अच्छा इजाफा देखने को मिला है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2026 के बीच माल की आवाजाही, कंटेनरों के कारोबार और जहाजों को ईंधन उपलब्ध कराने जैसे सभी प्रमुख सेक्टरों में बढ़ोतरी हुई। इस दौरान जहाजों को 11 लाख टन ईंधन बेचा गया। वहीं 2024-2025 के वित्तीय वर्ष

0: में एमपीए ने 639.6 मिलियन रुपए का मुनाफा भी कमाया। इन अच्छे नतीजों के बाद अब फोर्ट विलियम में नया मछली बंदरगाह बनाने और कंटेनर रखने की जगह बढ़ाने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। सुनिए,
1: बंदरगाह ने अपना वित्त वर्ष रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ समाप्त किया। पिछले वर्ष की तरह जब 9.8 मिलियन टन माल की हैंडलिंग, 7 लाख कंटेनरों का संचालन और 4000 से अधिक समुद्री जहाजों का आवागमन दर्ज किया गया था। वित्त वर्ष 2025-2026 में बंदरगाह ने और बेहतर किया। इस दौरान माल यातायात 10 मिलियन टन पार कर गया, जबकि कंटेनरों की संख्या बढ़कर 7,90,000 तक पहुंच गई। इसके अलावा कई जहाज़ों ने पोर्ट में ईंधन भरा, जिसकी कुल मात्रा 1.1 मिलियन टन रही। एमपीए की महानिदेशिका अरुणा बनवारी रामसाहा ने कहा, बंकरिंग के लिए भी बहुत से जहाज पोर्ट में आते हैं, 4,100 से अधिक, 2,500 केवल बंकर के लिए आए अथवा अन्य सेवाओं के लिए। कई कारणों से पोर्टवी बंदरगाह फायदेमंद है, राजनीतिक स्थिरता, सेवा की किस्म, जलवायु को लेकर ज्यादा सुरक्षित है। डबान जैसे बंदरगाह में लंबी कतारें होती हैं। हालांकि वित्त वर्ष 2025-2026 की वार्षिक रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार एमपीए ने 629.6 मिलियन रुपए का लाभ अर्जित किया। इस उपलब्धि के पीछे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि रही। आयातित माल की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें पेट्रोलियम, कोयला, सीमेंट और गेहूँ सबसे प्रमुख रहे। उदाहरण के लिए इस अवधि के दौरान 7,95,000 टन सीमेंट मॉरिशस लाया गया। इन अच्छे परिणामों की बदौलत एमपीए की खुद की परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की क्षमता बढ़ी है। अगले 5 वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 5 बिलियन रुपए निर्धारित किए जाएंगे, जिनमें फोर्ट विलियम भी शामिल हैं। फोर्ट विलियम में 50 हेक्टेयर से अधिक हैं। वहाँ एक तीसरे ड्राई डॉक की योजना निर्धारित है। एक फिशिंग पोर्ट भी कॉन्ट्रैक्टर पाने के लिए टेंडर पर काम किया जा रहा है। पोर्टवी केवल व्यापार ही नहीं बल्कि क्रूज बंदरगाह भी हैं। इस अवधि में 47 क्रूज जहाज लगभग 58,000 यात्री लेकर यहाँ पहुँचे। अभी 124 मीटर की जेटी को बढ़ाने की योजना है, ताकि बड़े क्रूज जहाज को बेहतर सेवा मिल सके। बिडिंग प्रोसेस जारी है कंसल्टेंट के लिए। अन्य प्रमुख परियोजनाओं में 4 टगबोट की खरीद भी शामिल है। इसके अतिरिक्त जहाज़ों के लिए डिजिटल कस्टम्स प्रणाली लागू होने के बाद मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी जल्द ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करेगी। ये जहाज़ों के आगमन, बंदरगाह पर ठहराव तथा प्रस्थान के दौरान आवश्यक सूचनाओं और दस्तावेजों के आदान प्रदान को एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराएगी।
0: तो लाप्रेरी के समुद्र में मंगलवार को हुए सी प्लेन हादसे के बाद लोगों में अब भी वहां पर दुख छाया हुआ है। आज विमान के बचे हुए मलबे की तलाश जारी रही। साथ ही नेशनल कोस्ट गार्ड की टीम ने दुर्घटनाग्रस्त विमान को बाहर निकालने की भी कोशिश की, लेकिन इस त्रासदी के पीछे सबसे बड़ी सच्चाई एक 21 वर्षीय पोलैंड के युवा पर्यटक की असमय मौत है। सुनिए रिपोर्ट।
2: लाप्रेरी में मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे तट से 600 मीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त जल विमान के आखिरी मलबे तलाशे जा रहे हैं।
3: C'est station de Belleombe qui occupe ça. Nous l'intention c'est pour retirer l'avion là depuis la mer. Mais pour nous qu'à faire, hein, nous avons une directive de la Department of Civil Aviation. Nous attendons cette instruction. C'est les autres qui peuvent dire nous comment nous procéder pour nous qu'à récupérer cette épave.
2: विमान में पोलैंड के 21 साल के पर्यटक डोमिनिक पोटेप्स्की सवार थे, जो 29 जुलाई को यहां छुट्टियां मनाने आए। उनकी मां ने उन्हें सी प्लेन की ये सवारी उन्हें जन्मदिन के तोहफे के रूप में दिया था। एक ऐसा सफ़र जो उनकी छुट्टियों को यादगार बनाने वाला था, लेकिन एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। उनका शव समुद्र में 2 मीटर की गहराई पर मिला। बचाव दल उन्हें मलबे से बाहर निकालने में सफल रहे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
4: Actuellement, dans l'intensive care unit de l'hôpital Welking,

0: undergo an surgery. Apparemment, il y a un problème au niveau de sa colonne vertébrale. Aussitôt qu'il est récupéré, nous pouvons avoir un petit peu plus d'éclaircissement sur l'incident qui est arrivé hier.
1: फाइबरग्लास से बना ये हाइड्रोप्लेन पिछले 10 सालों से कार्यरत मॉरिशन कंपनी बोन टू फ्लाई का है, जो लगून के ऊपर हवाई यात्रा के लिए जानी जाती है और मुख्य रूप से मोन इलाके में लगून फ्लाइट नाम से अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं।
0: Le propriétaire là actuellement nous peut prendre ce statement à la station et nous peut gagner un coup avec tout ce ban condition avec tout ce ban permis qu'il y a, pas tout ce ban d'affaires liées à jour. Et nous avons une instruction qu'il ne fallait pas les venir les tamper avec une évidence avant qu'ils décident de faire ce genre d'investigation.
1: सामान्य यात्री विमान के विपरीत इस प्रकार के हाइड्रोप्लेन्स में ब्लैक बॉक्स नहीं होता, इसीलिए नेशनल कोस्ट गार्ड द्वारा बरामद विमान के मलबे का विश्लेषण और मौसम की परिस्थितियों के अध्ययन से जांचकर्ताओं को हादसे के कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी।
0: L'équipe FSL et Forensic Science Officer qui pour découvrir.
1: अब नजर जांचकर्ताओं पर है, उनका एक ही उद्देश्य है ये समझाना कि आखिर क्यों एक रोमांचक हवाई यात्रा और जन्मदिन का ये तोहफा एक दर्दनाक त्रासदी में बदल गया।
2: मॉरिशस तेलुगु महासभा ने कल शाम अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन देश की एकता को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए राष्ट्रीय एकता का भी आह्वान किया।
3: मॉरिशस तेलुगु महासभा ने कल अपनी सीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाई। समारोह में कई महानुभाव उपस्थित रहे, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहे। मॉरिशस तेलुगु महासभा को अपने लंबे सफर के लिए बधाई देते हुए डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने देश के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के योगदान की सराहना की।
4: Pour préserver l'unité, pour préserver l'harmonie sociale. Nous n'avons pas valeur ici qui nous pas connaît. Nous n'avons la force qui nous pas connaît. Nous la force, c'est ça même, notre diversité culturelle. Une grande la force, mais nous pouvons faire ça avec une source de division. Parfois tout le monde dit, hein, que tel monde nous met tel gars à telle communauté. Pas comme ça qu'un pays progresse. Un pays progresse quand on met des gens qui sont capables de vivre.
3: आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए सरकारी नेता ने देश के सामने पाई जा रही विभिन्न चुनौतियों के समक्ष राष्ट्रीय एकजुटता की अपील
4: की। Et fanny, mais je connais qui conséquence, tu peux payer sa conséquence à l'autre. La cause simple, c'est nos pays, c'est nos priorités. Et sa solidarité, Ban Mauritien, montre là bien important. Il y a une décision difficile, pour le moment, il n'est pas pour éternel ça. Mais si et si nous prenons une décision qui est bien, pays là pour redresser.
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
4: Des grands problèmes maintenant, c'est la drogue. Mais quand la drogue, là, c'est au 10 ans. Depuis 10 ans, la gauche peut proposer dans Maurice. Parce qu'il n'y a aucun contrôle. Mafia la drogue peut inviter d'en réduire. Je peux rentrer sur le quand je l'ai. Je dis au gouvernement de nous l'amener. Mais tout ça, la drogue, là, besoin de connaître, même pour gagner, je peux essayer. Tout ce travail-là, nous peut faire. Et puis, il n'y a aucune faveur. Je dis au un mot junior ministère. Sauf le nominal. Mais dans la réunion qui m'en arrête ça, si tu as un simple pouvoir là, jamais où tu peux t'en donner là, tu ne finis tout fait là. On ne peut pas prendre ça.
3: Député Prime Minister Ariana Vamarine, intersamoudaïque Ekta Parbaki.
5: Nous cause l'unité dans la diversité. Chacun a sa spécificité et chacun nous partage nos cultures.

0: Et c'est ça qui fait la richesse du pays.
1: Nous tous, quelques paroles nous sortis dans sa vente, maman, salaté là, et nous parents ticouli. Si aujourd'hui nous pouvons débuter comme un grand professionnel, c'est parce que nos parents font sacrifice chaque pas nous la vie. Nous n'avons pas oublié ça. Ça pays là, besoin de nous à cette là. Ça pays là, besoin de coopération, de compréhension et de conviction.
2: Aujourd'hui, ce n'est pas un simple anniversaire. C'est une célébration de nous l'identité, nous l'héritage, nous langage, nous cultures. Le Mauritius et le Goumarensaba, c'est une famille, un foyer, un centre de spiritualité, une école, un symbole de l'unité et un pont entre bonnes générations.
3: समारोह के दौरान सभा के पूर्ववर्ती अध्यक्षों और सदस्यों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सभा की तरक्की के लिए कार्य किए हैं। मॉरिशस तेलुगु कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के स्कूल ऑफ डांस के छात्रों द्वारा अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

0: कथित रिश्वतखोरी और अवैध धन के मामले में आज दो पुलिस अधिकारियों को अदालत में पेश किया गया। राजकुमार सिवू, जिन्हें 2025 में चर्चित रिवॉर्ड मनी मामले में भी गिरफ्तार किया गया था, और रंजीत देवजी पर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर फायदा लेने का अस्थायी आरोप लगाया गया है। ये मामला मार्च 2024 में वैली दिपैत में की गई एक तलाशी और वहां से बड़ी रकम बरामद होने से जुड़ा हुआ है।
1: 2024 में वालीदिपट में मारे गए छापे के वक्त पूर्व एएसपी राजकुमार सीयू और इंस्पेक्टर रंजीत देवजी एसएसयू के स्पेशल इंटेलिजेंस सेल में थे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि क्या दोनों संदिग्धों ने तलाशी के दौरान अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था, बरामद रकम को किस तरह जब्त किया गया, कैसे ले जाकर रखा गया और क्या कुछ प्रक्रियाओं को जानबूझकर नहीं किया गया और क्या पैसों की मांग की गई या नहीं। अदालत में एफसीसी ने दोनों संदिग्धों की रिहाई का विरोध किया। आयोग ने मुख्य रूप से गवाहों को प्रभावित किए जाने या जांच में हस्तक्षेप की आशंका का हवाला दिया। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
0: जूनियर मिनिस्टर का पद छोड़ने के बाद सिडनी पियर ने अपने राजनीतिक भविष्य पर दी पहली प्रतिक्रिया। उन्होंने लेबर पार्टी में बने रहने और सरकार के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज उठाने की बात कही है। आज उन्होंने प्रेस से मुलाकात की।
2: ब्राजील में अपने दफ्तर में सिडनी पियर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना बयान दिया। पिछले शुक्रवार को उन्हें पर्यटन मंत्रालय के जूनियर मिनिस्टर के पद से बर्खास्त किया गया था। कारण, उन्होंने फाइनेंस बिल की धारा 12 जो पेंशन सुधार से संबंधित हैं के विरुद्ध मतदान किया। इस बुधवार को मीडिया से बातचीत में सिडनी पियर ने बताया कि वो सरकारी बहु पक्ष में बैकबेंचर के रूप में ही संसद में बने रहेंगे।
3: D'ailleurs, nous étions en minorité la semaine dernière, mais pour le bien de la population, faire entendre sa la voix minoritaire là au sein de la majorité. Donc, si on lui connaît la place qu'il m'occupait dans l'Assemblée, donc, moi, un backbencher du gouvernement, du Parti travailliste, pas pour une opposition du gouvernement.
2: Média que any sawalon ke jawab mein chunav kshetra number 19 Stanley Rose Hill ke sansad ne bataya ki finance bill par matdan se pehle ya uske baad उनकी प्रधानमंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर भी बात की, जो उनके पद से हटाए जाने का मुख्य कारण बना।
3: Donc nous dans la constitution mentionné que cabinet ministres zot bizal avec la solidarité collective parce qu'ils faisaient partie du cabinet du nouveau ministre pas faire partie du cabinet. Connais ce qui n'est arrivé vendredi là, c'était un précédent mais intéressant. Dans la vie démocratique d'un pays, Basel-Hollande nous pousse le débat encore plus loin. Est-ce qu'il nous amène une ministre dans le cabinet ?

0: सिड नेपियर ने आगे कहा कि उनके सभी निर्णय सबसे पहले जनता के हित को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। उनके लिए यदि भविष्य में उन्हें लेबर पार्टी छोड़नी पड़ती है तो वो विपक्ष में एक निर्दलीय सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे।
1: स्वास्थ्य के सेक्टर में बांग्लादेश ने आज मॉरिशस को चिकित्सा उपकरण भेंट किए। इस सहायता में अस्पताल के बिस्तर और व्हीलचेयर जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले उपकरण शामिल हैं। उनका उपयोग पोर्ट लुई के जीतू अस्पताल में किया जाएगा। ये सहायता मॉरिशस और बांग्लादेश के बीच मजबूत मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। कई वर्षों की देरी के बाद प्लेनमान्यों में डीबीएम के एसएमई पार्क परियोजना का काम जल्द फिर से शुरू होने वाला है। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए बनाई जा रही इस परियोजना का काम बाढ़ और उससे जुड़े सुरक्षा खतरों के कारण रुक गया था। इस पर अब तक करीब 200 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए अब एक समाधान भी तय कर लिया गया है जिससे परियोजना का काम फिर से आगे बढ़ पाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में 90 किलो से कम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले रेमी फोये आज स्वदेश लौट आए हैं। ग्लासगो में मिली इस जीत के साथ उन्होंने 28 साल बाद मॉरिशस को कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। देश पर लौटने पर उनका भावनात्मक स्वागत किया गया। और हम आपको बता रहे थे बुलेटिन की शुरुआत में सुर्खियों में कि स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा चंद्रमा से टकराया है। वैज्ञानिक अब इस टक्कर के सबूत जुटाने में लगे हैं जबकि विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे पर चिंता जताई है।

और अब चलिए जानते हैं कि मॉरिशस में मौसम का हाल स्थानीय स्तर पर कैसा रहेगा। मस्करविंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर है और पूर्व से आ रही अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। देर रात को और कल सवेरे के दौरान रह रहकर देश के ऊंचाइयों और पूर्व में रह रहकर वर्षा हो सकती है, ऊंचाइयों पर धुंध छाई रहेगी। कल दोपहर बाद के मौसम की बात करें तो पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर मौसम कुछ खराब ही रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18, अधिकतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम सहली इलाकों पर 20 से 23, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। सूर्यास्त 5:53 पर, सूर्योदय 6:37 पर होगा।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे लुडोविक, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।

शोक समाचार सुनिए। तुलसीदास लेन कौंची में अड़सठ साल के 68 ईयर्स ओल्ड के जगदीश गोपी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ कल दिन के डेढ़ बजे उनकी पत्नी मिसिज गोपी कमला देवी के मकान तुलसीदास लेन कौंची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंची की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। नंबर 2 सेंट एस्प्री लेन एवेन्यू सर वर्जिल नाज कटरोबोन में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अरावती मानिक की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम राखा, लोग उन्हें अनीता के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज बल्कि कल गुरुवार को सुबह के 10 बजे साढ़े दस

बजे उन्हीं के मकान काट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेतू काट्रोबोन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM. एलियो स्ट्रीट सिटे लोआजो फ्लोरियाल में 77 साल की श्रीमती लक्ष्मी इंदसिया की मृत्यु हो गई है. लक्ष्मी इंदसिया की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम रामजतन, लोग उन्हें देवरानी के नाम से अधिक जानते थे. उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली ब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. टागोर रोड अर्नेस्ट फ्लोरों में 68 साल के राजनाथ बिमल की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें हारी के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे चंद्र प्रकाश बिमल के घर अर्नेस्ट फ्लोरों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशरों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. पेटी पाके रोड मोंटाई ब्लॉश में 70 साल के दयानंद कातुना की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें अनिल के नाम से ज्यादा जानते थे. श्री दयानंद कातुना की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल सुबह के 9:30 उनके बेटे अशीव कातुना के मकान मोंटाई ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंटाई ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.

NBC Radio, 24 hours a day. सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल गुरुवार 6 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रामशाई रोड में बाला रोड, शिबनोट लेन, स्कूल रोड, शोभा लेन, लाफ्लोरा में कुतवाहू रोड, बॉम्बे रोड, चमन रोड, रंगलाल रोड और बोस्टन रोड लाफ्लोरा में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और कल गुरुवार सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 2:30 बजे तक मोशवाजी और आसपास के इलाकों में काजवारीना, कोरल आजो, मौसलमान लिव्यू, मेडिटेराने, मिस्टिक होटल और एक्स एमसीबी में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम, रात्रि का हम सफ़र। आप हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। सावन का पावन महीना चल रहा है श्रोताओं, चलिए भक्ति का ये सफ़र जो है, इस दीप को हम जलाने जा रहे हैं। आप हमारा साथ जो है देते रहे। कार्यक्रम की शुरुआत हम भगवान गणेश जी का नाम लेकर करेंगे।

भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। श्रोताओं, सावन का पावन महीना चल रहा है। चलिए, भक्ति श्रद्धा और आत्मिक शांति का महीना है। प्रकृति जब हरियाली की चादर ओढ़ लेती है तब मन भी नई ऊर्जा और उम्मीद से भर जाता है। तो चलिए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

तो चलिए श्रोताओ, भजले प्रभु का नाम कहते हैं ना, हिंदू परंपरा में सावन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस पूरे महीने श्रद्धालु जो है शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं।

0: तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं, तो चलिए इस सुहाना सफ़र को हम जारी रख रहे हैं। और कहते हैं इस पावन महीने में हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को धोकर सकारात्मकता, धैर्य और विश्वास को अपनाने की प्रेरणा देता है ये सावन का महीना। तो चलिए इस पूरे महीने में भगवान शिव का जो है उनकी पूजा अर्चना करें, व्रत धारण करें और उनकी अर्चना जरूर करें।
1: पार्वती जी ने घोर तपस्या करके जिन त्रिलोचनी भगवान शिव को पाया, सारे गण यक्ष भूत प्रेत जिनके इशारों पर नाचते हैं, वो त्रिशूल और डमरूधारी भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा को धारण किए हुए हैं और अपने भक्तों पर सदा अमृत बरसाते रहते हैं।

तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं भजले प्रभु का नाम। तो चलिए कार्यक्रम का समापन हम करने जा रहे हैं। हम आपसे यही कहेंगे, इस पावन सावन में भगवान शिव का स्मरण जरूर करें। अपने जीवन में प्रेम, सद्भाव और भक्ति का दीप आप जलाते रहे और हर दिन को नई आशा और नई शुरुआत के साथ जीने का संकल्प जरूर लें। तो चलिए हम कहेंगे हर हर महादेव। जाने से पहले हम अपने तकनीकी सहायक अर्पणा को हम धन्यवाद देंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

मोहतरम सामीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतनी देर तक नमाज़ पढ़ते कि आपके क़दम मुबारक सूज जाते। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं, फिर आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? बहवाला सही बुखारी शरीफ।

हदीस हमें ये सिखाती हैं कि अल्लाह की नेमतों पर शुक्र सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि इबादत, अताअत और नेक आमाल से भी अदा किया जाता है। अल्लाह ताला हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करने वाला बंदा बनाए और सब्र शुक्र की नेमत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा।

0: संगत्या घड़ी मिला ई बखत रात के ठीक 9 बजल बाद तू सुनत हुआ MBC रेडियो मॉरिशस और MBC रेडियो मनोरंजन
1: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस
2: कंटिन्यूअस म्यूजिक
3: RM3
4: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर
5: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा
0: सब संगतिया लोग के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल MBC गिद्दू को चैनल है। एगो FM मोड पर वो है RM3 रेडियो मनोरंजन 94.95.98.2 FM पर और रेडियो मॉरिशस RM मोड पर यानी कि 819 किलोहर्ट्ज पर। तजिदा को हमने किस सुना था सबको किस स्वागत करते थे जहाँ भोजपुरी तड़का प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बजे ले आज है बुधवार की रात बुधवार 5 अगस्त साल 2026। तो बेशक हमने तो लोग के साथ ही सा नाचब सा गावब सा कमरवा डुलावब सा मन करता को भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमाइया कद जगो दे विद जगो विद सैंक। तो आज बुध के रात गमत के रात जलसा धमा के रात चल नाचे गावे झूमे कमरवा डुलावे कदम से कदम मिलावो जा और शुरू कर जा भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के बीच मावती संपत्ति गावल गीत के साथ मांग के सिंधु

संगत्या लोग बुद्धिमान व्यक्ति के एगो बात समझेब तो वो बतवा समझ जाए, पर मूर्ख व्यक्ति के तू चाहे कितना भी समझेब वो कबो नहीं समझी। मूर्ख व्यक्ति थेतर के थेतर ही रह जाला। यही अंतर है को बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति में। बुद्धिमान व्यक्ति अपन दिमाग से काम करे, पर मूर्ख व्यक्ति ओकर दिमाग न काम करे रहा, कुछ नहीं काम करे रहा, और जबकि तू कितना स्पीकिंग कर बह तो समझे के नाम वो नहीं करे रहा। काजा देवी जगोवित सें काजा देवी जगोवित सें कमरित अगने से पिताओं से टेलीफोन करे था लन्ना गीत और खातिर अगला गीत ताम ताम हुईरा अमराज मधुर कविता मनहिल गीत वगैरह वन और ताम ताम करे तो नमृत गणेश पीता से संजय हरिचंद वैसे अवन गर्भपत्नी संध्या बेटी हुविष्कार सब हरिचंद परिवार के नाम। और ये अगला गाना जिन हम चलावते सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के श्रोतालो के नाम, साथ में जितना कोई अभी भी मैं रेडियो सेट ऑन कर लगभग तब बता दे रहा जा यह रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस भोजपुर का प्रोग्राम रात के 11 बजे ली। चल अभी तुर के संगे हम न्यू ताम ताम करब सा नाचब सा गावब सा झूमब सा और बेशक है गीत आपने चाहते ही सा वीना की ओर से। हेलो वीना, वीना की ओर से घर वाला और बेटा बेटी और का सब परिवार के नाम। और है गीत चाहते सर कंचन की ओर से राजेश के नाम और सोनिया के नाम भी। और एक गीत चलिए हम के सब श्रोता लोग मॉरिशस में विदेश में जहाँ ले हमकी आवाज़ पहुँचा था, जिकर जिकर घर में हमकी आवाज़ पहुँचा था, जहाँ ले हमकी आवाज़ जाता था, सब संगत्यालों के नाम जन सुनतवन भोजपुरी तड़का।

आजकल श्रावण मास चलता, घर में पूजा पाठ होता, वेद पाठ होता, वेद मंत्र के उच्चारण होता। जब हम वेद की बात कही ला सर, तो हमने के हिंदू धर्म संस्कृति में चार गो वेद बा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवता की स्तुति और प्रार्थना होला, इगर में भगवान अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, सोम के देवता के वर्णन होल बा। और ऋग्वेद में प्रकृति, ब्रह्मांड, मानव जीवन और सत्य के बारे में बोलल चला। जबकि यजुर्वेद में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान के बारे में बोलल गल बा। यज्ञ कौन कौन मंत्र, यज्ञ में कौन कौन मंत्र के उच्चारण होला, कर्म, अनुशासन और समाज के कल्याण पर बोलल जाला। फिर सामवेद इतगो संगीत के वेद है, संगीत में रहेला। और हम के अथर्व वेद, ई वेद में जीवन से जुड़ल विषय के वर्णन होला। स्वास्थ्य, औषधि, शिक्षा, गृहस्थ जीवन, शांति, संविदा और समाज संबंधित मंत्र बा। एक सामान जन जीवन के वेद बोलल जाला। तो हमेशा याद रखिए, हमने के चारों वेद या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व वेद, ऋग्वेद है, चारों वेद के चेहरा पठन पाठन करते रहे। कि आजकल श्रावण मास है, तक घर में यज्ञ हवन होता, और जब यज्ञ हवन होला तो संस्कृत में यही मंत्र के उच्चारण करी जा सा। तो चलाइसन में सुनब जाए अगला गीत, भगवान के काम, शालिनी पोपिया और अमराज मधु के गावल गीत। और है गीत चलावत खास हम खास इंदिरा लौथन के नाम, और इंदिरा में सेवन, साथ में चित्रा और ज्ञान विश्राम जी मौदालबे से।

और सभी शाम परिवार के नाम शोभा वन काटोबोन से शोभा बाकवा शोभा बबासन शोभा पॉम्बली मुस्तर से और है गीत चावते जा भाई राफिक मोहित के नाम आप हवन टायक से भाई आबू वन वाकवा से इब्राहिम पोटवी से मैं सभी इन प्लान बैच से और रोजीदा हाईलैंड से ताई चले सब श्रोता के पश्चिम पर गीत चली भगवान के काम और भगवान के काम के आगे हमने कुछ नहीं सकी जा सके जो भगवान चाहेला वही होला भगवान के मर्जी के बिना एगो पत्ता तक ना ही लेला हमने ते खाली नर चोला ही सर बोले था

0: भगवान के काम बड़ा महान, वही धरती आसमान इंसान जानवर पक्षी पेड़ पौधा सब वही बने लगबा। और भगवान जाने ला कब कोई की प्राण दे के और कब प्राण हरे की। और प्राण हरे वाला भगवान का नाम है यमदूत। यमदूत महाराज जब वो इंसान के जीवन पूरा हो चला तब वो अपन पास से वो इंसान के प्राण लेके जाला यमपुरी यमलोक। और वहाँ पर ही न्याय होला। एक बोल जला कि जबरी जीवा भैया अच्छा कर्म करिया, अच्छा काम करिया, अच्छी बोली बोलिया, जमी अंत समय हमने के अच्छी तरह से हमने की प्राण हमने के शरीर में से निकल के यमदूत संगे जाए। रात के 9:20 होत बा और आज बुधवार के दिन मौकी करनी सर कि दिन के दौरान काफ़ी पानी बरसल, मौसम हवा हवा रहा। कहे कि मॉरिशस के दक्षिण में कुछ जोरदार आंधी साइक्लोन पावल जाता, इस कारण हमने के देश में रह रह के जिसी जिसी पानी बरसाता जोरदार हवा बा और पर ये ठंडा करता। दिन की तरह ठंडा कर भी करेगा पर आज रात की भी काफ़ी ठंडा करी, तापमान में गिरावट भी आई है। और जब इससे ठंडा करी तब अंतरिको जैकेट पोलो पास्को इस जीवन से डाल लिया और ये ठंडा के मौसम में कोनो रिस्क नहीं लेके चाहला। खासकर जगह घर में चिबीबे लोग बा और बड़ा आदमी लोग बा जिन वृद्ध जन है तो जैसे भी नकाब रह कहे कि आजकल खांसी सर्दी जुकाम धे कोई के हुआ था लाफी देर के हुआ था तो ठंडा मौसम से बच के रहिए। और ऐसे में सुनम जा शशि सहोदय प्रिय अवल गीत ठंडा ठंडा पानी। और देखब सभी लाइन पे के हवन जा चाची ललिता हवन थ्रियोले से। चाची ललिता नमस्ते।
1: हेलो नमस्ते बेटा,
0: कैसी समाचार चाची?
1: सब कुशल मंगल बा बेटा।
0: तोरे बगल बड़ी ठंडा करता ना?
1: बड़ी ठंडा
0: आज काफी
1: हो जो तो हो जो ठंडा बाना ढे
0: ना ढे ठंडा भाई मौका ठंडा के ठठ है। और वहाँ ठंडा हवा हवा कर लग बा
1: हवा दिन भर हवा
0: दिन भर हवा पानी का कर बा मौसम ऐसे ही बा। और बोला था चाची अगला गीत के कर खाते
1: आज बेटा हमारे बहन के जन्मदिन बा चला दिया।
0: कौन नाम बा?
1: चंदा चंदा बिचुक।
0: चंदा बिचुक ढे बना प्यार और आशीर्वाद।
1: अच्छा और हमारे सब बहन के बोल देव था आज
0: गतुआ के लिए अकेले खा लगा तो रानी वैसे हुआ
1: बड़ी दूर बना बेटा।
0: हाँ जाना था चाची बाजी नहीं करता है। आले तो हरगी चार जो जोड़ी की
1: बहन सुदेवी डाल दिया। बहन सुदेवी
0: आले बहुत
1: देवीना ज्ञानी ज्योति
0: हाँ
1: और मीता
0: हाँ। और जितना कोई के जन्मदिन बा तो लोग खाते भी हो गीत चाहो अब सर तो चल सुनब जो है गीत वा सब भोजपुरी सब भोजपुरी लवर्स के नाम भी ठंडा ठंडा पानी पे लद मोरे जान। अरे भाई ठंडा ठंडा पानी नहीं पे पनिया के गरम कर दिया पानी चेत पिया या गरम पानी पिया पर ठंडा पानी नहीं पिया वरना हो जाए बीमार।

आगे के ज़माना कुछ और रहल और अभी के ज़माना कुछ और बा। पहले के ज़माना में जब स्कूल के छुट्टी मिला था तो सब लड़का सीमा में दिग्बद हो गए थे, उनसा फुटबॉल खेलता, उनसा कोई गुड्डी उड़ावता, कोई कानित खेलता, कोई लमाकेद खेलता, कोई रस्सी सोते हुआ था, तो कोई लारू रूड़े करता। तो ये सब आगे के ज़माना के लिए कालुक रहल। और आगे लमागेल छोकरी लोग लमागेल खेल, छोकरा लोग कानित खेलते रहन सर, और छोकरा लोग गुड्डी हो रहा हुए। आजकल ये सब गेम नहीं रोक रहा, ये सब खेल नहीं रोक रहा। आजकल खाली लेकर लोग पोता में टिक टिक टक टक, टिक टिक टिक टक, टिक टक टिक टक, टिक टोक हाइए। पर पहले के ज़माना में जिन लड़का लोग सीमा में फुटबॉल खेलते रहन सर, और ढेर मना ऐसे खेल रहा जो आज नहीं रोक रहा, शायद आज के लड़का लोग नहीं जानी। तो समय समय की बात है, उस समय की बात है, और अभी समय जो कर दूसर अभी नया ज़माना बात है। लेकिन लोग नवा नवा टेक्नोलॉजी के खेल खुशी रह से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सब पर आगे के लेकर लोग इलेक्ट्रॉनिक के सब नहीं जाना था, कंप्यूटर पोता भी सब नहीं रह, तो जिससे लोग नेचर में प्रकृति की गोद में खेलते रहन सब। अगला गीत हंके दे दे गो चुमा, हम हाई हम चुमा नहीं मांगे तेरी बाप। ये मुकेश छेदी गीत गावा तो चुमा, और है गीत चली खासम खास संजय के और शकर भाई मोलो कर भाई बीबी खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ। और

और हेडगेट डॉक्टर अंजू के और शेखर मंगेतर खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ हेडगेट चाहती से कमला जिन के शेखर चीज़ों फारोही खातिर और प्रेमीरा का बोन से वन हाई प्रेमीरा हेडगेट तो हरो नाम अनिता लाल जी मॉडल बी एस ए हाई अनिता जी कैसे बा और अनिता अफ्रीकन फ्लैग से हम के साथ देवन कुल खातिर गीत चली और जितना कोई रेडियो मोशा रेडियो मनोरंजन सुनाता था गीत तो लोग के नाम चुम्मा दे दे चुम्मा

कभी कभी हालात के कारण, परिस्थिति के कारण कोनो कोनो इंसान जो है बड़ा ही चिड़चिड़ा हो जाला, छोटा छोटा बात में गुस्सा करेरा और ओके भूखा से बचाए के बड़ा मुश्किल रहेला और क्या करेरा, ये अपने आप तो खुशबन खुशासन लोगन पर भी उतारेगा। ऐसे टॉक्सिक लोगन से जहाँ दूर रह के जिन देख जो व्यक्ति थे स्ट्रेस में रह रहा था, लोग तनाव में रह सर, और जब दो के सीमा में पड़ गए रहे तब भूत हो रहा हिन्ने हिन्ने बोई लगी तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाला समय के साथ साथ परिस्थिति के कारण। बोल बोले बोल बोले सुना नो गीत गई दे और गीत चलावती से हमने देवेश के नाम और माता जी पिताजी और सब कर परिवार खाते फिर अभिनव हम के साथ होता गौत सहाय अभिनव और हे गीत हमें चलावते उदय धनी राम के नाम और पत्नी बेटा पत्तु बेटी दामाद और सब धनी राम परिवार के नाम प्रीतम राज्य मिला है गीत और खातिर और है गीत विक्रम निफो और सब बच्चन परिवार के नाम आप रहे जी पोस्ट चल एक साथ सुने गीतवा बोल बोले।

सन ठंडा के मौसम में गरम गरम दाल कच्चू पीमा के आचार चलेगा। रात के 9:50 हुआ था उनके साथ देखे तेर बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो तो भोजपुरी तड़का प्रोग्राम एम टू रेडियो मोशन और एम टू रेडियो मनोरंजन पर रात के 11 बजे ली। और हमने जो है सर सब एगो आत्मा है सर, और एक दिन ऊपर परमात्मा में लीन हो जाब सर। जब ये शरीर हमने के नहीं बा तो कौन बात के घमंड, कौन बात के गुरूर है। हमने सब कोई आत्मा है सर, एक दिन परमात्मा में लीन हो जाब सर तो यही जीवन की कटु सत्य है। ढेर कोई बोलेला हमारे लगे ढेर पैसा बा, कोई बोले हम सबसे झोली हैं और बड़का गाड़ी बा, पर इस सब कुछ नहीं कहने से भैया कौन चीज लेके जाब सर यहाँ से। सब कुछ यहाँ भरी छोड़ छाड़ के जाए के खाली हाथ आने से यहाँ से खाली हाथ जाब सर। हम के साथ जन जाए हम के अच्छा करने कमाई के फल, हमने के पुण्य हमने के साथ जाए, हमने के धर्म हमने के साथ जाला। अगला की दगा दे रे सुनरवा और गीत चलाते सर शालिनी हीरो की और सेकर पति विशाल हीरो का दुगो बेटी और भाई कृष्णा और सब हीरो परिवार के नाम से, और भाई दनियन के साथ होते हैं भाई दनी गीत तोरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ। और हित गीत चलाते सर रीता की ओर से संगत्या देविका, फिर हवन मिसेज द्वारका देविका मिसेज रामभा और सब का संगत्या लोग के नाम, और रीता अपन संगत्या के नहीं भुला बाए अपन संगत्या के याद करते रहे लन्ना। तो चले साथ सुने गीत विनोद शिवदत्त गावल दगा दलेरे सुनरवा।

0: continuous music. RM3.
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच, जलसा, हंगामा।

अभी और एक घंटा बाद यही प्रोग्राम भोजपुरी देर का समाप्त करी में और जो लोग फोन कॉल से इतने बात कर जाओ देवी जाओ विद सैंक और बेशक हमने के साथ देती रहा।

भोजपुरी तड़का प्रोग्राम चलेगा लेंडी से लेके धीमा ले रात के 9 से 11 बजे रही बारी बारी से सब प्रस्तुत करता आईला सा हमने की बारी रहेला मंगल के और बुध के आज बुध के रात है और हमने की प्रसारण चला था 94.96 98.2 MHz FM पर और रेडियो मॉरिशस पर और साथ में हमने की प्रसारण चला था हमने के टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हमने के लाइव सब देखे अभी से रात के 11 बजे रही तब बने समय सकब यों पर विजा करे हमने के टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के तो अगला गाना अजब तोरे लीला भगवान की लीला परम्पार है वही जानीला कब को छा करेंगे तो गीत चलावत ऐसा संध्या अमृता पादू फिर हई गीत चली सुनील नुगा करिश्मा संध्या तोरो खतेर बटरफ्लाई हमने के साथ होते हो बटरफ्लाई अगला गीत तोहर नाम ही और है गीत चलावत ऐसा वेल जी के नाम और अंतिश बिहारी हेलो अंतिश कैसी से बात समाचार गमटवा हुआ था ना हाँ अभी गमटवा होते रही रात के 11 बजे ले और हमने के साथ देवथवन जय हेमंता रानामा अमृता तिलक आशवीर कैसे बा आशवीर आशा करते तोरा प्रोग्राम पसंद आवा था और बेशक अगला गीत और खातिर और जितना को ये भी हमने की रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर सुना था और हमने के टिकटॉक पेज पर देखा था वन सा लाइव इन डायरेक्ट हो जाए गीत तो लोग के नाम अजब तोरे लीला

अजब तोरे लीला, अजब तोरे माया, प्रभु के माया हा, कोई नहीं सकला जाने कि कौन सी हो की बात, सब प्रभु ही जाने रहा। और अब बनी बात कर सा आयुर्वेद के बारे में, ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद, जैसे कि धीमा प्लांट बाजी कर से दवाई बनेला, हल्दी बा, अदरक बा, लहसुन बा, कारीपुले बा, जीतें बा, हैं अपना बा, ताई सब जन प्लांट है कर से दवाई बनेला। एक के हमने हिंदी में आयुर्वेद बोला सर, तो ढेर कोई खुशी रहला आयुर्वेद के दवाई सेवी करे के ढेमाना रोग बा जो आयुर्वेद से कर खत्म होला। और मॉरिशस में गांव के नाम बा लिस्कालिए, वहाँ पर एगो मेडिक क्लिनिक बा जहाँ पर आयुर्वेद के सब दवाई मिलेला, ओकर लाखेम बा, डेलविल बा, कॉम्प्रीमे बा। और बेशक है जो आयुर्वेद है ये हमने के दादी लोग नानी लोग बतैले रहल, आगे के ज़माना में उतना डॉक्टर सब नहीं रहल तो आयुर्वेद के प्रयोग होता है। उस सब से भी जैसे अभी आजकल सर्दी खांसी जुकाम बा थे माना बीमारी बा, तो आयुर्वेद से भी सब बीमारी के इलाज सकल जरा करे और ढेर कोई सुई भी करेला। और जैसे कि बोली है जो आयुर्वेद है एक में ढेर माना दवाई बा, ये सब हमने कभी कभी कोनो घोंची उची कबार के बिग बाग देला सब, पर कोनो कोनो घोंची के पत्ता से भी दवाई बनेला, जैसे नीम के पत्ता बा, अब करेला बा, करेला के जूस बनेला, नीम के कर साबुनेत बनेला, जानेला नीम के साबुनेत वो जब खुजली होला लेको में तो साबुनेत सेवी करबा तो सब खुजली भाग जाला। हाँ तो ढेर मना ऐसा बा आयुर्वेद के। और आयुर्वेद जो है वो ताज़ा और पौष्टिक रहेला है, जोन भी प्लांट से जुड़ल बा है, और प्लांट में जितना दवाई रहेला है तो उकर प्रयोग हम करी रहा सर। तब सुनब जग लगा ना कमल चिंतामणि कवल मार छौका है गीत चावते से लकी वुमेन के नाम है गीत चली, जयराज, रानी, अंतीश, अंकुश, स्नेहा और सब जुड़ल परिवार के नाम आप होवन लाल माटी से। यह शनि के साथ देवथवन साबिरू नमस्ते, श्रुति रूपक विलियम बीमी के साथ देवथवन, हाय रजनी, अभिषेक भवानदीन, आश्ले भवानदीन, हेलो लेडी जागो अमन के साथ देवथवन, संवीर संध्या, आश्ले भवानीदीन नमस्ते जी, फिर कुशलाम के साथ देवथवन, पुवना शर्मा और तेज सनातन, हाय चाचू, हाय भतीजा, कैसे बा। साथ में है गीत जो नावत तेज सनातन खतेर, आश्रय भवानी दीन हमने के साथ, सकुन भी, अरदास भी हमने के साथ देवतवन, और जितना कोई भी रात के हमने के सुना थवन रेडियो पर, देखा थवन समय के टिकटॉक पर, तह गीत तलो के नाम मार छौंका। आगे के खाना है पुरानिया पकवान, ही मार छौंका।

संगतिया लोग बोला जला कि बीतल समय कबो फिर से लौट के वापस नहीं आवेला, जोन बीत गए तो बीत गए और फिर से वापस नहीं आरो, बीतल बीतल बात सोच के तू दुखी नहीं हो या, जोन हो गए तो हो गए, जोन बात अभी है और तुहर आने वाला भविष्य, जो बुद्धिमान इंसान हुआ जो अपन वर्तमान में जीरा और अपन भविष्य के बारे में सोचेला, हो कि नहीं, तभी तो बात की भुला जाइया, ठीक बा। हंसते गाते रहिए, हमने लिखा और सुनते रहिए रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन।

लंच एंड रात के 10:15 हुआ था। और अगला गीत काम करवा रे काम करवा शकुन गीत हर खातिर साथ में आश्री बोवानी जी ने गीत और नाम यो की ओर से गीत चली कर माता जी इंद्रानी बिहारी खातिर टीका नाथ योगी सुनील राम नोचन गीत चली वालिदे पद के सब राम नोचन परिवार के नाम यतीन आनीश तानवी अनुषा और निधि खातिर मीना जुल भीम के साथ देवटन अनिता लाल जी हेलो आश्रय भवानी जी हाईलैंड से हाँ और एंजल मी हमने के साथ देवटन हेलो एंजल मी और ये वक्त रिनियन आइलैंड से भी थे कोई हमने के सुनाता जेगा स्टेफानी बा और जेसिका भी हेलो जी और फिर कनाडा से वन दीपा तिवारी दुखित कर घरोला को लेकर दुखित परिवार के नाम ऑस्ट्रेलिया से अजय और पूनम चिंताराम उकरमा इंदिरा बहिन सलोनी भाई चंदन भौजी प्रिया और सरिता उनकी प्रणाम बोलता हाय सरिता है यो गीत तोरो नाम ईशा है गीत तोरो नाम लीना जीत है गीत तोरो नाम काम करवा रे काम करवा

मस्ती म्यूजिक और हंगामा द्वारा अपन रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम हो चुकी दरका में रात के 11 बजे ले और बेशक हमने नचते गए थे आलि से और नचते गए थे जाप सा यहाँ से जोली छोकरी से प्यार करी रहा कुणाल हीरालाल गीत गई रे वन गीत चली खासम खास मनीषा खातिर हाय मनीषा गीत और खातिर मनी खातिर फिर गीत चली शाकुन के नाम स्वीति प्रिया नसीमुली सायरा दाहू सरिता और है गीत चलाव ईशा खातिर भी हमने के बहुत बहुत प्यार से देखा था वन हमने के टिकटॉक रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर रोजी भी साथ देवत वन हाय रोजी हेलो कैसे समाचार सब ठीक ठाक आपके यहाँ यहाँ पर सब कुशल मंगल बा और हमने तलो के मनोरंजन करे के पूरी पूरी कोशिश करते हैं सर भी रात के 11 बजे रहे तलो के पसंदीदा भोजपुरी गीत चलावत है जा और चला भाई अगला गीत सुने जोड़ी छोकरी से प्यार करीला जकर खतिर हम रोज जीला बहुत प्यारा सुन गाना कुणाल हीरालाल की आवाज़ में और गीत चलावत है सर अश्विना के नाम अश्विना काठोबोन से वन के साथ देवतवन हाय रवि जिनू नमस्ते है गीत तोहर खातिर तोहर घरोली तोहर लैका तोहर माता पिता तोहर सब दिनू परिवार खातिर रवि जिनू खातिर भी और रवि जिनू जोड़ी छोकरी की खुशी रहेला जैसे हम गीता में बोला था जोड़ी छोकरी से प्यार करेला जकर खातिर हम रोज जीरा लापिनू अरे भाई है कि नाम है लापिनू ओके लापिनू तो है गीत तोहरों खातिर लापिनू फिर राजेश सिंह सिंह स्किंग राजेश सिंह महामुदाली हेलो जी और चला गीता सुनब जा जोड़ी छोकरी से प्यार करीला

इरहल हमने के सकते कुना हीरा जोरी छोकरी से प्यार करीरा और प्यार जो ना एगो एहसास है एगो जज्बात है दिल से दिल जब मिलेला तो ओके बोला सब प्यार लव मोहब्बत कोई बोला प्यार एक बार होला तो कोई बोला प्यार बार बार होला कोई बोला प्यार इबादत है प्यार खुदा है तो कोई बोला प्यार बेवफाई है प्यार नफरत है सब कोई के पर नजरिया है प्यार के बारे में पर हम तो मानेना कि प्यार ईश्वर की देन है अगर प्यार मोहब्बत नहीं रहता आज तू नहीं रहता हम नहीं रहते आज यहाँ पर रेडियो पर हम इतने लोग से बात नहीं करती सर अभी लाइव टिकटॉक नहीं करते प्यार मोहब्बत है जो हमने के ते लोग से जुड़े रहा एगो परिवार है सर वो चाहे कोनो भी समुदाय के है सब कोई संगे जैसे संतुष्ट डेमोक्रेसी यूनी सोलिडियर जी हमने सब कोई एक साथ है सर और बेशक तो लोग के साथ देव थे भी रात के तो अगला गीत है भाई शराबी प्रकाश गहरे वो ने गीत तो उमिला जो ढका तेर और फिर है गीत चली यज्ञ क्षेत्री के नाम फिर है गीत चलाते सर रोशन भाई के नाम मनीषा मनीषा डसो ये कुणाल हिरी राह के साथ देव तो हाय जी हेलो जी रवि जी नू और चला अभी जितना कोई हमने के देखा था रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर जितना कोई सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर जितना कोशिश करता पर थोड़ा लाइन नाम ही रहता कत्सों दे कत्सों पर तह गीत तो लोग के नाम चला सब भाई शराब ही तेज शराब जो ना चीज है बड़ा खराब शराब नहीं छुए शराब सिगरेटें सब नहीं छुए भैया ये सब घर परिवार तो डेवेरा बर्बाद कर देवेरा तो उमिरा जोधा हमने के बहुत बहुत प्यार से देखा था उन्होंने सुना था वन उमिरा जोधा गीत खासम खास तोहर नाम भाई शराबी

कठर की तकारीबा दाल भाजर जागदों दाल ए कठर में ए दाल दाल की जुड़ी से पका दिए पूरी पका दिए भैया आ हा हा अमर लगे अगर ऐ दाल कठर प दाल दाल में कठर पकी और कोनो के कुचा रही टेक सेवन हम है खा भैया के नहीं चल आप खाए के हमार सब्जी हमार फल हमारा आगे बस एकदम टॉप ऑफ द टॉप तो देख ची में पकैया राजा चल एक साथ सुनब जाए गीतवा गैले हवन सुम्बावती धूमन और चल एक साथ गीतवा सुनब जा जितना कोई हमने की देखा था टिकटॉक पर जितना कोई रेडियो पर सुना था है गीत सब कोई के नाम

है जीवन जो है बहुत छोटा है, ये कौन त्राका लेवेला के का बोल देलक के कौन ची नहीं बोलक के का कर देलक आ यो बाप को तई सब त्राका नहीं लिया भैया वरना तोहर समय से आगे तोहर कपार के सब बार पक जाए। जैसे जाता जिंदगी

ओके जाए जा चला था उसे धीरे धीरे हौली हौली रग रगे मार ताली मार हमर संगे मार ताली मार हमर संगे बहुत ही प्यारा सुन गाना गुरुदेव मन्ना जी के नाम शशि शशिका राम सहाय और गुरुदेव मन्ना जी बोले तो कल तो हर जन्मदिन रवल पिंडी भाई प्रताप हाँ तो जन्मदिन रहा गुरुदेव मन्ना के हैप्पी बर्थडे हे मना प्यार हे मना आशीर्वाद गुरुदेव मन्ना जी और बासनी बी एम के साथ होता है लॉन्ग चिबुक राजा प्रवीण भैरव स्टीव और जितना कोई हमके साथ होता है मीरात के है गीतोरों के नाम मार ताली मार फिर इटली से हवन विशाल मंडप और बेटी और पत्नी और सब परिवार के नाम और बेशक दीपा तिवारी जो खेत कनाडा से हमने देखा तो वन जो लाइव टिकटॉक पर हाय दीपा और है गीत चाहते इसे यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के बी ए फ्रेंच ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री एम ए फ्रेंच ईयर वन एम ए फ्रेंच ईयर टू पीएचडी फ्रेंच पीएचडी इन फ्रेंच कोर्स में एनरोल सब स्टूडेंट्स वहाँ के प्रोफेसर अध्यापक लोग के नाम और जितना कोई स्कूल के कौनसे में स्कूल के छुट्टी में बाले स्कूल के कौनसे में हैप्पी स्कूल हॉलीडेज स्कूल के छुट्टी के भरपूर मजा ला एक महीना के कौनसे मिला बा खूब गमत करिए चले एक साथ सुनब जा गाव जा नाचब जा मार ताली मार हमर संग मार ताली मार हमर संग।

थपरी बजाते रहिए, ताली मारते रहिए और हमके साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। भोजपुरी तड़का प्रोग्राम टन तना टन टन एकदम चकाचक कार्यक्रम चला था। अगला गीत जलसा लाल बा, हाँ जलसा बा, धूम धड़ाका बा, नाचा देसा गावा देसा झूमा देसा सब कोई संगे संगे साथ में। हमकी नाचा तो वन बबीता सुबरन जी, हाय बबीता। फिर फ्रांसिस का विवाह, हेलो फ्रांसिस का, नमस्ते। और बेशक प्रभु जी हमने के साथ वन, हेलो प्रभु। चल अभी जलसा करब सर, जलसा लाल बा, लाली लाल बा, जलसा बा, तो ही जलसा में हमियो जलसा करब सर। चलो के संगे संगे रात के 10:50 हुआ था, चल जलसवा करते जाएला सर। चलो के नचते जाएला सर।

और शादी में तो खूब गमत होला, जलसा होला, और जब शादी होला तो सुख से लेके लेंदी रही है, सुख के गीत गवाई होला, सामदी के हड्डी, दिमाग के शादी, लेंदी के चौथारी, और जब दुल्हन जाला दूल्हा लगे तो ओकर संगे जाला लुकनी। अब लुकनी क्या करे जाला दुल्हन संगे, इतने लुकनी में जाने रहा पर लुकनी हाली से लोटो में चांद जाला, जैसे दुल्हन जाला तो दुल्हन के आकुते में बैठ जाला, और लुकनी चोरी से आप ये होला और लुकनी जाला दूल्हा लगे तो लोकनी वहाँ दूल्हा दुल्हन के स्वागत होला, पर लोकनी के भी स्वागत होला। अभी नहीं लोकनी जालन सा दुल्हन के संगे, हाँ पर लोकनी के छा लौटे के लोकनी हमेशा नहीं रही, वहाँ दिमाग के जाला दुल्हन संगे दूल्हा लगे, पर लेंदी के लोकनी अपन घर छिड़ा बैला, अब हमेशा लोकनी तो नहीं रही ना, क्या बोला था वह, अब लोकनी आके रही तो नहीं छबा गुरु छे अपन घरे जाए के, क्या बोला था तू चलो अब मिलब जब दुल्हन के दादी से, अब दुल्हन के दादी का बोलता चल एक साथ सुनब जा, और एक गीतवा जुन है शोभा रामचरण फकीर गैलेवन दुल्हन के दादी, तागे के पुरनिया जानना किसी अमान्य उनसे ना बात बात पर तत्तर तत्तर तत्तर तत्तर करने जान से, तब सुनब जा भी दुल्हन के दादी की कहानी।

हाँ गीतों के बाद गुंतिन गीत और सुनाओ अब जा भोजपुरी के मधुर रोशन सरा सिंह की आवाज़ में और उगना लिख के हमने की जाए प्रोग्राम के अंत तक 11 बजे सुबह जा सुनहरी पल प्रोग्राम रात के 12 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने का फजीर के 5 बजे रही रात के 9 बजे से अभी भी हमने के साथ दिला जा फोन कॉल्स और SMS का धन्यवाद हमने की टिकटॉक पेज पर देख ला हमने की फॉलो कर ला सो स्वीट ऑफ यू हमने की तोले की मुलाकात हो अब सामदी के फजीर के 6 बजे से 9 बजे लिए MBC रेडियो मॉरिशस पर तब तक हमें की इजाजत दा अजय प्रताप सिंह सीतालू की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, रेडियो मॉरिशस पर आप सुन रहे हैं सुनहरे पल। मैं हूँ आपकी प्यारी प्यारी दोस्त और अगले कुछ पलों तक हम मिलकर चलेंगे यादों के उस हसीन सफ़र पर, जहाँ हर गीत के साथ जुड़ी होती है एक खूबसूरत कहानी। शायद आज का कोई गाना आपको बचपन की शरारतों का या कॉलेज के दिनों का या किसी खास इंसान की याद दिला दे। तो बस आराम से आप बैठ जाइए और खो जाइए पुराने बॉलीवुड के सुनहरे नगमों में, सिर्फ सुनहरे पल में।

तो दोस्तों, कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती हैं, हमेशा हम आपको ये एहसास दिलाते हैं। रेडियो मॉरिशस के इस खास शो में, सुनहरे पल में, हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो अमर गीत जो आज भी दिल को सुकून देते हैं। कैसेट का ज़माना, संडे की फिल्में और परिवार के साथ बिताए हुए लम्हे आज फिर से ताज़ा होंगे। तो बने रहे हमारे साथ और जिए अपने सुनहरे पल।

स्वागत तो हमने कर लिया है आप सभी लोगों का बड़े प्यार से इन खूबसूरत खूबसूरत नगमों के जरिए सुनहरे पल में। जी हाँ दोस्तों, वैसे देखा जाए जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी पुरानी यादों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम उन्हीं यादों को फिर से जीने वाले हैं। लता जी, किशोर दा, मोहम्मद रफी जी और मुकेश दा के अमर गीत आपका इंतजार कर रहा है, तो दिल खोलकर इन

वैसे मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, क्या आपको याद है वो दिन जब रेडियो हमारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, जब एक गीत सुनते ही पुरानी यादें आंखों के सामने आ जाती थी। रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं वही एहसास और वही सुकून। तो चलिए दोस्त, वक्त की घड़ी को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं और खो जाते हैं बॉलीवुड के सुनहरे दौर में।

हम दिल से उम्मीद करते हैं कि आप बड़े प्यार से बड़े शिद्दत से हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस। वैसे देखा जाए ये सिर्फ गानों का शो नहीं है बल्कि यादों का एक खूबसूरत सफर है। हर गीत के साथ जुड़ी है एक कहानी, एक मुस्कान और कई अनमोल लम्हे जो आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। शायद आज कोई गीत आपको अपनी पहली दोस्ती या पहला प्यार की याद दिला दे। तो बस यूं ही साथ देते रहे ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल की निशा के साथ।

पुराने बॉलीवुड गीतों की मिठास और यादों की खुशबू लेकर हाजिर हैं सुनहरे पल में। वैसे आज मिलकर हम उन लम्हों को याद करेंगे जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर रेडियो सुना करते थे। तो आज की ये खूबसूरत सी रात को और भी खास बनाने के लिए तो चलिए अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो आराम से बैठे हुए हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, या शायद अगर आप काम पे हो तो हम आपको विश करना चाहेंगे बॉन कुराज। और वैसे अगर गाड़ी चला रहे हो तो ड्राइव केयरफुली और बस इस खूबसूरत नगमे आप खो जाइए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशातु से गुडबाई टू यू. आप हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल के बहुत ही प्यारे से शो में. तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और बस अपना ख्याल रखना जी.

You're listening RM Free Radio.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस।